I'm a man of God.

दान पुरुषा दान दाना सिर दाना वदान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुगिया टल धर्म का जय।

आगे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्ना तू पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार आते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे ने माने आंदे मान नेता ने आंदे तान ने उटे आंदी ओट तन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों प्रभ प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दारों करों सिखी सिद्धक पूसा नाम दान बख्शना शुभ पावनावा पूरिया करनी आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर

वाहेगुरु जी की फतेह।

ਗਾਵੇ ਰਾਤ ਬਾਰ ਹਾਰ।

اللہ تو بچائے اللہ تو

अखेर आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीति आहिनि। थोरी देरि में तव्हां भगत कंवरराम साहिब जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ अॼु जा महिमान आहिनि मदन जवाणी जी आवाज़ में आवाज़ ॿुधंदा ऐं प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो।

भगत कवरम साहब जो सदाबाराबाद बुधी रहा हुआ हिन आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है हिंदर पेश है तबसरो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विस्पत जे डी नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 जो उद्घाटन कयो। इन मौके ते पेंजी तकरीर डींदे इन इवेंट जे पंजे एडिशन जी अहमियत ते रोशनी विझंदे प्रधानमंत्री सभी शिरकत कंदड़ के दिल सा वधाइयो डिनियो। सेमिकॉन इंडिया लॉन्च जे विश्वकर्मा दिवस जे शुरू थियण जे विच में वधीक भेंट कंदे प्रधानमंत्री मुल्क जी सभी पुरानी कंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन जे वर्से के मान डिनो। हुन रिवायती तखलीकी ताकत के 21 सदी जी टेक्नोलॉजी ए नजरिए से मिलान जे सुहणे इतफाक ते रोशनी विधी। इहो ही असाजे लाइ आत्मनिर्भर एक विकसित भारत जो हौसलो आहे। श्री मोदी जोर डींदे चयो गुज़िरियल 15 डीन में मुल्क जी तेज तरक्की ते जोर डींदे प्रधानमंत्री मुख्य रस्तनि जी लिस्ट में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इंक्लूसिव फाइनेंस बाबत चर्चा में 1,500 किलोमीटर जे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कम शुरू थियण ऐं 7.5-8% जी मजबूत तिमाही जीडीपी वाध शामिल हुई।

हाँ, जापान जे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पारा हाल ही में संदस सोवरेन रेटिंग में वाध के भी मुल्क जी वधंदड़ आर्थिक विश्वास जे सबूत तौर नुमाया कयो। भारत पारा मेज़बानी कयल हाल में मुकम्मल थे ब्रिक्स समिट जी डिप्लोमेटिक जीत के याद कंदे प्रधानमंत्री नई दिल्ली में ऐलान में एक मत सा कबूल थियण ते इंटरनेशनल सहमति जो नतीजो बुधायो। हुन इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो त इहा तारीख़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी मुल्क ते आलमी बिरादरी जे अटुट एतमाद खे सही साबित करे थो। 2022 में पंहिंजी शुरूआति खां वठी सेमिकॉन इंडिया जे विकास जे सफ़र खे ॾिसंदे प्रधानमंत्री शुरूआती पॉलिसी जे चर्चा खे वठी प्रोजेक्ट प्लानिंग, पायलट लाइनिंग ऐं आख़िर में कमर्शियल पैदावार जी शुरूआती तरक़ीअ जो नक्शो ठाहियो। छो त चिप्स हाणे ग्लोबल ग्राहकनि ताईं पहुची विया आहिनि, हुननि इन कोशिशुनि जी कामयाबी खे मल्हायो ऐं इन सां गॾोगॾु मोहाली ऐं सूरत में ॿिनि नवनि प्लांटनि में कमर्शियल पैदावार जी शुरूआति बि कई। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ठाहिण जी बेहद पेचीदगीअ खे स्वीकार कंदे प्रधानमंत्री चिप डिज़ाइन, सामान ठाहिण ऐं टेस्टिंग जी ट्रेनिंग में रिकॉर्ड वक़्त में महारत हासिल करण लाइ ज़रूरी गॾियल कोशिशुनि जी साराह कई। हुन मौजूदा इंडस्ट्री जे अॻवाननि खे बुनियादी पिलर मञियो, जिन जी भागीदारी इन तेज़ रफ़्तार टेक्नोलॉजिकल छलांग खे मुमकिन बणायो। हिन सेक्टर जी लाॻती रफ़्तार खे बयान कंदे प्रधानमंत्री पेपर जे विज़न खे समुझायो ऐं इहो बि ॿुधायो त सरकार कीअं बिना रुके अॻिले टेक्नोलॉजिकल वर्जन जे लाइ ज़ोर ॾेई रही आहे। हुन सेमीकंडक्टर मिशन जे वॾे पैमाने ते 3.5 अरब अमरीकी डॉलर जे ॿिए चरण जो ऐलान कयो ऐं नयनि रेगुलेटरी सुधारनि ते रोशनी विधी, जेका इंटरनेशनल कंपनियुनि, स्टार्टअप्स ऐं डिज़ाइन फर्मनि जे विच में सहकार खे सवलो बणाए थी। हिकु मज़बूत घेरू सप्लाई चेन जे विजन जी तफ़सील ॾींदे प्रधानमंत्री फैबलेस कंपनियुनि खे वधाइण, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ठाहिण ऐं AI खे मुमकिन बणाइण वारे इंफ्रास्ट्रक्चर जे लाइ सिलिकॉन फोटोनिक्स खे शामिल करण जी अहमियत ते ज़ोर ॾिनो। हुन सामान, केमिकल, गैसन ऐं मवाद जे सरबराही खे ढहण मंज़ूर थियल प्रोजेक्टनि ऐं वधंदड़ डिमांड जी पाइपलाइन पारां पेश कयल सुनहरनि मौक़नि जो फ़ाइदो वठण जी अपील कई। भारत जे डेमोग्राफिक डिविडेंड जे फ़ाइदे खे ज़ाहिर कंदे प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग जी टैलेंट जे वॾे ज़खीरे खे ख़ासि तौर ते चिप डिज़ाइनिंग जे लाइ ठाहियल वसीअ स्किल जी ॻाल्हि कई। हुन फ़ख्र सां इंजीनियर शागिर्दनि खां मख़सूस तौर डिज़ाइन कयल चिपूं हासिल करण जो ज़िक्र कयो ऐं सरकार जे 1,00,000 इंजीनियर शागिर्द खे सिख्या ॾियण जे वॾे मक़सद खे वरी ज़ाहिर कयो, जिन मां 70,000 पहिरीं ई सिख्या हासिल करे चुका आहिनि। मुल्की ऐं इंटरनेशनल रिसर्च में लॻियल होशियार शागिर्द खे सड़क ॾींदे प्रधानमंत्री नौजवान टैलेंट खे मुल्क अंदर जदीद टेक्नोलॉजी जी तरक़ी में सरगर्मीअ सां शिरकत करण जी अपील कई। हुन इंडस्ट्री जे अॻवाननि खे लोकल रिसर्च ऐं तरक़ीअ जी अॻवानी करण लाइ ललकारियो ऐं कारोबारनि ऐं मुल्क जे नौजवाननि ॿिनि जे लाइ बहामी तरक़ीअ खे यकीनी बणाइण जी ॻाल्हि कई। सेमीकंडक्टर मार्केट जी वधंदड़ पेचीदगीअ खे नज़र में रखंदे प्रधानमंत्री इन ॻाल्हि ते चर्चा कई त कीअं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे तेज़ीअ सां वधंदड़ घुर सिर्फ़ ट्रांज़िस्टर जे साइज़ खां होलिस्टिक सिस्टम इंटीग्रेशन तरफ़ां ध्यानु मुकमल करायो, जंहिं में मेमरी जी जॻहि ऐं बिजली जो इंतज़ाम शामिल आहे। हुन मुल्क खे नई आलमी पैदावारी चैलेंजनि जो मुक़ाबलो कराइण लाइ हिकु क़ाबिल एतबार ऐं सदा तयार मंज़िल तौर पेश कयो। हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग जे लाइ एनर्जी सिक्योरिटी जे अहमियत मसइले खे हल कंदे प्रधानमंत्रीअ AI डेटा सेंटरनि सबबि पैदा थींदड़ वॾी ताक़त जी ज़रूरत ऐं पैदावारी प्लांटनि जे लाइ लाॻतो बिजलीअ जी ज़रूरत ते रोशनी विधी। हुन मुल्क जी ताक़त जे सेक्टर में तेज़ीअ सां वधंदड़ वाधारो जो बयान कयो, जंहिं में सोलर एनर्जी जो 160 GW खां वधीक जी वॾी तेज़ी, निजी कंपनियुनि जे लाइ न्यूक्लियर एनर्जी ऐं नंढनि मॉड्यूलर रिएक्टरनि जी तरक़ी शामिल आहे। बिजलीअ जे बुनियादी ढांचे जे तेज़ीअ सां वधंदड़ फैलाव खे इंडस्ट्रियल तयारी सां जोड़े प्रधानमंत्रीअ ऐलान कयो त इहा एनर्जी सलामती सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जे लाइ हिकु बुनियादी ताक़त तौर कमु करे थी।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे। हींअर असांजा महिमान आहिनि मदन जवाणी।
1: दोस्तो, अखिल भारत सेमिनार में असांखे मौको मिलियो आहे भारत भर जे केतिरनि ई कलाकारनि, साहित्यकारनि ऐं साहित्य प्रेमियुनि सां मुलाक़ात करण जो। इन जो फ़ाइदो वठे अॼु मां हरिकांत जेठवाणी पंहिंजे हिकु पुराणे रंगमंच जे कलाकार मदन जमाणी सां तव्हांजी वाक़फ़ थियण, छाकाणि वाक़फ़ जो मोहताज हू आहे, कुझु गुफ़्तगू कंदुमि। मदन सां मुंहिंजो एतिरो त झूनो तालुक़ु आहे जो मां हुन ते तूं करे मुख़ातिबु थींदुसि ऐं हू बि मूंखे उन ई अंदाज़ में जवाबु ॾींदो। मदन जमाणी सिंधीअ जो हिकु झूने में झूनो रंगमंच सां जुड़ियल कलाकार आहे। पंहिंजे 40 सालनि जे रंगमंच सां वाबस्तगीअ दौरान हुन सवे चई सघिजे थो त सभई नाटकनि में हिकु कलाकार तौरु रोल अदा कयो आहे। कई नाटकनि जी हिदायत करे कई आहे ऐं वेझराई में हू हिकु नाटक नवीस तौर ते मल्हायो थो आहे। सभ खां पहिरीं मां

Well, Fred and Dan, you know the danger? The fire is going to fire up in this, not as a fire. But my uncle called very good old dangers. I know him. But, something like that, my person, I'm good. My, something like that, I'm going to live with. Maybe a few other people, Papa Ji, this is my couple of things. All about it come you abhi tamam masail sunne wala kaun tha jab kaun the jo sabhi ko ya balai thani ek angal kitne ka pe yaad ka chala la hai usse sikha wala hai jab main aap bayan ke tha ye padhai ke tarah ki hai हिंदी नाटकों में कम खंडे बल्ला समझाया जब मैं गीता की मुलाकात थी उन्होंने वहां पूछे कि मदन जी हिंदी रंगमंच का क्या हाल है उन्होंने क्यों मुख्य कहा खबर को ले मुख्य हिंदी रंगमंच जी कहा ज्ञान को ले उसका माल है यार आप हिंदी हैं और आपको हिंदी रंगमंच से कोई मालूमत नहीं आपको शर्म आना चाहिए और यह अक्षर आपको शर्म आना चाहिए इकतीस ज्ञान मुझे देने लगा और मैं उन की फैसले को श्री जी को जो मुझसे एक लोग कर पाए और मुझे भी कुछ फर्ज आए मुझसे चलने वाला पकड़ा कुछ ग्रह गोते और उन मुझसे हुए पकड़े उन वक्त जो नाली में संगत हो भगवान जी नाली जो भाव जो ईश्वर में संगत हो अच्छा उन्हें सरक्षण आने उतने पैसे और पहले

0: ॿिया बि कई कलाकार गॾिजी जिन हेतिरी कोशिशूं कयूं आहिनि हुनखे ज़िंदो रखण लाइ, मां ॼाण इहो चाहियां थो त असीं पंहिंजी कोशिश में केसि ताईं कामयाबु आहियूं। नाटक नाटक माना नास्तक ऐं जेको जिते अटकियो माना छुटियो। भॻवान जी महिर आहे अॼु 40 साल में मां किथे अटकियो न आहियां, नाटक असां कया आहिनि ऐं नाटक कंदे मूं जेको महसूसु कयो आहे, दिलि सां महसूसु कयो आहे, सिदत सां महसूसु कयो आहे, त इहो आहे त साहित्य असांजा केतिरा ॿार ज़ालिम नई पीढ़ी नथा पढ़ी सघनि। अॼु असांजो साहित्य जो जेका हालत आहे असां तोखां ऐं मूंखां गुज़री कोन्हे, उन्हनि कल्चर जेको असांजो आहे असां उनखे ज़िंदा रखण लाइ, उनखे नई पीढ़ी ताईं पहुचाइण लाइ असां इहो लग जेके असां चयूं उन में असां काथे विझंदा रहिया आहियूं, लग बरंदो रहियो आहे, असां मंत्र पढ़ंदा रहंदा आहियूं ऐं दर्शक ईंदा आहिनि उन मंत्र जो लुत्फ़ वठंदा रहंदा आहिनि, बसि असां उन में ख़ुशि आहियूं। जेके असांखे लॻे थो त लिखियल लफ़्ज़ खां वधीक नाटक लिखंदा रहिया आहियूं कुझु वक़्त खां त असांजी कोशिश आहे उहो घुरबल नतीजो कोन चवनि जेको हिकु नाटककार या हिकु रंगमंच या स्टेज ते हिकिड़ो कलाकार आणे सघे थो पियो। पंजनि सालनि में हिकु कविता जे बहितरीन किताब खे 300 पाठक कोन था मिलनि पिया, 300 पढ़ंदड़ कोन था मिलनि पिया। जॾहिं जे बरक्स नाटक जॾहिं उहो मंच ते पेश कयो वञे थो त उनखे हिकदमि हिकु ई सिटिंग में टिनि कलाकनि में 500,000 माण्हू ॾिसी वठनि था पिया। इन करे मूंखे लॻे थो त असांजो इहो माध्यम या इहो मीडियम ॾाढो पावरफुल, ॾाढो हिकिड़ो ज़ोरदार हिकिड़ो मीडियम आहे। इन जे बारे में बि छा चवंदा दोस्त, असां ख़ुशि थी विया आहियूं जो साइंस जे तरक़ीअ असांखे न सिर्फ़ु रंगमंच ॾिनो आहे पर टीवी वीडियो फिल्म बि ॾिना आहिनि। अॼु मां जेकॾहिं ग़लति न आहियां त मां सम्झां थो हीउ युग वीडियो युग आहे ऐं अॼु जे ज़माने में अॼु जे महांगाई में नाटक कयूं दर्शकनि में पहुचाऊं दर्शकनि खे ॾिसण लाइ तकलीफ़ूं आहिनि, ख़र्च आहे ऐं अॼु जॾहिं उन्हनि खे घर वेठे सुठी न सुठी इंटरटेनमेंट मिले थी, सुठी न सुठी चीजूं मिलनि थियूं, त असां इहा कोशिशि करे रहिया आहियूं त हिन वीडियो युग खे साण जे रिश्ते सां पोइ वीडियो युग सां साण हली असां दर्शकनि जे घर ताईं पहुचूं ऐं असल में उन दफ़े में बि काफ़ी कोशिशूं कयूं आहिनि। हिन वक़्त ताईं मां सम्झां थो मूं हिकु फिल्म ठाही हुई हिकु बजे में जेका काफ़ी आदमी ॾिठी, उनजो निर्देशक हो, डायरेक्टर हो, कलाकार बि हो। तंहिंखां सवाइ अॼु ताईं टीवीअ ते मां परिकलनाटक कया जेके काफ़ी आदमी ॾिठा आहिनि। हाणे इन ॻाल्हि ते मां वधीक बहस नथो करणु चाहियां त इहो नाटक कीअं हुआ दर्शकनि केसिताईं पसंदि कया, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु आहे त असां सिंधीअ में नाटक कया, दर्शकनि जे घर में उहे नाटक उते उन्हनि टेलीकास्ट थिया, उन्हनि जे ॿारनि उहे ॿुधा ऐं अॼु असांखे केतिरा ॿार जॾहिं मिलंदा आहिनि टोपी मिली वेंदा आहिनि, अंकिल अंकिल हिन तुमारा नाटक ॾेखा था, त असांजे लाइ उहो ॾाढो वॾो इनाम थींदो आहे। मां ॼाण इहो चाहींदुसि दोस्त त हिन युग में असांजे कोशिशुनि खे कहिड़ो नतीजो मिलंदो उहे किथे पहुचणो तकलीफ़ तव्हांखे बि आहिनि, लिखंदड़ खां घटि न वधि न त लिखंदड़ जेतिरी सही तकलीफ़ूं त तव्हांखे बि आहिनि। हिकु सुठो नाटक मंच ते पेश करणु उन लाइ गुरुबल हिकिड़ा रिसेप्टिव दर्शक कथा करणु इन बारे में तव्हांजो करे ख़्यालु आहे त The closing account of SBI, we will have the public, the side of the Bible. The Hatikatya. The closing one, that has Tatamela, a Tatamela, Yasakalea. The thing of Salama, Tangitosa, and the government of Kalaka Rai, and the Kasaki Kushi Mandi, Arnold Mandi, a Salaman to the Nata Kina in Kailaya. But I think the daughter made the Nata Nata Pesanta. As I said, over the money that is why, then I bought the house with the board of the water for the water. And look at the money, look at the phone, that's why I said, Kalaka, but it is not just to get in line. Because, sir, the Italian, the storm will not get to learn, Dana will not get to learn, Donison will not get to learn, and Dana and Donison are not happy to look at it. The storm hinder the family who seen Hadi. Asalnya hamba kasih sangat ayat. Asalnya yakin ayat, kalau jaga andiri rata ayat, jadi sedih kendo. Jauh kendo, ayat asalnya hamba sah agus.
1: Jadi ini isu ma, jadi kita dia ha, kita bandai jatuh. Yang dan kim disaran lo, itu jasa mereka, kucu kasih tu, bersalah miliaran, video kasih. Khas tera, semua.
0: Yang saya kami ke Pakistan lah yang baru mat kami ini.
1: Kami jadikan ulang di dari tarikh sejarah. Bayi Pakistan mat kami jahat naik. Jadi ke ma ekonomi ia, ekonomi kerja begitu kosong kali ini,

0: एतिरो त ढिलो हो जो मां उहो बर्दाश्त करे उहो सही न सघियसि तॾहिं तंहिंखां पोइ बि हितां जे माण्हुनि में सिंध जे या चइजे खां त पाकिस्तान जे नाटकनि लाइ एॾो क्रेज या हिकिड़ी पागलपन छाजे लाइ आहे उन जो हिकु जवाबु आहे त वठ
1: हरी
2: कांती
1: आहे असांजे सिंध में नाटक थियनि था उन सां सिंध जी ज़मीन आहे मां त ॾिठां गौर सां थो ॾिठां त असां वटि घणा साहित्यकार आहिनि जेके नाटक लिखनि था गाॾी हिकु फीट ते न हलंदी असांखे इहो मां दाग थो घुरां तव्हांखे इहो त असांखे लहर लॻियो त नाटक बि असां लिखूं कुश्ती असां विझूं ऐं दर्शक बि असां वञूं कलाकार खे चैलेंज बि असां ॾियूं पर तंहिं हूंदे बि मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां थो तव्हांजो आबोदन आहे त मूं घटि में घटि वॾनि शहरनि खे छॾियो जॾहिं जॾहिं पंहिंजा नाटक भारत में जुदा जुदा शहरनि में कया आहिनि अहमदाबाद में असांखे तमामु घणो रिस्पॉन्स मिलंदो आहे बड़ौदा में रिस्पॉन्स मिलंदो आहे हा ॿियनि शहरनि में मिलंदो आहे ऐं वॾी ॻाल्हि असां जॾहिं भारत खां ॿाहिरि दुबई वेंदा आहियूं असां दुबई आहियूं हांगकांग वियो आहियां मां उते जेका बुख आहे बुख बि हिकिड़ी चीज़ आहे यार मां सम्झां थो इन जो हिकिड़ो असरु इहो बि आहे त असांखे सिंधी नाटकनि लाइ बुख आहे मूंखे पाकिस्तान मां पेश थियल नाटकनि जे लाइ सिर्फ़ु हिकिड़ी शिकायत आहे सिंधी नाटकनि जा जेके उर्दू नाटक आहिनि उहे तमामु लहरिया आहिनि सिंधी नाटक मूं बि ॾिठा आहिनि सिंधी नाटकनि में तमामु सिलो पेश आहे जंहिंजो चयो सही आहे पर उन्हनि जी ज़िंदगी उन वक़्तु हिन वक़्तु ई आहे असांखे पंहिंजी ज़िंदगी जेका आहे असांखे जेके पंहिंजा प्रॉब्लम्स आहिनि पंहिंजी जेका ख़ुशबू आहे ॿोलीअ जी सां अॼु उनखे असां मर्यादा रखी करे हर को आदमी पंहिंजे सतनसनि में जीअं आहे असांजी हालतुनि खे गौर करे जेकॾहिं पेश ॾिसंदो असां पंहिंजी हालतुनि जे हिसाब सां निभायो आहे ऐं न छो निभायो आहे पर उन सां असां अॻिते रहण जी कोशिशि बि कई आहे दुबई में असांखे जेको रिस्पॉन्स मिलंदो आहे उहो मां नथो सम्झां त किथे मिलियो आहे ईअं त कोन्हनि असां दुबई में न वक़्तु आहियूं ॾह

0: Bien. Onun bir kaset, Mata Hikayesi, Tamam bir şey. Senin bir comparison Pakistan ile senin aksın sen kare, tek hap yok bir katavan ile yara hai, asa jakin kare. Mazhe me, ma sosyal to, ya ma dhaya to, ka, anayi ka, you are not married. If I own this interview, mana, mana mulaqat to ji pujani, taji ka kauta sakha, jo dhati sa, zirin sa, vado vahtya hai. शांति की तलाश असा के उन कब्रिस्तान में पहुंचा हुआ है जिसे सफेद कबूतर का पंख पूरे लन अच्छे सोच वो पंजा कचर उड़वा की कितने दफनाइंदासी धरती सारी विराह जी चुकी है भूमि जो उहो टुकड़ो मां उभरे जैसे सदु अग में हड़प कर रहा शैतान अखिले बड़के जड़ खा ठेके छो चूडियुन में जंगल के ठेकेदार उन कारस्तानी से शैतानी चाहिए या नादानी अवाई बुधा
1: तां अज जे मेहमान में मदन जमानी ऐं हरिकांत जेठवाणी जी खे ॿुधी रहिया हुआ हींअर पेश आहे ख़ासि ख़ासि ख़बरूं भारत ऐं यूएई क्षेत्रीय सुरक्षा ऐं स्थिरता खे हथ ॾियण में सहकार जारी रखियो जे वादे खे दोहरायो यूएई जी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सां टेलीफोन ते राब्तो कयो नई दिल्ली में लाल सागर वारे इलाके में वधंदड़ सिक्योरिटी सूरत हाल ते सख्त चिंता जाहिर कई सऊदी अरब जे खुद मुख्तियार इलाके ते हमले जी निंदा कई ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मोडीज माली साल भारत जे हकीकी जीडीपी जे वाधे जे दर खे वधाए 7% करे छड्यो पाकिस्तान जे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में थियल धमाके में 15 माण्हू मारी विया ऐं 50 खां वधीक ज़ख़्मी थी विया ऐं एशियन गेम्स में भारतीय औरतुनि जे क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेज़बान जापान खे 8 विकेटनि सां हार ॾेई सेमीफाइनल में जॻहि ठाहे वरिती तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 वॻे तेसिताईं ॾींदा मोकल सदाई गॾु

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
1: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है, हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पैरेंट डिपार्टमेंट

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाड जिले में कल एक मस्जिद के पास विस्फोट में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। एक चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान यह हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि अब तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointed candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defence, among others. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Canada's Minister of International Trade, Maninder Sidhu, to discuss advancing negotiations on the India-Canada Comprehensive Economic Partnership.

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका में तब्बू के गाये भजन। आपके साथ सितार पर साथ दे रहे थे खालिद मुस्तफा, हारमोनियम पर साथ दे रहे थे दामोदर लाल घोष और तबले पर संगति कर रहे थे शिवित भारद्वाज। सुबह के 7:30 और पूरे लीजिए 15 सेकंड हो चुके हैं और अब समय हो चुका है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ये कार्यक्रम।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मन पसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। और सुबह की बात करें तो एनर्जी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह सुबह जो एनर्जी हमारे अंदर आती है ना, वो सारा दिन बरकरार रहती है। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं, यानी 7:30 हो चुके हैं, और आपने भी ट्यून इन कर लिया है हमारा ये स्टेशन कौन सा भी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7। आप हमें YouTube पर भी सुन सकते हैं और ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, आज हूं मैं आपके साथ, आपकी दोस्त सुषमा। अब देखिए, सुबह सुबह की बात होती है तो आज है वैसे कि शनिवार, यानी सैटरडे, वीकेंड है, लेकिन क्या करें, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे साथी हैं जिन्हें स्कूल भी जाना है, एग्जाम्स भी लगे हैं बच्चों के आजकल, मिड टर्म्स, तो बहुत सारा काम, बहुत सारी भाग दौड़। और कुछ ऐसे साथी हैं जो सुबह की शुरुआत बड़े आराम आराम से करते हैं, तो सभी का मिला जुला जो हमारे पास साथियों का संग्रह है, उन सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में गीत सुनवाएं। अब सुबह से हुआ है कि बात हो रही है तो ताजगी भी चाहिए, फुर्ती भी चाहिए और शांति भी चाहिए। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हम अपने नगमे में, अपने तराने में आपको सुनवाएं। जी हाँ, मतलब हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें हमने एड कर रखे ऐसे खूबसूरत नगमे, जो की है बहुत ही, सबसे पहला जो ट्रैक आप सुनेंगे किशोर दा की आवाज है। तो ऑफिस के रास्ते में

या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं या उठने की तैयारी, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, घर के काम करने हैं, बाप रे बाप इतने सारे काम, कोई नहीं ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सुबह की फुर्ती के लिए चला चाहता हूँ किसी की धुन में। तो ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए, आप सुनिए, इंजॉय करिए, बने रहिए हमारे साथ पूरे 8 बजे तक। आप चाहे तो आप हमें ipradiodelhi@gmail.com पर अपने संदेश भेज सकते हैं।

तो देखिए सुबह सुबह इतनी जद्दोजहद तो करनी पड़ती है हम सभी को, कई बार खुद को अपने आप चलाना पड़ता है और कई बार हमारी मजबूरी है और कई बार हम शौक से चलते हैं। भाई काम भी करना है, जिंदगी को भी आगे बढ़ाना है और चलते रहना है, तो क्यों ना हम खुशी से आगे बढ़े, हंसते खेलते जिंदगी में आगे बढ़ते

जाएंगे, पल पल तो हमारा जीवन हो जाएगा बहुत ही खुशहाल, खुश बहुत ही अच्छा सा। तो क्यों अपन जिंदगी को बोझ बनाए, उसे ढोएं, बल्कि जिंदगी को जिए, क्योंकि जीने में जो मजा है ना, वो जिंदगी को ढोने में नहीं। क्योंकि ढोने की बात जब करते हैं तो ऐसे लगता है कि जिंदगी पता नहीं कितना बोझ है और इतना गठरा हमारे ऊपर है जिसे हमें ढोना पड़ रहा है। जिम्मेदारियां तो हैं ही, क्योंकि देखिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें जिम्मेदारियां तो होंगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ेगा, वो हमारी बहुत सारी अलग अलग रूपों में जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उस खूबसूरत जिम्मेदारियां, अगर आपकी ये जो खूबसूरत जिम्मेदारियां हैं ये आपकी हसीन बन जाए, मतलब कहने का ये कि जो जिम्मेदारियां ये बोझ ना बनकर आपकी अच्छी लगने लगे आपको, मतलब आपको पता है कि करना है लेकिन उसी काम को आप अच्छे हंसते खिलखिलाते और खुशी मन से करें तो कितना अच्छा होगा। जब मन खुश होगा तो चीजें भी अच्छी लगेंगी। तो भाई हम यही कहेंगे कि हर सुबह आपकी जिंदगी की एक किताब का एक नया खाली पन्ना होती है और आज की कहानी क्या होगी ये तो हम सबको खुद अपने आप लिखनी होती है। तो अपनी जिंदगी के आज की इस कहानी को खूबसूरत बनाएं और एक नए पन्ने में जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि उसे एक सुहाना सफर बना दें। और जिंदगी इतनी खूबसूरत ना, सच कहूं मैं आपको, तो आप जब उसे एक बार खुश दिल होकर जीना सीख जाएंगे तो आपको जिंदगी बहुत प्यारी लगेगी। भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचकर, सोचना है पर ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा सोचेंगे तो शायद अपने आज को ही और आने वाले कल को भी खराब, आने वाला कल तो किसने देखा बट आज हम खराब कर देंगे। तो जिंदगी के एक एक पल को जिएं, आसमान को देखें, उसको महसूस करने की कोशिश करें, हवा, पत्तियां, पेड़ पौधे, इतनी सारी चीजें हैं हमारे आसपास प्रकृति में जो हमारे दिल को हल्का करती हैं। देखिए कलाकार फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत मुझे बहुत पसंद है और सुबह सुबह इस गीत को सुनकर मन तो बहुत ही ताजा हो गया। और किशोरदा की आवाज, बहुत ही खूबसूरत गीत। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये गीत जरूर पसंद आया होगा और आपका दिन, जो मैंने कहा अपनी किताब का ये जो पन्ना है ये आप अपने आप लिखेंगे, उसे और खूबसूरत और हसीन बनाएंगे, नए पन्ने नए इतिहास आप इसमें जोड़ेंगे।

तो सुबह सुबह की बात हम कर रहे थे और सुबह का दिन अगर मतलब दिन की शुरुआत अच्छे से हो जाए, और हमने कहा ना कि अपने दिन का जो एक हर एक पेज होता है अपनी हमारी जिंदगी की किताब का, उसको हम खूबसूरती के साथ लिखेंगे तो ताउम्र हम उसे और हसीन बना सकते हैं। तो जिंदगी को ढोएं नहीं बल्कि उसे जिए, एक एक पल को जिएंगे तो जिंदगी खूबसूरत तो लगेगी ही। और देखिये इतने खूबसूरत गीत है हमारे पास और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम कौन सा गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा, और आप सुन रहे हैं हमें मीडियम वेव्स कौन सी भी नाइन। आप अगर आपको पूरा बता दें तो आप सुन सकते हैं हमें आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल और मीडियम वेव 366.3 मीटर और 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं आपको बता दें कि डीआरएम पर आप सुन सकते हैं 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अभी चल रहा है हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। अगला गीत भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले एक और पॉजिटिव बात तो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंस्पिरेशन नहीं होगी जिंदगी में तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिंदगी खूबसूरत भी होती है जब छोटे छोटे पलों में हम छोटे छोटे कहते हैं ना कि जिंदगी के छोटे छोटे पल ऐसे होते हैं जब हम जीते हैं और कुछ सिखा के जाते हैं। संघर्ष भी होता है, बहुत सारी कठिनाइयां भी होती हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए, हर किसी के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं ताकि उसे अगर वो परेशानी महसूस करनी पड़ रही है, उसे फेस कर रहा है वो, तो हम उसे इंस्पायर कर सकें। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने जो आपके अनुभव है उन्हें दूसरों के साथ साझा करें ताकि वो उसे सीख लें और एक स्माइल पास करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ें। क्योंकि कहते हैं ना कि मुस्कुराता और खिलखिलाता चेहरा दूसरों को भी खुश कर देता है और उसका मूड भी फ्रेश कर देता है। अगर आप रास्ते में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें, सुबह सुबह मुझे पता है सब कुछ जल्दी जल्दी होती है, तो आप थोड़ी सी स्माइल पास कर देंगे ना तो बगल वाले का भी जो गुस्सा आ रहा होगा उसे कि भाई जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो एक स्माइल से उसका गुस्सा भी वो शांत हो जाएगा। तो स्माइल करते करते जिंदगी को आगे फेस करते जाएं, हर एक फेज को, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। अगला गीत हमारे पास बहुत ही खूबसूरत है, यादों की बारात फिल्म से आशा जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में।

जी हाँ, सुबह की जो शुरुआत वो अच्छे से हो जाती है और जैसे हमने कहा एक स्माइल अगर आप दे दें तो स्माइल चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट अगर रहेगी, ये शुरुआत आप घर से ही करें। क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार हम सुबह सुबह क्या करते हैं, घर के मतलब नेचुरली सबको बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो कई बार हम गुस्सा हो जाएंगे, चिल्ला पड़ेंगे, जल्दी जल्दी रहता है। तो भैया अपने घर से शुरुआत करिए, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, आपके बच्चे, मम्मी पापा, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन, आपकी बेटी, तो स्माइल करके अपने सारे काम मुस्कुराते हुए उनसे अपने काम करवाएं। गुस्सा भी हो आ रहा हो तो थोड़ा हल्की सी टोन रखें, थोड़ा स्माइल रखें कि भाई देखिए मुझे देर हो रही है। तो इसी तरह से जिंदगी को जिएंगे तो जिंदगी को जीने का भी मजा आएगा और जिंदगी भी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। और कहते हैं ना कि कल के दिन में चाहे कितना भी कुछ हुआ हो, कितना थका दिया हो या कितनी मुश्किलें रही हो, लेकिन आज का जो सूरज है वो हम सबके लिए नई उम्मीद लेकर आता है। इसी सोच को अगर आगे बढ़ाएंगे तो जो दिन बीत गया उसे कल का दिन माने और जो अब आ चुका है दिन, इसे आज में जिए। तो कल की टेंशन खत्म करिए और आज की दिन की जो शुरुआत है वो दिल खोल के आप कर चुके हैं हमारे साथ। और देखिए अब तो हमारा प्रोग्राम भी अपनी अंतिम पड़ाव की ओर ही बढ़ रहा है। गीत अगला बहुत ही खूबसूरत है लता मंगेशकर जी की आवाज में, और हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें 24 घंटे 7 दिन। और फिलहाल अपने मनपसंद कार्यक्रम गीतों वाली गुड मॉर्निंग में सुबह 8 बजे तक।

तो दोस्तों प्यार तो कण कण में मिल जाता है जब नजर, कहते ना नजर होनी चाहिए उस प्यार को देखने की। हम हर एक चीज अपने आसपास प्यार देख सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, रह सकते हैं हम प्यार से। तो ये छोटा सा प्यार शब्द छोटा सा है, लेकिन इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना उतना आसान भी नहीं। इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। लोग एक दूसरे को बस तुलना करते रहते हैं, तो उन तुलनाओं से बाहर निकलिए, प्यार बांटिए, प्यार से रहिए। और हाँ, आज के दिन मुझे पता है आज वीकेंड है, और कई बार होता है कि मन नहीं होता है कि कुछ खास करें आज वीकेंड के दिन, तो पता है क्या कर सकते हैं आप, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लोड लेने की। तो अगर आज कुछ बड़ा करने का मन नहीं है, ज्यादा काम करने का मन नहीं है, तो बस इतना याद रखें कि छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। यानी छोटा मोटा काम करें, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना करें, काम करें, नहीं तो हो सकता है कि ऑफिस में बॉस डांट लगा दे। अपना काम है तो चलिए बाद में भी कर सकते हैं। तो आज बस अपना बेस्ट दीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे साथ सुबह 10:10 हमारा कार्यक्रम होगा, उसमें भी आप जरूर बने रहें। तो अपने दोस्त सुषमा को गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार, उम्मीद करती हूँ आज सुबह का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ विदा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरे गुड मॉर्निंग कार्यक्रम और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वीं एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान,

0: हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंटर सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है, हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रीफिंग थी, जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पैरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
2: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है वो लगा ली है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
4: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
5: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
4: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। आकाशवाणी समाचार बेंगलुरु।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स

0: ने इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर 221 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
2: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में 14 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 18 अरब डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और मह में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
3: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तरिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का यह फैसला, दो उपचुनावों के लिए अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को

0: तेजस की मिली अंतिम खेप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मोडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में एएसआई की गोली मारकर हत्या दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित। खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth at 20th Rozgar Mela this afternoon. Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce. India's software services exports surge 8.2% year-on-year to over $221 billion in 2025-26, says RBI. And 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More details from our correspondent.
3: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts and District Court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. The conference will provide a platform to discuss key environmental and climate challenges. These include gaps in policy formulation, implementation, and enforcement. The conference will also explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Statistics and Program Implementation Ministry has released Labour Market Snapshot of

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 20वें रोजगार मेले में 9 मुकर्रा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत और कनाडा ने इक्तिसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद के तय अपने अज़्म को दोहराया है। आरबीआई ने कहा है कि भारत की सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात में साल ब साल की बुनियाद पर 8.2% का इजाफा हुआ। इस तरह ये 2025-26 में 221 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की हो गई। आज से जापान में 20वें एशियन गेम 2026 का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी 20वें रोजगार मेले के मौके पर आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए तकर्रुरशुदा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर इन नौजवानों से खिताब भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुल्क भर में 45 मकामात पर 20वें रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। नए तकर्रुरशुदा उम्मीदवारों को वजारत खजाना, रेलवे, उमूर दाखिला, सेहत और खानदानी बहबूद और वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ वजारतों और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया जाएगा। 20वें रोजगार मेले के साथ ही मजमूई तौर पर तकरीबन 12,75,000 नौजवान तकर्रुरनामे हासिल करेंगे। रोजगार मेला नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और मुल्क की तरक्की के सफर में उनकी शराकतदारी को बढ़ाने को यकीनी बनाने के हुकूमत के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेज यकजा होंगे। मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज और सीनियर सरकारी अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासती अदलिया से मुतालिक एकेडमीज, कानूनी खिदमात की रियासती अथॉरिटीज, माहिरीन की रियासती अप्रेजल कमेटियां, माहौलियात के असरात का जायजा लेने वाली रियासती अथॉरिटीज और दलदली जमीन से मुतालिक रियासती अथॉरिटीज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। इसमें 17 मुल्कों के मुमताज जजेस और अदलिया के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से अदलिया से मुतालिक नजरियात के इजहार, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के लिए एक प्लेटफार्म होगा। शुरका अहम माहौलियाती और

0: दिन।
1: तो इसका उपचार किस तरीके से किया जाए जिससे कि जो आम जन लोग हैं उनको उससे आराम मिल पाए?
0: तो सबसे पहले अगर आपका कोई पेन है जो कि क्रॉनिक हो गया है, जो कि 3 महीने से पुराना हो गया है, उसमें जो कोर है वो है प्रिकॉशंस, परहेज, उठने बैठने के परहेज, वो हमें ठीक से लेने चाहिए। उससे हमारे बहुत तरह के स्पाइन पेन और नी पेन और शोल्डर पेन, सामान कैसे उठाना है, टेबल को कैसे धक्का लगाना है, कुर्सी पे कैसे बैठना है, जूते कैसे पहनने हैं, कितना आगे झुकना चाहिए, कितनी बार, अगर कोई सामान नीचे गिर गया है तो उसको कैसे उठाना चाहिए, पूरा नीचे बैठ के उठाना चाहिए, आगे झुक के उठाएंगे तो आप स्पाइन को बहुत ज्यादा स्पाइन पे प्रेशर डाल रहे हैं। एक तो हुआ परहेज, दूसरा हुआ वर्जिश, एक प्रॉपर सुपरवाइज्ड कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड प्रॉपर मसल ट्रेनिंग। वो हर ज्वाइंट के लिए अपने अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के शेड्यूल्स होते हैं, तो आप अपने पेन फिजिशियन एंड उनकी टीम में जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन के डॉक्टर होते हैं आप उनके सुपरविजन में कर सकते हैं। तीसरा, इन सबसे भी ये पेन नहीं जाता तो मेडिसिन अथवा जो हम मिनिमल इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन करते हैं हम उसकी सहायता ले सकते हैं।
1: और डॉक्टर डबास ये भी जानना चाहेंगे कि लक्षण कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से पहचाने क्रॉनिक पेन को?
2: देखिए, लक्षण जॉइंट स्पेसिफिक है। आप जैसे सपोज नर्व वाला दर्द है तो नर्व वाले दर्द में जैसे ट्राइजिबिनल न्यूरालजिया या जैसे डॉक्टर दीप ने बोला कि हर्पीस जोस्टर वाला पेन है, उसमें मरीज को जलन हो सकती है, चबक लग सकती है, करंट झटके लग सकते हैं, ये वाले न्यूरालजिक पेन है। डीजेनरेटिव वाले पेन है कि ठीक है, पेशेंट को उठना बैठना, रोजमर्रा के काम करना या रात में दर्द होना, सुबह जब उठते हैं बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होना, हील पेन है तो शुरू के कुछ स्टेप्स बेड से नीचे उतर के चलना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। देन कैंसर पेन हो गया 24/7 वाला पेन कि वो सारा टाइम ही दर्द रहेगा। तो जो सिम्टम्स हैं वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि इस तरह के दर्द में यही आएगा, डिपेंडिंग अपॉन के क्या कॉज है पेन का पेशेंट सिम्टम्स बताता है।
1: अगर हम टेस्ट की बात करें तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए जिससे कि डायग्नोज हो पाए और ये किस तरीके का पेन है और उसका क्या उपचार है?
2: देखो, पेन का प्रॉपर जनरेटर ढूंढना कि दर्द का कारण क्या है, जैसे कि हर कमर दर्द शियाटिका नहीं होता, उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है कि वो दर्द कहाँ से आ रहा है। तो पेशेंट को पहले प्रॉपर, जब फिजिशियन के पास जाते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लिया जाता है, प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन करके हमारे माइंड में एक डायग्नोसिस बन जाता है कि दर्द का प्रमुख कारण क्या होगा, पेन जनरेटर क्या होगा, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होती है। कोई भी स्कैन कराने हैं, एक्सरे कराने हैं या फिर नर्व कंडक्शन स्टडीज करानी है, कोई भी स्कैन उसके बेसिस पे किए जाते हैं एंड देन उन स्कैन्स में क्या प्रॉब्लम आई है और हमने एग्जामिनेशन में क्या सोचा था, वो डायग्नोसिस को कोलैबोरेट किया जाता है। फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि दर्द का कारण क्या है और उस पेन जनरेटर को ढूंढकर उस पेन जनरेटर का इलाज किया जाता है, ना कि हम सिम्टम्स को दबा दें। दर्द को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन दर्द का कारण क्या है वो कारण ढूंढकर उस कारण का ट्रीटमेंट करना ये ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल, बेहद ही अहम जानकारी। और डॉक्टर लाल, अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर में हमको कोई भी दर्द होता है तो हम सडनली कोई ना कोई पेन किलर ले लेते हैं, तो क्या एकदम पेन किलर लेना ठीक है या फिर उसका क्या कुछ उपचार सही दिशा में करना चाहिए?
0: खुद से पेन किलर लेना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो होती है वो जो इजिली अवेलेबल होती है तो वो सेफ मानी जाती है, लेकिन खुद से पेन किलर, सेम पेन के लिए बार बार पेन किलर लेना इज नॉट एडवाइजेबल एंड शुड नॉट बी टेकन, हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमारे लिवर और किडनी डैमेज हो सकती है। और दूसरा, आपको खुद से दवाई लेना, बार बार एक ही चीज के लिए दवाई लेते रहना, वो उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो हमें एक टाइम निकाल के पेन फिजिशियन के पास जाके हमारा पेन का जो जनरेटर है, पेन जनरेटर, जैसे कि मैडम बता रहे हैं कि पेन का सोर्स क्या है, पेन इजाद कहाँ से हो रहा है, वो क्लिनिकली हमें पता चल जाता है एंड देन हम उसके रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन जांचें कराते हैं, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गई, एक्सरे हुआ, एमआरआई हुआ, वो करा के हम आप पेशेंट को एक लंबे समय के लिए समाधान दे सकते हैं। हमारा पेन का जो साइकिल है ब्रेक करने का एक ही मंतव होता है मस्कुलोस्केलेटल एंड डीजनरेटिव पेन में, जैसे कि जॉइंट्स पेन एंड स्पाइन पेन में, सो दैट पेशेंट को एक पेन फ्री इंटरवल दिया जाए लंबे समय तक के, सो दैट पेशेंट अपना रिहेबिलिटेशन, अपनी वर्जिश अच्छे से कर पाए और बार बार ये क्रॉनिक पेन के साइकिल में ना फंसे।
1: और डॉक्टर साहब, ये भी जरूर जानना चाहेंगे, जैसे तो आपने बताया कि सीधा डॉक्टर से पहले ही बात करें, बट जब वो घर पर है और घर पे उसे घरेलू उपचार से हम कहते हैं, तो क्या कुछ उसे करना चाहिए जिससे उसे रिलीफ मिल सके इंस्टेंट?
0: घरेलू उपचार अगर वो डॉक्टर साहब के पास नहीं पहुंच सकते हैं तो उसमें एक राइस प्रोटोकॉल होता है जिसमें रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, रेस्ट करनी चाहिए, नए दर्द को हमेशा आइस लगानी चाहिए, पुराने दर्द में हम गर्म सिकाई करते हैं, तो अगर कोई सूजन है या मान लो कमर में लचक आ गई, तो वो जो कमर में लचक आई है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है पेन का। हमारा ब्रेन बता रहा है कि वहां पे दर्द है, आप उसका ज्यादा उपयोग मत कीजिए, अगर ज्यादा उपयोग करेंगे उस शरीर के उस हिस्से का तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। लेकिन इतना तो भगवान ने नेचर ने हमें स्मार्ट बनाया है। लेकिन अगर वो पेन आपका घरेलू उपचार से, रेस्ट से, आइस लगाने से, या कोई घर पे दर्द की मलहम रखी है वो लगाने से नहीं आराम मिलता, तो जरूर आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। या वो दर्द आपका आपको काम नहीं करने दे रहा, आपको आपके काम पे नहीं जाने दे रहा है, पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाई नहीं करने दे रहा, और जो होम मेकर फीमेल्स हैं उनको अपना घरेलू काम करने में दिक्कत है, तो आपको अपने पेन फिजिशियन से मिलना।
2: इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कोई भी दर्द, जो समझो आपने घरेलू उपचार लिया, दो तीन दिन उपचार लिया, लेकिन ना आपकी सूजन कम हुई ना आपकी तकलीफ कम हुई, उस वाले मरीज को श्योरली अपने पेन फिजिशियन से मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो दर्द का कारण कुछ और हो और जिसका इलाज बहुत ही मैंडेटरी है।
1: और जरूर डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। और क्या क्रॉनिक पेन से पूरी तरह सामान्य जीवन जीना संभव है?
2: बिल्कुल, क्रोनिक पेन अगर सही टाइम पे उपचार लिया जाए तो सामान्य जीवन जीना बहुत संभव है। अगर इस दर्द का सही टाइम पे इलाज नहीं होता तो उससे मरीज का जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है वो खराब होती है, पेशेंट की स्लीप नींद खराब होती है, पेशेंट की भूख पे फर्क पड़ता है, पेशेंट की जो सोशल लाइफ है वो खराब होती है। अगर आप सारा टाइम कमर दर्द से परेशान है तो ऑब्वियसली आप बाहर निकलना बंद कर देंगे, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, सोशली आइसोलेट हो जाएंगे। तो इसलिए क्रोनिक पेन का सही समय पे उपचार बहुत जरूरी है, और अगर सही समय पे उपचार करके प्रॉपर पेन जनरेटर का पता लगा के ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत हद तक सामान्य जीवन जीना बिल्कुल पॉसिबल है।
1: क्रोनिक पेन के प्रोसीजर के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे।
2: देखिए, क्रोनिक पेन के प्रोसीजर्स डिपेंड करते हैं, दो कैटेगरीज में आते हैं, रीजेनरेटिव थेरेपीज बोलते हैं या फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशंस या नर्व ब्लॉक, ये दो कैटेगरीज में यूजली मैनेजमेंट हमारे होते हैं। जो नर्व रिलेटेड पेन है उसमें हम नर्व का रेडियो फ्रीक्वेंसी की सहायता से या फिर कैंसर पेन में अल्कोहल की सहायता से उन नर्व्स को परमानेंटली स्टन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि वो जो पेन की सेंसेशन जो वो नर्व्स कैरी कर रही थी ब्रेन तक उनको दबाया जा सके। दूसरी एंटिटी होती है रीजेनरेटिव, जिसमें आप ही के ब्लड सेल्स जो कि हमारी हीलिंग में हेल्प करते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, जैसे कि आजकल प्लेटलेट्स प्लाज्मा थेरेपी बहुत कॉमनली यूज की जाती है स्पोर्ट्स इंजरी में या फिर डिजेनरेटिव कंडीशन में। तो ये दो मोस्ट कॉमन पद्धतिज हैं जिनसे हम क्रोनिक दर्द का इलाज कर सकते हैं।
1: और किन किन बीमारियों में इस तरीके से क्रोनिक पेन होता है ये भी जरूर जानना चाहेंगे।
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। कुछ बीमारियों में तो क्रोनिक पेन जो होता है वो हमें बीमारी दिखती है, लेकिन कुछ में आपको पेशेंट पेन बताता है लेकिन आपको कुछ दिखता नहीं। अब इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल है, हर्पीज निकला, पेशेंट निकला ठीक हो गया, डेढ़ महीने में एक महीने में जख्म भर गए, लेकिन मरीज को आठवां महीना चल रहा है, नौवां महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा है। तो हमें कोई जख्म दिख नहीं रहा है, वो जख्म गया है, लेकिन मरीज को उस जगह पे फिर भी पेन चल रहा है। एक कंडीशन होती है फैंटम पेन। मान लो दुर्भाग्यपूर्वक किसी पेशेंट का हाथ या पैर कट जाता है, लेकिन हाथ कट जाता है, सिर्फ कंधे पे स्टंप बचता है, लेकिन उसको फिर भी हाथ में दर्द महसूस होता है या हाथ में खारिश होती है, इसको हम फैंटम पेन बोलते हैं। ये भी एक क्रॉनिक नर्व पेन है जिसको हम क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन भी बोलते हैं। एक एंटिटी होती है फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें बहुत मुश्किल है कोई कारण ढूंढना, लेकिन स्टिल पेशेंट को पेन महसूस होता है एनीवेयर इन द बॉडी। उसमें बहुत रिसर्च है कि प्रोबेबली इन पेशेंट्स में देयर इज लैक ऑफ हैप्पी हार्मोन्स, बिकॉज जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो हमारे को अंदर ही अंदर हमारे पेन को रिलीव करते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज से एंडोजीनियस मॉर्फिन निकलती है, बॉडी थोड़ी बहुत अफीम बनाता है और हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनको एक्सरसाइज करके बड़ा अच्छा महसूस होता है और छोटा मोटा क्रैम्प उनका बेटर भी हो जाता है। और अब बात करते हैं वो क्रॉनिक पेन कंडीशन जो हमें दिखती है, जैसे कोई पेशेंट चल रहा है, चलते चलते लिम्प कर रहा है, पैर लड़खड़ा रहा है, तो कमर से उसको सियाटिका हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, वो बैक पेन हो रहा है, किसी का कंधा नहीं मूव कर रहा, वो हमें दिख रहा है कि फ्रोजन शोल्डर है। तो इन सब कंडीशंस में हम जो मिनिमल इन्वेसिव इंटरवेंशंस करते हैं, हर कंडीशन के लिए डिफरेंट है, बहुत वैरायटी ऑफ मिनिमल इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस हैं जो कि डे केयर एडमिशन में ही होती हैं, इनको 24 आवर एडमिशन की जरूरत नहीं है, जो कि आज की डेट में हर गवर्नमेंट पैनल और हर इंश्योरेंस पैनल में वो सुविधा उपलब्ध है, इंक्लूडिंग रीजन रीजनरेटिव मेडिसिन, तो इससे हम पेशेंट को बहुत अच्छा पेन साइकिल ब्रेक करके दे सकते हैं और बहुत लंबे समय के लिए आराम दे सकते हैं।
1: मैम ये जरूर जानना चाहेंगे जैसे कि कंटिन्यूएशन मेडिसिन लेना ही क्या इसका समाधान है, क्या अदर ऑप्शंस पर जा सके, यानी कि एक्यूप्रेशर थेरेपी या कुछ और तरीके की हम लोग ट्रीटमेंट लें?
2: कि कॉन्टिन्यूस मेडिसिन लेना ऑब्वियसली एडवाइजेबल नहीं है। हमारे पास इस तरह से बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि इंडिया में अब जैसे वो क्वैक प्रैक्टिस बहुत कॉमन है, तो कुछ इस तरह की दवाइयां हैं जो बॉडी को डिपेंडेंट बना देती है और वो दवाइयां वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कॉन्टिन्यूसली लेते रहते हैं। कुछ सालों तक उनको बहुत अच्छा लगता है वो दवाइयां लेकर, और फिर कुछ साल बाद जब डिपेंडेंट हो जाते हैं वो दवाइयां भी असर करना बंद कर देती हैं। तो दवाइयां लेना सॉल्यूशन नहीं है। जैसे पहले भी हमने बात की कि हमें पेन जनरेटर ढूंढना बहुत जरूरी है और पेन जनरेटर ढूंढकर उसका इलाज करना बहुत मैंडेटरी होता है। हाँ, ये वाली जो पद्धतियां होती हैं जो एक्यूप्रेशर है या ड्राई नीडलिंग है, ये सब कुछ हेल्पफुल होते हैं। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, प्रॉपर एक्सरसाइजेस अंडर गाइडेंस, ये सब कुछ हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे बहुत ही कॉमन से पेन की बात करते हैं, सपोज फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर हम फोर्सफुली अगर उसमें एक्सरसाइजेस करेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि हमारी मांसपेशियों में डैमेज हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसी पेन को ट्रीटमेंट करते हैं पेन फिजिशियन के पास जाके, उस पेन का पहले इलाज करते हैं, जो हम शोल्डर की मूवमेंट ओपन कर देते हैं, हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं इस तरह के जिससे शोल्डर की पेन फ्री मूवमेंट हो जाती है, वो प्रोसीजर करने के बाद अगर हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, जो दर्द में जो रिलीफ है, जो एक्सरसाइजेस का जो रिलीफ था वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता। तो सिर्फ एक्सरसाइज करना सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ दवाई लेना सॉल्यूशन नहीं है, या सिर्फ इंटरवेंशन करना सॉल्यूशन नहीं है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए कि सारे लोग, हमारे जो पेन फिजिशियंस हैं वो और उनके साथ जो अटैच्ड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो मिलकर एक अप्रोच डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट में ये प्रोसीजर होना चाहिए और इस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए।
1: लाइफस्टाइल की बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या लाइफस्टाइल भी इफेक्ट करता है क्रॉनिक पेन में?
0: यस मैम, हेल्दी लाइफस्टाइल इज ऑलवेज बेनिफिशियल इन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल से आप बीपी भी प्रिवेंट कर सकते हो, डायबिटीज भी प्रिवेंट कर सकते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले पेन, स्पाइन पेन, नी पेन, ज्वाइंट पेन, इनको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। बट दुर्भाग्यपूर्वक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना आज की फास्ट पेस लाइफ में थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन, बहुत पेशेंस और बहुत एफर्ट लगता है।
1: और प्रभास मैम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि क्रॉनिक पेन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ हमारे लिसनर्स के लिए रहेगा कि किस तरीके से इसको अगर हम घर में क्योर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, अगर ये एक्सेस में ये पेन जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
2: देखिए, क्रॉनिक पेन का ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो सकता। क्रॉनिक पेन के ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने प्रॉपर फिजिशियन से इवेल्युएट करना और उसका ट्रीटमेंट लेना मैंडेटरी है। बट यस, घर पे हेल्दी लाइफस्टाइल के अच्छा डाइट, अच्छा फ्रूट्स फाइबर रिच डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर लाइफस्टाइल के, अगर आपके लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, आपकी जॉब इस तरह की है, डेस्क जॉब है, आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो आपको चेयर पे किस पोस्चर में बैठना है और कितना टाइम में आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेना है एंड क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि आपकी स्पाइन हेल्दी रह सके, ये सब कुछ आप घर पे फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, फॉर प्रिवेंटिंग बेसिकली द क्रोनिक पेन्स।
1: और इस विषय पर हमारे श्रोताओं के लिए क्या कुछ मैसेज और जानकारी आप देना चाहेंगे?
0: एक ही मैसेज है हमारी तरफ से कि अगर आप किसी भी तरह के दर्द में, चाहे वो मांसपेशी का दर्द है, हड्डी का दर्द है, घुटने कमर कंधे का दर्द है या कैंसर का पेन है, और अगर आप उससे पीड़ित हैं, आपको नहीं कोई समाधान मिल रहा, तो आप अपने नजदीकी पेन फिजिशियन से मिलिए। हमारे ISSP की वेबसाइट पे हर शहर में जितने भी पेन फिजिशियन काम करते हैं वो अपने शहर का नाम डालेंगे तो वहां के शहर के सारे पेन फिजिशियन का नाम उस वेबसाइट में दर्ज है।
1: आज कई जो टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन, हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: दीर्घकालिक दर्द, कारण, लक्षण और प्रबंधन। अभी आप इस विषय पर ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारे प्रतिभागी विशेषज्ञ थे डॉक्टर नम्रता डबास, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेन मेडिसिन, और डॉक्टर दीप दीवांशु लाल, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पेन मेडिसिन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी मंजीत कौर। दीर्घकालिक दर्द केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक और भावात्मक चुनौतियां भी पैदा करती हैं। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व एल्जाइमर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एल्जाइमर्स एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो आपकी रोजाना की दिनचर्या को काफी प्रभावित करती है। इस बारे में हमने बात की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव से।
4: What is the basic difference between the two, dementia and Alzheimer's?
5: So, जो Alzheimer's disease या Alzheimer's dementia is a variety of dementia. तो dementia के

0: साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इस दिन आत्महत्या के मामलों की रोकथाम में मदद के लिए लोगों को जागरूक और जानकार बनाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसी जानकारी को समेटे है हमारी भेंट वार्ता। हमारी विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर स्वाति। कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे लोग सुसाइड करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपकी नजर से एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कौन से ऐसे कारण बनते हैं जिसके कारण लोग ऐसा करते हैं?
1: दो प्रमुख कारण हम समझते हैं। एक तो वो मानसिक स्वास्थ्य, जहाँ पे डिप्रेशन बहुत कॉमन फैक्टर देखा गया है कि जिसकी वजह से एक पर्सन आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकता है। उसके अलावा नशा करना, कोई तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना भी कारण बन सकते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि डिप्रेशन नहीं होता लेकिन किसी फेलियर की वजह से या किसी क्राइसिस की वजह से उस इंसान को एक बहुत सेंस ऑफ वर्थलेसनेस कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं होगी, मैं दूसरों के ऊपर बोझ बन जाऊंगा, या एक सेंस होना कि मेरी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, मीनिंगलेस है, मेरे जीने से किसी को क्या फर्क पड़ता है या मेरे मरने से भी क्या हो जाएगा, वो सब भी कारण बन सकते हैं। सामाजिक की हम अगर बात करें तो दो तीन कारण पाए गए हैं उसमें। एक होता है कि आपको जहां पे एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं आती, आइसोलेशन हो जाता है। दूसरा वजह हो सकता है कि आपकी मान लीजिए कम्युनिटी या सोसाइटी या फैमिली इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि आपको उसमें अपना एक सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं कौन हूं या मैं क्या कर सकता हूं वो नहीं मिलता। जहां पे औरतें किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं उनमें इस तरह के सुसाइड देखे जाते हैं। या जैसे अगर हम फार्मर्स वगैरह की बात करें तो जहां पे एक सिस्टम से हो जाना कि ये सिस्टम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिस्टम को भी एक पॉइंट देना कि देखिए आप लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इंसान आत्महत्या के लिए प्रेरित हो।
0: जी जी, बहुत सारे आपने कारण बताए तो उससे मुझे लगता है कि शायद जिंदगी के किसी पड़ाव पर भी इस तरह की भावना किसी को आ सकती है।
1: बिल्कुल।
0: क्या आप कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप बताना चाहेंगी जहां पर ये ज्यादा कॉमन है सुसाइड टेंडेंसी?
1: आने को तो किसी भी स्टेज पर आ सकता है, बट जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क का एज माना गया है वो है 15 साल से लगभग 35 से 40 साल। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंट्स की एंड यंग एडल्ट्स की। और उसके अलावा एल्डरली में भी, जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी सुसाइड की प्रवृत्ति देखी गई है।
0: अच्छा।
1: जो हाई रहती है
0: तो वो उनका कारण क्या बनता है?
1: उनमें कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया है तो लोनलीनेस, अकेलापन, फाइनेंशियल इश्यूज अगर हो गए हैं, क्रॉनिक फिजिकल इलनेसेस, तो मान लीजिए ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है या जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, पेन वगैरह होना। एंड सबसे और इम्पोर्टेंट है जो सुसाइड देखा गया है वो जो लोग विडो पति या पत्नी गुजर गए हैं उनमें सुसाइड का रिस्क बहुत हाई देखा गया है।
0: तो जैसा मैं अभी पूछ रही थी आपसे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से पता लगे, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन, डिप्रेशन इतना कॉमन लूज वर्ड्स की तरह यूज होता है कि हम रोज ही बोलते हैं कि मैं बड़ी टेंशन में हूं, आज तो मुझे एंजाइटी हो रही है, तो क्या ये सुसाइड की तरफ इशारा करती है, ये कैसे पता लगे?
1: बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम अपने कान और आंख खुले रखेंगे तो हम जान सकते हैं कि अगर हमारे आसपास वाला हमारा कोई दोस्त या फैमिली मेंबर शायद इस तरफ जा रहा है।
0: जी।
1: तो कुछ छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं, जहां पे एक इंसान ने मान लीजिए बहुत बार एक बात नेगेटिव नकारात्मक बातें करनी शुरू कर दी, जिंदगी क्या है, क्या करना है, फ्यूचर में तो सब ऐसे ही है, कुछ भी तो ठीक नहीं होने वाला, मेरे तो कुछ करने से कुछ होगा नहीं। उसके बाद कभी इस तरह से बातें कि इससे अच्छा तो भगवान उठा ले, या चलते चलते एक्सीडेंट ही हो जाए, मन करता है कभी कभी कि ये सब छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप आएगा जहां पे इंसान शायद ये बोलने लगे कि मुझे कभी कभी लगता है कि खुद को हानि पहुंचा लूं, खुद को कुछ कर लूं। फिर आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हो सकता है वो दवाइयां इकट्ठा करने लगा हो, ब्लेड्स रखने लगा हो, या बाहर से कोई पेस्टिसाइड या ऐसी कोई चीज खरीद के अपने पास रख ली हो, तो उन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। जाके रिश्तेदारों से मिलना, ऐसे लोगों से मिलना जिनसे वो यूजुअली नहीं मिलेगा फैमिली में, काइंड ऑफ सेइंग गुड बाय कि मैं

0: बताने वाला हूँ, एक्सप्लिसिटली ना बोले,
1: कुछ लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव
0: लाइफस्टाइल में बदलाव देखने को मिलेगा, अपनी चीजें किसी और को उसने दे दी कि चलो दे देता हूँ। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मिस होती है, एक मान लीजिए एक लंबे समय से इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस एंजाइटी में चल रहा है, अचानक से बिना किसी ट्रीटमेंट के या बिना किसी वजह के अचानक से पॉजिटिव मूड हो जाना, एंड उस समय केसेस देखे गए हैं कि इट वाज काइंड ऑफ बिकॉज उन्होंने एक डिसीजन ले लिया था कि मुझे अब जाना है यहाँ से, इट वाज काइंड एक बर्डन हट जाता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बट अब मेरा फैसला हो गया कि मुझे क्या करना है, दैट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि
1: रेड फ्लैग है जिसको हमें जरूर वॉच करना चाहिए। और ये मुझे लगता है लोग मिस करते होंगे। अच्छा, जैसे बहुत समय कई बार ऐसा होता है कि हमें सिम्टम भी दिखते हैं, हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, और कई बार हमारे साथ भी ऐसी कई चीजें हो रही होती हैं, तो हम कहते हैं इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, और कई मिथ्स भी हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो जितना अवेयर हम फिजिकल बीमारियों के लिए हैं उतना हम मेंटल बीमारियों के लिए नहीं है, तो कई बार हम उनको नेग्लेक्ट भी करते हैं, तो कहां से ये नेग्लेक्ट जो है ये हार्मफुल हो सकता है?
0: अगर जैसे मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड रहा है और एक बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर उसके बारे में बात कर रहा है और आपने इग्नोर कर दिया, वो एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बच्चा अगर आपको पता चले कि आपका फ्रेंड या अगेन कोई फैमिली मेंबर खुद को हर्ट कर रहा है, चाहे सुसाइड के लिए नहीं कर रहा बट खुद को हर्ट कर रहा है, और आपने कहा चलो हर्ट ही तो कर रहा है कि थोड़ा बहुत ब्लेड से अपने आप को काट लिया या दीवार सर पे दे दिया मार दिया या हाथ से मुक्का मार दिया, तो कोई बात नहीं सुसाइड नहीं करेगा। सो ये रीजंस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर पहले उन्होंने कभी अटेम्प्ट किया है और वो हमने इग्नोर कर दिया कि पहले एक बार तो करा है लेकिन अब नहीं करेगा, समझा बुझा दिया है, दवाइयां भी दे रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, तो अब तो ये ठीक हो जाएगा तो अब ये नहीं करेगा,
1: तो रिलैक्स नहीं होना है,
0: रिलैक्स नहीं होना है। अगर वो जो हमने रिकग्नाइजिंग साइंस की बात करी, अगर उनमें से कुछ भी दिखता है तो सतर्क हो जाना है, ये नहीं सोचना है कि वो अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहा है।
1: अच्छा, ये भी बताइए कि कई बार जैसे फैमिलीज में भी हमने देखा है जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, कहे जाते हैं जेनेटिक भी होते हैं कई बार और एक्वायर्ड तो होते ही हैं, तो अगर किसी की ऐसी हिस्ट्री रही है तो क्या वो इफेक्ट कर सकता है फ्यूचर जनरेशन में?
0: बिल्कुल कर सकता है, जेनेटिक्स का रोल होता है। जैसे फर्स्ट डिग्री में अगर किसी को, फर्स्ट डिग्री मतलब पेरेंट्स हैं, सिबलिंग है, उसमें किसी को मेंटल इलनेस है तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, सेकेंड डिग्री ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा सा कम करेगा, तो ऐसे करके होता है। तो रिस्क फैक्टर्स तो हाई होते हैं अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है तो।
1: तो इस तरह के सिम्टम्स वाला जैसे हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप जाएं और मिलें डॉक्टर से और बताएं पूछें कि क्या है, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो किस तरह से आप निदान उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं?
0: सो जब हमारे पास पेशेंट पहली बार आता है तो सबसे पहले उसकी डिटेल केस हिस्ट्री ली जाती है, पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से पहले हम बात करते हैं, अगर स्पेशली अगर चाहे वो एडल्ट है, बच्चा है, कोई भी है, एंड फिर हम फैमिली मेंबर्स से भी बात करते हैं, तो उसमें हम सारी चीजें जितने भी मेंटल इलनेसेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ड्रग अब्यूज, पर्सनालिटी इश्यूज, उन सबको हम डिटेल में असेस करते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि अगर सुसाइडल आइडियाज हैं क्या, क्या वो बता रहा है कि हाँ मेरा मन करता है मैं खुद को हार्म कर लूं, क्या उसने कोई प्लान बनाया है, क्या उसने कोई चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, या जाके जैसे रेलवे स्टेशन में देख के आया है क्या हो रहा है, तो हम फिर सिवेरिटी कितनी है, कितना
1: उसकी स्टेजेस भी होती हैं।
0: स्टेजेस में जैसे बोला गया, एक शुरू में आएगा कि भगवान मुझे उठा ले, इसको कहते हैं डेथ विश, कि मैं कुछ नहीं करूंगी अपने आप को बट भगवान उठा ले। उसके बाद एक्टिव सुसाइडल आइडिया कि कोई कुछ नहीं करने वाला, मुझे ही खुद को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन विदाउट एनी प्लान, कोई प्लान नहीं बनाया। और तीसरा होता है जहां पे प्लान बनाना शुरू कर दिया, तो आपने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि कहां से किस तरह के सब्सटेंसेस से, किस चीज से मैं कंज्यूम कर सकता हूं या किससे पेनलेस डेथ हो सकती है, और फिर उससे लास्ट में आपने एक्चुअली उन चीजों को इकट्ठा करना या देखना शुरू करने की कोशिश करने लगना, वो फिर लास्ट स्टेज।
1: कोई ऐसी हेल्पलाइन हो या कोई ऐसी वेबसाइट हो जो आप कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताना चाहें?
0: तो एक जो वेबसाइट गवर्नमेंट ने शुरू करी है वो है टेलीमानस, जिसका नंबर है 14416। वहां पे काउंसलर्स होते हैं जो आपको स्क्रीन करेंगे, आपके इश्यूज को समझेंगे और आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करके किसी भी चीज में, चाहे वो मेंटल इलनेस है, सुसाइड है, पर्सनालिटी इश्यू है, और उसके बाद वो आपको एक्सपर्ट्स के पास रेफर करेंगे, एंड ये सारी चीजें आप ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं इजिली। सो उसके अलावा और बहुत सारे प्राइवेट हेल्पलाइंस वगैरह भी हैं और गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है।
1: तो बहुत सारी जानकारी हमें आपसे मिल रही है डॉक्टर स्वाति। तो आज श्रोताओं, आपने सुना आत्महत्या

0: हत्या और इसके कारण, इसका उपचार और इसका बचाव। अभी आप विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर ये विशेष भेंट वार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
1: और श्रोताओं, अब समय हुआ है अगले कार्यक्रम धरती आकाश का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आपके कार्यक्रम।
2: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं डॉक्टर निमिष कपूर और आप सुन रहे हैं विज्ञान और तकनीक से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो केवल रेल की पटरियों पर नहीं चल रही बल्कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में आगे बढ़ रही है। जरा कल्पना कीजिए, एक ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, उसके भीतर यात्री सफर कर रहे हैं, इंजन अपनी पूरी शक्ति से ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इस ट्रेन में न डीजल जल रहा है और न उससे पारंपरिक इंजन की तरह धुआं निकल रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर यह ट्रेन चल कैसे रही है, और इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। और भारत ने अब हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन को वास्तविक परिचालन में उतारकर स्वच्छ रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन, जिसे नमो ग्रीन रेल का नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जींद में किया गया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन तकनीक पर काम कर रहे हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। तो आज की हमारी इस वार्ता में हम बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन पर, यह कैसे चलती है, भारत में इसका क्या महत्व है और दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत की उपलब्धि कहाँ तक जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हाइड्रोजन ट्रेन वास्तव में विकसित भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में रेलवे का बहुत विशाल नेटवर्क है, देश के अनेक रेल मार्ग विद्युतीकरण से जुड़ चुके हैं और विद्युत ट्रेनें यहाँ प्रभावी ढंग से चल रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ रेल मार्ग ऐसे हैं जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है और वहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेनें संचालित होती हैं। यहीं पर हाइड्रोजन ट्रेन एक संभावित विकल्प बनकर सामने आती है, क्योंकि किसी रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने के लिए ओवरहेड बिजली के तारों सहित पूरी विद्युत अवसंरचना विकसित करनी पड़ती है। हाइड्रोजन ट्रेन में ऐसी व्यवस्था अलग तरीके से काम करती है। इस ट्रेन में बिजली बाहर से लगातार नहीं लाई जाती बल्कि ट्रेन के भीतर ही हाइड्रोजन से बिजली बनाई जाती है, यानी हाइड्रोजन ट्रेन अपने साथ अपना ऊर्जा स्रोत लेकर चलती है। इसीलिए गैर विद्युतीकृत रेल मार्गों पर इसका महत्व बढ़ जाता है। भारत की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का उद्देश्य भी ऐसे ही गैर विद्युतीकृत रेल मार्गों पर डीजल ट्रेनों के स्थान पर स्वच्छ हाइड्रोजन आधारित तकनीक को बढ़ावा देना है। जींद सोनीपत रेलखंड को इसी उद्देश्य से पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। अब आते हैं इस तकनीक के सबसे रोचक हिस्से पर। हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन को सामान्य अर्थों में जलाकर इंजन नहीं चलाया जाता, इसके बजाय इसमें इस्तेमाल होता है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, यानी PEMFC। नाम जरा वैज्ञानिक है लेकिन इसकी कार्यप्रणाली को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस पहुँचती है, हाइड्रोजन को प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन में अलग किया जाता है। विशेष झिल्ली प्रोटोन को तो दूसरी तरफ जाने देती है लेकिन इलेक्ट्रॉन को रोकती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहरी विद्युत परिपथ से होकर गुजरते हैं और यहीं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा पैदा करता है। यह बिजली ट्रेन की इलेक्ट्रॉनिक मोटरों को चलाती है। दूसरी ओर हाइड्रोजन के प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं, यानी इस प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद है पानी और ऊष्मा। डीजल इंजन की तरह यहाँ दहन से धुआं नहीं निकलता, यही हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। अब एक और दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य जान लेते हैं। हाइड्रोजन का भार के हिसाब से ऊर्जा घनत्व लगभग 120 मेगाजूल प्रति किलोग्राम बताया गया है, जबकि डीजल का लगभग 43 मेगाजूल प्रति किलोग्राम है। अर्थात समान भार की तुलना करें तो हाइड्रोजन में डीजल की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक ऊर्जा होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, हाइड्रोजन का उपयोग अपने आप में यह सुनिश्चित नहीं करता कि पूरी ऊर्जा व्यवस्था शून्य कार्बन हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन कैसे बनाया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर या पवन ऊर्जा की

से तैयार किया जाता है तो इसका पर्यावरणीय लाभ काफी अधिक हो सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन की कहानी केवल ट्रेन तक सीमित नहीं है, यह कहानी जुड़ी है ऊर्जा उत्पादन से, नवीकरणीय ऊर्जा से और पूरे ऊर्जा तंत्र के परिवर्तन से। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन कितनी शक्तिशाली है, अब थोड़ा ट्रेन की तकनीकी संरचना पर भी बात कर लेते हैं। भारत की इस हाइड्रोजन ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं। इनमें 2 हाइड्रोजन चलित पावर कार और 8 यात्री डिब्बे हैं। प्रत्येक पावर कार में 1200 किलोवाट क्षमता का फ्यूल सेल लगाया गया है, यानी दोनों पावर कार मिलकर लगभग 2400 किलोवाट बिजली उपलब्ध करा सकती हैं। ट्रेन की स्वीकृत अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि इसका डिजाइन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और परीक्षणों के दौरान इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलाया गया। ट्रेन में लगभग 2600 यात्रियों की यात्रा क्षमता है और यह ट्रेन 89 किलोमीटर लंबे जीन सोनीपत रेलखंड पर चलेगी, जहां 13 मध्यवर्ती स्टेशन है। यह सिर्फ ट्रेन नहीं, पूरा भारतीय सिस्टम है। किसी नई ट्रेन को बनाना एक बात है, लेकिन एक ऐसी ट्रेन बनाना जिसमें हाइड्रोजन का उत्पादन या आपूर्ति, उसका भंडारण, संपीड़न, ईंधन भरना, सुरक्षा के इंतजाम, ट्रेन का डिजाइन और परिचालन, सब कुछ एक साथ काम करे, बिल्कुल अलग स्तर की चुनौती है। इस परियोजना में कई भारतीय संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड, RDSO लखनऊ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन और हाइड्रोजन के भंडारण और वितरण से जुड़ी व्यवस्था के लिए PESO यानी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने लाइसेंस प्रदान किया है। हाइड्रोजन ट्रेन और डीजल ट्रेन में फर्क क्या है? अब एक बहुत सरल तुलना के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। डीजल ट्रेन में जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सूक्ष्म कण जैसे प्रदूषक निकल सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन में बिजली रासायनिक प्रक्रिया से पैदा होती है, इसलिए ट्रेन के संचालन के दौरान स्थानीय स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रत्यक्ष उत्सर्जन नहीं होता। मुख्य उत्पाद जल वाष्प और ऊष्मा होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर के कारण ध्वनि प्रदूषण भी अपेक्षाकृत कम हो सकता है। रखरखाव के दृष्टिकोण से भी फ्यूल सेल आधारित प्रणाली में पारंपरिक दहन इंजन के कई चलायमान हिस्से नहीं होते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हाइड्रोजन ट्रेन हर स्थिति में डीजल ट्रेन से बेहतर है। हाइड्रोजन ट्रेन के लिए विशेष बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन का भंडारण, संपीडन, वितरण और ईंधन भरने के इंतजाम। इसलिए इसकी वास्तविक आर्थिक उपयोगिता का मूल्यांकन लंबे समय के परिचालन अनुभव के बाद ही बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिसका इंतजार शायद आपको भी है, क्या भारत दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन बनाने वाला पहला देश है? नहीं, हाइड्रोजन रेल तकनीक पर दुनिया के कई देश पहले से काम कर रहे हैं। भारत ने जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो फिर भारत की उपलब्धि क्या है, आप ये जरूर जानना चाहेंगे। भारत की असली उपलब्धि इस बात में है कि उसने हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को भारतीय रेल प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने, ट्रेन में एकीकृत करने और वास्तविक परिचालन में उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस परियोजना में भारतीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। RDSO ने तकनीकी और डिजाइन की विशेषताओं में बड़ा योगदान दिया है। अब इस पूरी कहानी को विकसित भारत के व्यापक संदर्भ में देखते हैं। विकसित भारत केवल बड़ी इमारतों, तेज रेलगाड़ियों या आधुनिक शहरों का नाम नहीं है। विकसित भारत का अर्थ है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन, उन्नत तकनीकी क्षमता, स्वदेशी अनुसंधान और निर्माण, कुशल मानव संसाधन और ऐसी अर्थव्यवस्था जो भविष्य की तकनीकों को अपनाने के साथ उन्हें विकसित भी कर सके। हाइड्रोजन ट्रेन इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ती है। भारत आज अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। यदि सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ता है तो भविष्य में हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में योगदान दे सकते हैं। यही कारण है हाइड्रोजन ट्रेन का संबंध केवल रेलवे से नहीं है, इनका संबंध है भारत की ऊर्जा सुरक्षा से, जलवायु लक्ष्यों से, आत्मनिर्भर भारत से और हरित अर्थव्यवस्था से। भारत ने हाइड्रोजन को व्यापक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा बनाया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है, और अब हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन में होता है तो यह स्वच्छ ऊर्जा को सीधे हमारी रोजमर्रा की गतिशीलता से जोड़ता है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, ऐसे में परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ईंधनों की खपत को कम करना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी तकनीक का उदाहरण है जो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन के बीच पुल का काम कर सकती है।
हाइड्रोजन को सभी ट्रेनों के लिए एकमात्र ईंधन नहीं माना जा सकता। जहां रेल मार्ग पहले से विद्युतीकृत हैं, वहां विद्युत ट्रेनें अधिक प्रभावी हो सकती हैं। कुछ परिस्थितियों में बैटरी आधारित प्रणालियां भी उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे गैर विद्युतीकृत रेल मार्ग जहां लंबे समय तक डीजल का उपयोग जारी रहने की संभावना है।

0: वहाँ हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विकल्प बन सकता है। यानी सही सवाल यह नहीं है कि हर ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी, सही सवाल यह है कि किस रेल मार्ग के लिए कौन सी स्वच्छ ऊर्जा तकनीक सबसे उपयुक्त है। और इसी प्रश्न का उत्तर भारत को अपने पायलट प्रोजेक्ट और वास्तविक परिचालन अनुभव से मिलेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल यह नहीं है कि एक ट्रेन हाइड्रोजन से चल रही है, इससे बड़ी उपलब्धि यह है कि तकनीक भारतीय संस्थागत क्षमता और राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को एक साझा लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यही तो है विकसित भारत की यात्रा। और शायद आने वाले समय में जब हम किसी गैर विद्युतीकृत रेल मार्ग पर बिना डीजल के चलती किसी हाइड्रोजन ट्रेन को देखेंगे तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उस ट्रेन में केवल यात्री नहीं होंगे, उसमें सवार होगा भारत का स्वच्छ ऊर्जा का सपना, भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का विश्वास और विकसित भारत का संकल्प।
1: मैं महेश भारती आज आपको अंतरिक्ष में हमारी तीसरी आंख के बारे में जानकारी दूंगा। EOS-05 एक जियोसिंक्रोनस यानी भूतुल्यकालिक इमेजिंग उपग्रह है जिसे 4 सितंबर 2026 को प्रातः 2:55 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसके लिए GSLV-F17 रॉकेट का प्रयोग किया गया। इसे भूतुल्यकालिक कक्षा में 35,860 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। यह मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में उसके साथ साथ उसी गति और दिशा में घूमेगा। ऐसा होने से यह भारतीय उपमहाद्वीप और निकटवर्ती इलाकों के सापेक्ष स्थिरता बनाए रखेगा। दूसरे शब्दों में यह साल के 365 दिन और 24 घंटे हमें निगरानी क्षेत्र की ताजा तस्वीरें लगातार उपलब्ध करवाता रहेगा। अतः यह अंतरिक्ष में हमारी तीसरी आंख की भूमिका निभाएगा। इस जानकारी का सबसे बड़ा फायदा कृषि क्षेत्र के लिए होगा। हमें आने वाले मौसम और उसमें होने वाले उतार चढ़ाव की सटीक जानकारी मिल पाएगी। जब यह जानकारी हम किसानों को दे पाएंगे तो वे फसलों के बुआई को बेहतर प्रबंधन करके अपनी उपज बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे। इस उपग्रह के द्वारा दी गई जानकारी का दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपदा प्रबंधन क्षेत्र में होगा। आने वाली बाढ़ सुनामी की पहले से चेतावनी देना संभव होगा जिससे भविष्य में भारी जनहानि से बचा जा सकेगा। समुद्री चक्रवातों की अग्रिम चेतावनी दी जा सकेगी और चक्रवात के आगे बढ़ने की दिशा और मार्ग का पूर्वानुमान संभव हो सकेगा जिससे संभावित तटीय इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा जा सकेगा। तीसरी बड़ी उपयोगिता भू सामरिक क्षेत्र में होगी। हम शत्रुओं की सेना की गतिविधि और आवागमन की पूर्व सूचना पाकर हम अपनी सुरक्षा के सामरिक और रणनीतिक प्रयास कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारा देश विश्व के कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जो यह क्षमता रखते हैं। इस उपग्रह का वजन 2367 किलोग्राम है और इसका जीवन काल 10 वर्ष है। वर्तमान में भारत 20 इमेजिंग उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है, जिनमें से अधिकांश निम्न भू कक्षा में है। प्रक्षेपण के इसे GT यानी भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में भेजा गया और 7 सितंबर 2026 को इसके साथ लगे थ्रस्टर्स के जरिए इसे अपनी अभीष्ट कक्षा में 35,860 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। यहाँ यह रेखांकित करना भी जरूरी है कि इतनी अधिक दूरी होने के कारण इसके द्वारा लिए गए चित्रों का रेजोल्यूशन बहुत अधिक नहीं होता। इसकी खासियत लगातार नजर बनाए रखने में और 24 घंटों बिना पलक झपकाए। इसकी तस्वीरों को हमारे निम्न भू कक्षा में पहले से स्थापित 20 इमेजिंग उपग्रहों द्वारा ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों के साथ मिलाकर देखा जाएगा। नोटी बॉय GSLV-F17 की ये 19वीं उड़ान थी। इसकी ऊंचाई 51.5 मीटर और वजन 420.5 टन था। उपग्रह का वजन 2367 किलो था जो इसके द्वारा ले जाए जाने वाला सर्वाधिक पेलोड था। उपग्रह की सुरक्षा के लिए 4 मीटर व्यास वाला विशेष कक्ष बनाया गया था। इस भीमकाय रॉकेट के 3 चरण होते हैं। इसके पहले चरण केंद्र में S-139 सॉलिड रॉकेट मोटर होती है जिसमें ठोस ईंधन HDPE का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य बूस्टर के चारों ओर स्ट्रैप ऑन मोटर लगी होती है जिसमें तरल ईंधन भरा जाता है। उड़ान भरने के तुरंत बाद यह चरण रॉकेट को वायुमंडल के बाहर धकेलने का काम करते हैं। जब पहला चरण अपना ईंधन जलाकर अलग हो जाता है तो तुरंत तरल ईंधन वाला दूसरा चरण सक्रिय हो जाता है। इसमें इसरो का प्रसिद्ध विकास इंजन लगा होता है। यह भाग रॉकेट को अंतरिक्ष की निचली सीमा तक ले जाता है। तीसरा चरण इस रॉकेट का सबसे सक्षम और उन्नत भाग है जिसमें क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग होता है। अत्यधिक कम तापमान पर रखे गए तरल हाइड्रोजन तथा तरल ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यह चरण अंतरिक्ष के निर्वात में काम करता है तथा बेहद सटीक गति से उपग्रह को उसकी अंतरण कक्षा में स्थापित कर देता है। इस रॉकेट को कई बार असफलता का सामना भी करना पड़ा है, इसलिए इसे नोटी बॉय यानी शरारती लड़के का नाम दिया गया। प्रक्षेपण के 3 प्रमुख चरण, पहला चरण ठोस और तरल, इसके केंद्र में S-139 सॉलिड

0: रॉकेट मोटर लगी होती है जिसमें ठोस ईंधन एचटीपीबी का उपयोग होता है। मुख्य बूस्टर के चारों ओर चार स्ट्रैप ऑन मोटर लगी होती है जो तरल ईंधन से संचालित होती है। उड़ान भरते ही यह चरण रॉकेट को तीव्र गति से वायुमंडल से बाहर धकेलता है। पहला चरण अलग होने के बाद दूसरा चरण सक्रिय होता है। इसमें इसरो का सुप्रसिद्ध विकास इंजन लगा होता है जो रॉकेट को अंतरिक्ष की निचली सीमा तक ले जाता है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक, यह रॉकेट का सबसे उन्नत और सक्षम हिस्सा है। अत्यधिक कम तापमान पर रखे गए हाइड्रोजन ईंधन और तरल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के मिश्रण से संचालित यह क्रायोजेनिक चरण अंतरिक्ष के निर्वात यानी वैक्यूम में काम करता है और उपग्रह को बेहद सटीक गति में कोण से उसकी अंतरण कक्षा में स्थापित करता है।
1: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

0: सुबह ही प्रोग्राम के तहत अभी आपने भजन सुने और अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और अपने श्रोताओं को उन कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने का जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की है। श्रोताओं, आज है 19 सितंबर और आपको हम बता दें कि वर्ष 1891 में

आज के दिन ही विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का मैनचेस्टर में पहली बार मंचन किया गया था। वहीं 1893 में न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम 1893 के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। वर्ष 1955 में अर्जेंटीना की सेना और नौसेना ने विद्रोह किया और राष्ट्रपति जुआन पेरोन को पद से हटा दिया था। वर्ष 1982 में आज के दिन ही स्कॉट फॉरमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और 1983 में आज के दिन ही ब्रिटिश उपनिवेश कैरेबियन द्वीप सेंट किट्स और नेविस आजाद हुए। वर्ष 1996 में आज के दिन ही एलेजा इजित बोगोविक युद्धोत्तरीन कालीन बोस्निया के पहले राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 2000 में आज के दिन ही कर्ण मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता और 2007 में साइबर वॉर की संभावना को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने अस्थाई कमांड का गठन किया था। और श्रोताओं, अब समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि याद कर रहे हैं आज विष्णु नारायण भातखंडे को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हें आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने वाले प्रमुख संगीत शास्त्री के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकालत की। उसके बाद उन्होंने संगीत के गहन अध्ययन के प्रति अपना जीवन समर्पित किया और देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और अलग अलग घरानों के संगीतकारों गायकों से मिलकर रागों तथा बंदिशों का अध्ययन किया। भातखंडे ने अपने ज्ञान को लिखित और व्यवस्थित रूप दिया और आपको बता दें कि उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत के रागों को वर्गीकृत करने के लिए 10 थाट प्रणाली विकसित की, जो आज भी संगीत शिक्षा में व्यापक रूप से प्रचलित है। उन्होंने रागों के आरोह अवरोह पकड़ स्वर विन्यास और बंदिशों को भी व्यवस्थित रूप से दर्ज किया था। उनकी प्रमुख कृति है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो कि एक क्रमिक पुस्तक मालिका भी मानी जाती है।

श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है सरस्वती प्रसाद की। वे हिंदी की चर्चित लेखिका थी और सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री के रूप में भी जानी जाती हैं। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियों में नदी पुकारे सागर और एक थी तरु शामिल हैं, जो कि एक बहुत जानी मानी रचना है। उनकी अन्य रचनाओं में कादम्बिनी, साप्ताहिक हिन्दुस्तान और नैन्सी जैसी पत्रिकाओं में भी देखा गया। वे समकालीन कवित्री रश्मि प्रभा की माता थी और सरस्वती प्रसाद का साहित्यिक जीवन ऐसा रहा है जहां पर उन्होंने मानवीय संवेदनाओं, प्रकृति और सामाजिक सरोकारों की अभिव्यक्ति हमारे सामने रखी और हिंदी साहित्य में उनकी लेखनी और साहित्य संबंधों के लिए आज भी उन्हें मुख्य रूप से याद किया जाता है। श्रोताओं, आज जयंती है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर की। वे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, संस्कृत विद्वान, वेदों के अध्येता और समाजसेवी थे। उन्होंने चित्रकला के साथ साथ संस्कृत और वेदों का गहन अध्ययन किया था तथा भारतीय संस्कृति और वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण काम किया। वे वैदिक संस्कृति और भारतीय ज्ञान परम्परा के प्रबल समर्थक रहे। उन्होंने वेदों के अध्ययन और उनके सरल हिन्दी भाष्य के माध्यम से सामान्य लोगों तक भी वैदिक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास किया। सातवलेकर ने पुरुषार्थ नामक पत्रिका का भी लंबे समय तक संपादन किया। वे स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े रहे और स्वदेशी तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार में लगे रहे। चित्रकला के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कृतियां बनाई और भारतीय विषयों को अपनी कला का आधार बनाया था। श्रोताओं, इसी कड़ी में हम याद कर रहे हैं कुंवर नारायण को, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और चिंतक थे। वे हिंदी की आधुनिक कविता के प्रमुख रचनाकारों में गिने जाते हैं और नई कविता आंदोलन से जुड़े रहे। उनकी रचनाओं में इतिहास, मिथक, दर्शन, मानवीय संवेदना और समकालीन जीवन के सवालों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों शामिल हैं। वर्ष 2005 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी और साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई सम्मान मिले थे। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य में उनके गंभीर, चिंतनशील और मानवीय दृष्टिकोण के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। श्रोताओं, आज जन्मदिन है कल्पना कार्तिक का। वह हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। शिमला में पढ़ी लिखी और पढ़ाई के दौरान ही मिस शिमला चुनी गई थी। उन्होंने अभिनेता चेतन आनंद के साथ में फिल्मबाजी के जरिए 1951 में हिंदी फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। फिल्म में उन्होंने डॉक्टर की भूमिका निभाई और देव आनंद साहब के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने आंधियां, हम सफर, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, 9211 जैसी फिल्मों में देव साहब के साथ काम किया।

श्रोताओ, आज जन्मदिन है लकी अली का। लकी अली ने गायन के साथ साथ संगीत रचना और अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और 1990 के दशक में एल्बम सुनो ने उन्हें देशभर में लोकप्रिय पहचान दिलाई और ओ सनम जैसे गीतों ने एक अलग पहचान कायम की।

0: सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद शहजाद से खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 20वें रोजगार मेले में नौ मुकर्रा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबो हवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैन-अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत और कनाडा ने इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जाम इक्तसादी शराकतदारी माहदे पर तेजी से अमल दरामद के तहत अपने अज़्म को दोहराया है। आरबीआई ने कहा है कि भारत की सॉफ्टवेयर खिदमात की बरामदात में साल ब साल की बुनियाद पर 8.2% का इजाफा हुआ है। इस तरह यह 2025-26 में 221 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत की हो गई। और आज से जापान में 20वें एशियन गेम्स 2026 का आगाज होगा। अब वो खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी 20वें रोजगार मेले के मौके पर आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए तकर्रुरशुदा नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर इन नौजवानों से खिताब भी करेंगे। मुल्क भर में 45 मकामात पर 20वें रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। नए मुकर्रर उम्मीदवारों को वजारत खजाना, रेलवेज, उम्र दाखिला, सेहत और खानदानी बहबूद और वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ वजारतों और हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया जाएगा। 20वें रोजगार मेले के साथ ही मजमूई तौर पर तकरीबन 12,75,000 नौजवान तकर्रुनामे हासिल करेंगे। रोजगार मेला नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और मुल्क की तरक्की के सफर में उनकी शराकतदारी को बढ़ाने को यकीनी बनाने के हुकूमत के मुसलसल अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबो हवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैन-अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहरीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के जजेस एकजा होंगे। मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज और सीनियर सरकारी अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासती अदलिया से मुतालिक एकेडमीज, कानूनी खिदमात की रियासती अथॉरिटीज, माहरीन की रियासती अप्रेजल कमेटी, माहियात के असरात का जायजा लेने वाली रियासती अथॉरिटीज और दलदली जमीन से मुतालिक रियासती अथॉरिटीज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। इसमें 17 मुल्कों के मुमताज जजेस और अलिया के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से अलिया से मुतालिक नजरियात के इजहार, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर पर तरीकों और इदाराजाती तजुर्बात के लिए एक प्लेटफार्म होगा। शुरका अहम माहौलियाती और आबोहवा की तब्दीली के मामलों पर बातचीत करेंगे। इनमें पॉलिसी साजी, अमल दरामद और पॉलिसी लागू करना शामिल है। गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में 2026 के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनक्किद की गई। वजारत दाखिला के नुमाइंदों ने लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल की सदारत में कमेटी को बिल की दफात के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए कमेटी के चेयरमैन संजय जायसवाल ने कहा कि मीटिंग दोस्ताना माहौल में हुई और अरकान ने बहुत से सवाल किए। कमेटी में स्पीकर की तरफ से नामजद लोकसभा के 21 अरकान और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल हैं। 12 अगस्त को पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के गैर मुल्की अतियात के जाब्तों में 2026 की तरमीमी बिल पर मजीद गौर खोज के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सामने पेश करने से इत्तफाक किया था। बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मजीद शफाफ और जवाबदेही पर मबनी बनाने के लिए 2010 के इस बिल में तरमीम करना है।

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्न हसल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। जी अब सुनिए एक ड्रामा, उनवान है मोहब्बत के गुलाम।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है नॉर्वेन अफसाना निगार कनूत हामसुन की कहानी का उर्दू रेडियाई रूप, मोहब्बत के गुलाम। कनूत हामसन का शुमार नॉर्वियन अदब के अहम तरीन मुसन्निफों में होता है। बचपन में उन्होंने गुर्बत और भूख को करीब से देखा। उनकी तहरीरों में तमाम उम्र इसी नातमाम जद्दोजहद की बाजगश्त सुनाई देती है। 20वीं सदी के अदब को उनकी फिक्र और तहरीरों ने मुतासिर किया है, खास तौर से ये तसव्वुर कि एक लिखने वाले को अपने लहू की सरगोशियों पर ध्यान देना चाहिए और अपने अंदरून से हम कलाम रहना चाहिए। 1920 में उन्हें नोबल इनाम बराए अदब से सरफराज किया गया। आज की कहानी मोहब्बत के गुलाम लहू की सरगोशियों की ही बाजगश्त कही जा सकती है। लीजिए सुनिए, तरतीबकार हैं दानिश इकबाल।

0: Hallo? Hallo, Gwendolyn? इधर
1: हाँ मारिया, मैं लेट तो नहीं हुई मारिया?
0: नहीं, तुम तो वक्त पर आई हो गोइंडोलिन। मैं तुमसे मुलाकात की उम्मीद में वक्त से पहले आ गई थी।
1: जानती हूँ मारिया, तुम हर काम वक्त से पहले करने की ही आदि हो।
0: मैं वक्त से पहले दुनिया में आ गई, वक्त से पहले घर छोड़ दिया, वक्त से पहले पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, रोजी रोटी कमाने की कोशिश की
1: और वक्त से पहले मोहब्बत कर ली।
0: और शायद वक्त से पहले दुनिया भी छोड़ जाऊंगी।
1: ओह नो, इतनी उदास बातें मत करो मारिया। वैसे एक बात कहूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो हमेशा की तरह से।
0: मुझे मालूम है गोइंडोलिन, ये बातें तुम मुझे खुश करने के लिए कहती हो।
1: अच्छा याद करो, जब हम लोग समुद्र किनारे के इस मैक्स मिलान कैफे में काम करते थे तो सारे लोग तुम्हारे हाथ से ही कॉफी पीना चाहते थे। मारिया चलो, हम लोग उसी कैफे में चलकर कॉफी पीते हैं, ये देखने के लिए कि क्या अभी भी मैक्स मिलान कैफे में मारिया जितनी खूबसूरत कोई वेट्रेस है या नहीं।
0: पैदल चलें?
1: हाँ चलो, और चलकर ये भी देखते हैं कि क्या मैक्स मिलान कैफे में अभी भी व्लॉडी मेयर स्टाइक्स जैसा हैंडसम कोई लड़का आता है।
0: और क्या अभी भी मैक्स मिलान कैफे के सामने के चबूतरे पर कोई फकीर औरत आज भी पैसे लेने से पहले और लेने के बाद इंटरव्यू लेती है?
1: वो सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू लेती थी। हाँ।
0: माय गॉड, चेरीज के फूलों में घिरा हुआ वहां अपना मैक्स मिलान कैफे कितना दिलकश, कितना प्यारा, कितना हसीन लग रहा है।
1: सच।
0: तुम्हारी वजह से ही पहुंची थी। याद है कोई डोलिन, यहाँ वेट्रेस की नौकरी तुमने ही दिलवाई थी मुझे।
1: ओ मारिया, मालूम है वो वहाँ बाहर की मेजों पर बैठे गेस्ट क्या कह रहे हैं?
0: क्या
1: वो कह रहे हैं कि हे गोइंडोलिन, वो जो तुम्हारी हॉट वाली फ्रेंड कभी बाहर की टेबल्स पर कॉफी लेकर क्यों नहीं आती?
0: ये सब के सब रोज बिला नागा यहाँ आते हैं, लेकिन हमेशा ये लोग बाहर की मेजों पर ही बैठते हैं।
1: अरे मैंने उनसे कहा, मारिया को बाहर निकलना ज्यादा पसंद।

0: नहीं है, उसके हाथ से कॉफी पीनी है तो अंदर की मेज़ पर बैठो।
1: क्विंटोलिन, वो जो नीले कपड़ों और नीली आंखों वाला लड़का है, क्या वो भी मुझे कुछ ऐसा वैसा कहता है?
0: ऐसा वैसा क्या मतलब है तुम्हारा?
1: क्या वो भी कुछ कहता है?
0: क्या कहता है? ए, क्या जानना चाहती हो मारिया? ना ना ना ना, पहले बताओ तुम्हारा सवाल क्या है?
1: वो जो कद का लंबा और पतला लड़का है, वो जिसके बाल नरम और काले हैं, वो
0: कौन सा?
1: वो जिसके ऊपर वाले होंठ पर लगता है कि मुझे कल परसों ही उभरनी शुरू हुई है।
0: अच्छा जी, वो हैंडसम वाला।
1: क्या वो भी मुझे वही कहता है जो तुम कहती हो कि वो कहते हैं?
0: क्या, पहले बोलो तो।
1: मैं अपने मुंह से वो लफ्ज नहीं बोल सकती।
0: लो, कर लो बात। और अगर मैं तुम्हारी जितनी हॉट होती ना, तो धड़ल्ले से लोगों से अपना तारुफ कराती। मैं ऐसे बोलती, हाय, मेरा नाम है मारिया हॉट हॉटी। वो तुम्हें अच्छा लगता है?
1: वो तो पता नहीं, लेकिन वो मुझे अपनी ख्वाब देखती आंखों से देखता है, तो मुझे उसका देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: मुझे याद आया, ये तो उस सर्कस वाली जलपरी के साथ आता है।
1: हा?
0: हाँ, वो पटाखा लड़की जो कभी जर्द कभी पीले कपड़े पहनती है। और हाँ, ये तो किसी भी टेबल पर बैठ जाता है, इसकी कोई फेवरेट टेबल नहीं है।
1: काश उसकी कोई फेवरेट गर्लफ्रेंड भी ना हो।

0: हे मारिया।
1: हाँ बोलो।
0: एक हफ्ते बाद आज वो आया है।
1: कौन?
0: अरे वो ही नीली आंखों और नीले कपड़ों वाला, जिसे तुम्हारी आंखें पूरे हफ्ते ढूंढती रही हैं।
1: कहाँ है?
0: पीछे वाले दरवाजे के पास, जहाँ सतून है उस सर्कस वाली लड़की के साथ है।
1: वो जिसने लंबे दस्ताने कोहनियों तक चढ़ाए हैं?
0: जाओ देखकर आओ पास से। वैसे उस लड़की की काली आंखें काफी खूबसूरत हैं।
1: देखकर आती हूँ।
0: देखाई क्या हुआ?
1: मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी और सुना कि वो आपस में क्या बातें कर रहे थे। वो उसे किसी बात पर मलामत कर रही थी।
0: अच्छा।
1: कह रही थी कि वो उससे थक चुकी है और वो कोई दूसरी क्यों नहीं ढूंढ लेता। मैंने अपने दिल में कहा, ढूंढना क्या है, मैं हूँ ना।
0: क्या हुआ जाने मन, इतनी लजाई शर्माई क्यों चली आ रही हो?
1: मालूम है क्या हुआ? आज वो नीली आंखों वाला अपने दो दोस्तों के साथ आया और मेरी एक मेज पर बैठ गया।
2: वाह।
1: मुझे पांच मेजें देखनी है आज, सो मैंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया, जैसे कि मैंने देखा ही ना हो। फिर मैं चली आई।
0: वाह, क्या ये भी कोई अचीवमेंट है?
3: वेट्रेस।
0: मैं ये मारिया, वो तुम्ही को बुला रहा है।
1: अच्छा। अजी।
3: हेलो।
1: हेलो, तुम कल क्यों नहीं आए थे?
3: अब मैं लोगों से अभी यही पूछ रहा था कि क्या कभी इतनी प्यारी और नाजुक वेट्रेस देखी है।
1: बियर या कॉफी?
3: बियर
1: अभी लाए।
0: पता है मारिया, आज नीली आंखों वाले का सर्कस वाले से जरूर कुछ झगड़ा डंटा हो गया है।
1: सच? ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली शायद।
0: वो वहाँ खिड़की के पास अकेला बैठा है और सर्कस वाली अपने बाउंसर्स के साथ दूसरे दरवाजे के पास है।
1: अच्छा, मैं जाऊँ?
0: ले, और क्यों बता रही हूँ।
1: थैंक यू।

0: थी या फिर जो कहो।
1: ये कार्ड लो और उसे उसको दो।
0: उसको वो पीले कपड़ों वाली।
1: हाँ, आज उसके कपड़े जर्द हैं।
0: हाँ, जर्द भी पीले का ही शेड है। ओके,
2: कार्ड दिया है तुझे, क्या नाम है? पढ़ तो ली पागल।
0: पढ़ लिया। नाम है व्लादिमीर स्टाइकस।
1: कार्ड दे दिया?
0: हाँ, मैं वो दे आई।
1: और वहां से कोई जवाब नहीं था
0: ना।
1: ये लो, एक मार्क तुम्हारा है। कोई जवाब ना होना भी एक जवाब ही है। मैं अभी आया, मेरा सामान यही है।
0: तो फिर कॉफी का क्या होगा?
1: बहुत गर्म है अभी।
2: क्या हुआ मारिया, वो कहाँ चला गया?
0: सर्कस वाले के पास।
2: हाँ, मैं देख के आती हूँ क्या चल रहा है दोनों के बीच।
1: अरे, ये क्या हुआ?
0: आप जब उन मैडम से बात करने गए थे तो उनके बाउंसर्स ने अपनी बियर और आपकी कॉफी आपके ओवरकोट की जेबों में डाल दी थी। लाइए, मैं क्लीन कर देती हूँ।
1: शुक्रिया गुलाम।
0: क्या रहा, मुझे रिपोर्ट दो जल्दी से।
2: मारिया, सर्कस वाले से जब कोई जवाब नहीं मिला तो व्लादिमीर खुद उस लड़की की मेज पर गया, लेकिन वो किसी बात पर नाराज थी। उसने अपने बाउंसर से कुछ कहा, मैं दूर से देख रही थी कि वहाँ कुछ नाखुशगवार बातें हुई।
0: हाँ, इधर उसके बाउंसर्स में से दो लोगों ने व्लादिमीर के ओवरकोट में कॉफी, बियर और जो कुछ भी था सब उड़ेल दिया।
2: Oh my God.
0: हाँ, वो शायद उससे गुस्सा दिलाना चाहते थे ताकि मार पीट कर सके, लेकिन वो मुस्कुराता रहा और उनके जाल में नहीं फंसा। मैंने उसके कोट को खुश करने में मदद की तो उसने मुझसे मालूम है क्या कहा?
2: ये जब तक नहीं बताओगी कैसे मालूम होगा?
0: उसने कहा, तुम्हारा शुक्रिया गुलाम।
2: गुलाम? अजीब बात है, उसने तुम्हें गुलाम क्यों कहा?
0: फिर मैंने जब उसे कोट पहनने में मदद की तो मेरा जी चाहा मैं उससे लिपट कर उसे खूब तसल्ली दूं। किसी तरह मैंने अपने आप को रोका, लेकिन फिर सबकी नजरें बचाकर उसकी कमर को थपथपाया।
2: उस पर फिर उसने क्या किया?
0: उसे कुछ पता ही नहीं चला, वो तो बस अपने ख्यालों में गुम था। उसका एक दोस्त आ गया और उसने मजीद बियर लाने को कहा, तो मैंने व्लादिमीर टाइकस का मग भी उठाना चाहा, पर उसने कहा नहीं और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर मुझे रोका। ओ मेरे खुदा, मेरा दिल चाहा दुनिया रुक जाए और उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा रहे। पता नहीं कैसे मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ से निकाला और फिर वॉशरूम में जाकर बार बार अपने दाएं हाथ को चूमा और कई बार आंखों से लगाया।
2: मारिया, तुम पागल हो गई हो क्या, या फिर तुम्हें इश्क हो गया है?
0: ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना मैं पागल हुई हूँ और ना आशिक, लेकिन मेरे हाथ से उसकी खुशबू नहीं जा रही है।
2: अरे, साबुन से धो लो जाकर, चली जाएगी खुशबू।
0: बिल्कुल नहीं, अब तो ये हाथ महीनों नहीं धुलने का।
2: ओ

0: मारिया जाओ जाओ ना, आज वो बाहर की टेबल पर बैठा है और आज तो ढेरों फूल लेकर आया है।
1: कौन सा मेरे लिए लाया है? सर्कस वाले के लिए होंगे।
0: लेकिन वो तो आज आई नहीं है। सामने मोड़ पर जो गुलफरोश लड़की खड़ी होती है ना, शायद फ्लाडी मेयर्स ने उस लड़की की टोकरी में रखे कमोबेश सभी लाल और सफेद फूल खरीद लिए हैं।
1: कोई दोस्त तो साथ नहीं है?
0: नहीं नहीं, कोई नहीं है साथ।
1: फिर तो जाती हूँ। हेलो, तुम बार बार अपनी घड़ी को देख रहे हो, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो?
2: नहीं,

0: मैं किसी की तवक्को नहीं कर रहा, मुझे किसका मुंतजर होना चाहिए?
1: मुझे लगा शायद तुम्हें किसी का इंतजार है।
0: तुम इधर आओ, ये लो, ये फूल तुम्हारे लिए है।
1: हाँ, मेरे लिए? व्लादिमीर टाइकस, थैंक यू इन फूलों के लिए।
0: असल में ये फूल मैंने किसी और के लिए खरीदे थे।
1: चलो कुछ भी हो, मान लिया तुमने ये फूल किसी और के लिए ही खरीदे हो, लेकिन मिले तो मुझे ही ना। शब खैर व्लादिमीर।
0: शब खैर।
1: हेलो व्लादिमीर।
0: हेलो।
1: हेलो, आज सुबह जब बारिश शुरू हुई ना, तो मैंने सोचा मैं अपना ब्लैक या ग्रीन लिबास पहनूं। फिर मैंने सोचा ग्रीन अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल नया है और मैं यही पहनूंगी। जब मैं ट्रैम से स्टॉप पर पहुंची, वहां एक औरत बारिश में खड़ी ट्रैम का इंतजार कर रही थी। उसके पास छतरी नहीं थी, तो मैंने उसे अपनी छतरी के नीचे आ जाने को कहा, पर वो नहीं आई। उसने कहा तुम्हारा शुक्रिया। तो मालूम है मैंने क्या किया?
0: जब तक नहीं बताओगी कैसे मालूम होगा?
1: मैंने भी अपनी छतरी बंद कर ली और ट्रैम का इंतजार करने लगी। मैंने अपने दिल से कहा अब ये औरत अकेली भीग नहीं रही है। बाय द वे, कल के फूलों के लिए बेहद शुक्रिया।
0: कौन से फूल? अब मुझसे उन फूलों की बात मत करो।
1: मुझे किसी ने पहली मर्तबा फूल दिए, इसलिए शुक्रिया जरूरी है।
0: वो तुम नहीं, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ गुलाम।
1: आई एम सो सॉरी।
0: रिलैक्स गुलाम, बर्तन तुम्हारे मैनेजर से गिरे हैं, तुमसे नहीं गिरे गुलाम।
2: तो मैंने मान लिया कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मुझे ये बताओ कि वो किसी और वेट्रेस के टेबल पर क्यों नहीं बैठता? अभी भी उसकी नजरें तुमको ही ढूंढ रही हैं। वो देखो इशारा भी कर रहा है।
1: अच्छा, जाती हूँ। हाय व्लादिमीर।
0: हाय, क्या तुम्हारे पास बहुत से पैसे हैं गुलाम?
1: नहीं, मुझे अफसोस है, मैं तो एक गरीब लड़की हूँ।
0: मुझे बस कल सुबह तक कुछ पैसों की जरूरत है।
1: व्लादिमीर, मेरी कुल बचत मेरे घर पर एक जार में रखी है, पूरे 130 मार्क।
0: घर पर? यहाँ नहीं?
1: नहीं, बस तुम ना 15 मिनट तक इंतजार करो, जब हम कैफे बंद करें मेरे साथ चलना, फिर मैं तुम्हें दे दूंगी।
0: ठीक है गुलाम।
2: ओ मारिया, तुम पागल हो, क्यों दिए तुमने 100 मार्क उसे?
1: 100 मार्क नहीं, मैंने उसे 110 मार्क दिए। उसने गिने, 10 निकालकर मुझे दिए और कहा ये 10 मार्क तुम्हारी टिप। फिर वो मेरे दिए पैसे लेकर गया। सामने गली की मोड़ पर वो जो फकीर बुढ़िया बैठती है ना, वो वहां गया और एक एक करके सारे मार्क उसे दे दिए।
2: माय गॉड, क्या क्या कह रही हो तुम, एक एक करके भीख में दे दिए? और अगर उसे पैसे बस एक दिन के लिए चाहिए थे तो क्या वापस किए?
1: आज आकर उसने सबसे पहले कहा, सॉरी गुलाम, मुझे अफसोस है कि वो पैसे मैं वापस अदा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। उसने बेतकल्लुफी से इतराफ किया कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं।
2: मैं उससे पूछती हूँ। हाँ, मैं पूछूंगी उससे। एक्सक्यूज मी
0: जी,
2: तुम मारिया को गुलाम क्यों कहते हो? और जितनी ये गुलाम है तुम उससे कहीं ज्यादा हो।
0: तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं गोइंडोलिन। अब मैं जाता हूँ और बस ये कहने के लिए जाता हूँ कि मैं अब कभी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। हाँ,
1: गोइंडोलिन, उसने कह दिया
2: क्या
1: कि वो
3: अब कभी उससे नहीं मिलेगा।

0: माई गॉड गोइंग टू लेन, मैं कितनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
1: ये बात है तो तुम जाओ, तुम्हारी ड्यूटी मैं संभाल लूंगी और तुम
2: मुझे संभालो।
0: थैंक यू गोइंग टू लेन, बाय।

0: गुलाम, वो 10 मार्क जो मैंने तुम्हें कल दिए थे उनमें से 5 मुझे दे दो।
1: तुम पूरे 10 ले लो, ये लो।
0: थैंक यू, तुमने 10 दिए मैंने ले लिए, अब ये 5 मेरी तरफ से टिप।
1: मुझे नहीं चाहिए।
0: देखो तुम्हें लेने होंगे।
1: नहीं।
0: अरे रखो।
1: मैं आज बहुत खुश हूँ, काश मैं तुम्हें ऊपर अपने कमरे में आने के लिए कहने की हिम्मत कर सकती, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक छोटा सा कमरा है।
0: अरे नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊंगा, अब शपथ है।
2: ए भाई, ए 100 मार्क वाले भाई, कुछ देकर जाओ ना। कमाल है, आज कुछ दिए बगैर ही चला गया।
1: ये लो, उस आदमी की तरफ से है जो अभी अभी यहाँ से गुजरा है, जिसकी आंखें नीली हैं और जैकेट भी नीला है।
2: क्या तुम उसकी बीवी हो?
1: नहीं, मैं तो उसकी गुलाम हूँ।
0: कुछ मार्क होंगे तुम्हारे पास गुलाम?
1: मैं डेस्क मैनेजर से मांगकर अभी लाती हूँ।
2: मारिया, तुम्हें पहले भी कहा गया था कि स्टाफ को गेस्ट से दूरी रखनी होती है। तुम्हारी वजह से कैफे का नाम और इज्जत खराब हो रही है। तुम यहाँ पर अब और काम नहीं कर सकती।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, प्लीज, ये नौकरी मेरे लिए सब कुछ है। मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, क्या खाऊंगी? ऐसा ना करिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए।
2: ये लो तुम्हारा हिसाब मारिया, और कल से आने की जरूरत नहीं है।
0: इतने पैसों से तो मैं 1 हफ्ते गुजारा कर सकता हूँ। अब मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे गुलाम। मैं कहीं तुम्हारा गुलाम ना हो जाऊं। मुझे तुमसे मोहब्बत सी होती जा रही है गुलाम, लेकिन मुझे जाना होगा।
3: मारिया, तुमने ये क्या कर दिया?
1: ये 1 हफ्ते की बात है, फिर तो वो मेरे साथ होगा।
3: ओ, तुम पागल हो बारिया। मेरा दिल कहता है वो तुमसे पैसे लेकर उस सर्कस वाली को ढूंढने गया है।
1: नहीं, 1 हफ्ते में व्लादिमीर वापस लौट आएगा और मेरे साथ होगा हमेशा के लिए।
3: उसके बाद ऐसा क्या हुआ मारिया, जिसने तुमको अंदर से खत्म कर दिया?
1: गोइंग टू लेन, मैं 1 हफ्ते अपने कमरे से नहीं निकली। मेरी आंखें बस खिड़की से सड़क देखती रहती थी। मैं सरापा इंतजार थी। फिर मुझे उसका एक खत मिला। उसने बहुत टूटे दिल से लिखा था कि वो सर्कस वाली लड़की के ताकुब में जा रहा है। उसने लिखा था कि वो बड़ी तंग दस्ती में मुबतला है और वो मेरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा। खत के आखिर में उसने लिखा था, गुलाम, मैं उस सर्कस वाली का गुलाम हूं। मैं हर वक्त उदास रहती थी। सारा दिन मैं दूसरे कैफों और होटलों में काम के लिए दरखास्तें देती। मैंने कई प्राइवेट घरों के दरवाजों की घंटियां भी बजाई और अपनी खिदमात पेश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ।

0: सब कुछ बेकार और फिजूल रहा। शाम को मैं दिन के अखबारात आधी कीमत पर खरीदती और घर जाकर इश्तिहारात के कॉलम पढ़ती। गोइंडोलिन, मेरा ख्याल था कि शायद मैं कोई ऐसा काम तलाश कर लूंगी जो व्लादिमीर और मुझे यानी हम दोनों को बचा सके, पर तभी मैंने व्लादिमीर की खबर पढ़ी। मैं पागलों की तरह सीधी घर से बाहर निकल गई, गलियों में चक्कर लगाती रही। हो सकता है मैं कहीं यहां वहां सो भी गई होंगी, लेकिन या कहीं ठहर सी गई होंगी कि मुझ में चलने की सकत नहीं रही होगी। मुझे तो अब कुछ याद भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने फर्श को अपनी हथेलियों से पीटा। मेरे सर की हालत यूं थी कि जैसे उसमें कोई सुराख हो गया।
1: सब करो।
0: बाहर गली के नुक्कड़ पर लौटते हुए मुझे याद है मैंने बूढ़ी भिखारन को एक पेनी का सिक्का दिया और कहा, ये उस नीली आंखों वाले की तरफ से है। तुम्हें याद है ना वो 100 मार्क देने वाला लड़का?
1: शायद तुम उसकी मंगेतर हो।
0: नहीं, मैं उसकी बेवा हूं। व्लादिमीर स्टाइकस नाम था उसका। व्लादिमीर स्टाइकस नाम था उसका।

मोहब्बत के गुलाम। अभी आपने नॉर्वियन मुसन्निफ कनू थॉमसन की कहानी का उर्दू रेडियाई रूप सुना, जिसे तरतीब दिया था दानिश इकबाल ने। हिस्सा लेने वाले फनकार थे निरुपमा वर्मा, राहुल दक्ष, मुक्ति सैनी और शारदा गुप्ता। हिदायत सरफराज अहमद, मुआविन शादाब अली खान।

अभी आप सुन रहे थे ड्रामा मोहब्बत के ओलाम। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर वक्त हो गया है प्रोग्राम मेरी पसंद का।

गिटारिस्ट की आवाज में ये नगमा था आर पार फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है लाजवंती।

किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा था चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी को सुनिए, फिल्म है बाबर।

मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में आजाद फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी को सुनिए, फिल्म है एक सपेरा एक लुटेरा।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। लीजिए

0: ओहो, बारिश शुरू हो गई। अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है और हॉस्टल भी दूर है। यहाँ आसपास कोई बारिश से बचने के लिए जगह भी तो नहीं है। अरे हाँ, वो एक दरख्त नजर आ रहा है, उसी की पनाह में बारिश से बचा जा सकता है।
1: इतने अंधेरे और बारिश में यहाँ कौन आकर खड़ा हो गया? शायद कोई लड़की है, अंधेरे में ठीक से दिखाई भी तो नहीं दे रहा।
0: यहाँ तो कोई खड़ा है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, और कोई जगह भी तो नहीं है आसपास।
1: ओह, कितनी खूबसूरत है बिजली की चमक में उसका चेहरा, कैसा साफ नजर आ रहा था। चलो, अकेले बोर हो रहे थे, कभी साथी तो मिला, वो भी इतना हसीन। मगर इससे बातचीत का सिलसिला कैसे शुरू किया जाए? चलो, अच्छा यूं ही सही।

0: अपने आप को क्या तानसेन समझ रखा है?
1: भाई मैं तो कहूंगा बरसात का मौसम साथ हसीन साथी। मेरा तो दिल काबू में नहीं, मैं तो इस मौके इस मौसम को सेलिब्रेट करूंगा। जिसे नहीं सुनना हो जा सकता है।
0: देख रहा है ना, कोई जगह नहीं है बारिश से बचने की, इसलिए ताना दे रहा है। हाँ हाँ चली जाऊंगी, जरा बारिश तो रुक जाए। ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही जो यहाँ से चली जाऊं।

0: ओहो, तुम फिर बैठी हो देवदास की पारोबनी। कविता, तुम्हारी कहानी भी कुछ समझ नहीं आती। उस दिन उस बेचारे पर इतना बिगड़ रही थी और अब बात बात पर तारीफों के पुल बांधती जा रही हो। खूबसूरत था, नौजवान था, गाता अच्छा था और जाने क्या क्या।
1: रेनू, मैं खुद नहीं समझ पा रही, मुझे ना जाने क्या हो गया है। उस दिन से एक पल को भी उसका ख्याल पीछा छोड़ता ही नहीं। उसने कितनी प्यारी, कितनी मासूम शरारत की थी। ना जाने मुझे उस वक्त इतना गुस्सा क्यों आ रहा था।
0: अरे बाबा, अब पछतावे से क्या फायदा। अब तो उसका ख्याल छोड़ देना ही ठीक रहेगा।
1: ऐसी बात नहीं रेनू, बिजली की चमक में देखा उसका खूबसूरत चेहरा, काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर तबस्सुम, वो सब मुझे आज भी याद है। मुझे जहां कहीं भी वो दिखाई देगा, मैं उसे जरूर पहचान लूंगी।
0: मगर उसे ढूंढोगी कहाँ। उस दिन इतना बिगड़ने की बजाय उसका नाम ही पूछ लिया होता तो कम से कम उसकी जोगन बनकर दिन रात गलियों बाजारों में घूमती तो सही। कभी न कभी तो वहां से गुजर होता ही।
1: ठहर जा, मजाक करती है, मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ।
0: हाय हुई माँ, नाराज क्यों होती है, मैं तो मिलन का रास्ता सुझा रही थी।

0: यार मनोज, आज 15 दिन हो गए मगर तेरे पास जब बैठो वही बातें, उसी बरसात की रात का किस्सा है। यार एक बात बता, मैं एक बात पूछता हूँ, जिसका नाम पता ठिकाना कुछ भी मालूम नहीं है उसे याद करने से कुछ फायदा है? हैं? बता तो सही। बे सब भूल जा यार, सब भूल जा। अरे हंस बोल, मैं क्या देवदास बना बोल करता रहता है, हैं?
1: यार सूरज वो बहुत खूबसूरत थी, बिजली की एक चमक में एक बार देखा उसका चेहरा, मेरे आज भी दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, लाख कोशिश करता हूँ मगर भूल ही नहीं पाता।
0: अबे मैं पूछता हूँ, जब ये बात है तो उस रात ऐसी हरकत करने की तुझे जरूरत क्या थी? लगे थे जनाब अपने आप को बड़े गुलूकार साबित करने हैं।
1: यार ठीक ऐसा ही उसने भी कहा था।
0: तो फिर तो भैया तो ध्यान कर अपनी उस परियों की शहजादी का, खाबो के मलिका का, मैं तो चला।
1: अरे यार सुन सूरज, सुनता यार सुन।
0: तो सुनना क्या यार, वही किस्सा वही बात है भाई, मैं तो बस बोर हो गया हूँ 15 दिन से वही बातें सुन सुन करके, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा।

0: नजर।
1: दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, लेकिन ये आग बुझेगी कैसे? दोनों का मिलन कैसे होगा? प्यार के दीवाने एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, पहचानते हैं तो सिर्फ सूरत से। ये तो आपने सुना ही होगा, जहां चाह होती है वहां राह भी निकल आती है। जब इन दोनों प्यार के मारों की चाह एक है तो फिर भला राह क्यों नहीं निकलेगी? हुआ भी कुछ ऐसा ही कि एक दिन राह में चलती हुई कविता के कदम एक जानी पहचानी आवाज सुनकर रुक गए।

0: आप
1: जी हाँ, मैं देखिए देखिए नाराज ना होइएगा, गाना दरअसल इसलिए गा रहा था, देखूं आप वही हैं या मेरा वहम है।
0: मैं वही हूँ, आपने ठीक पहचाना, आप गाइए ना, रुक क्यों।

0: अच्छा गाते हैं।
1: ना बाबा ना, फिर कहोगी बड़ा अपने आप को तानसेन समझ रखा है। चुप हो जाइए, हर बात की हद होती है। याद नहीं साथ की बात, यही सब तो
0: आप बुरा मान गए थे।
1: नहीं, मैं भला बुरा क्यों मानूंगा। सुना है कि प्यार की शुरुआत कुछ इसी तरह की नोकझोंक से होती है। प्रेमियों की पहली मुलाकात भी इसी तरह अचानक हुआ करती है।
0: आप
1: वो है। यही ना। अच्छा मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारा भी हाल कुछ कुछ मेरे जैसा ही था। अपने दिल की बात नहीं बताओगी।
0: जी जी, मैं क्या।
1: अच्छा चलो, गाने से शुरू हुए इस किस्से को गाने से ही आगे बढ़ाया जाए। आज तुम भी ये गाना सुना ही दो। यकीन मानो मैं कुछ नहीं कहूंगा, नाराज भी नहीं होऊंगा।
0: ठीक है।

उस दिन के बाद कविता और मनोज मिलते रहे और एक दूसरे के करीब होते गए। आज वो एक दूसरे का न सिर्फ नाम पता जानते हैं बल्कि हर बीते लम्हे की कहानियां भी। आज मनोज जानता है कि कविता एक यतीम लड़की है जो बचपन से वजीफे के सहारे पढ़ती आई है और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद स्कूल टीचर है और हॉस्टल में रहती है। कविता भी जान गई है कि मनोज का इस दुनिया में अपना कहने को सिर्फ एक बूढ़ी माँ है। बूढ़ी माँ भी अपनी नजर की बची रोशनी के सहारे सिर्फ मनोज के सिर पर सेहरा बंधा देखना चाहती है और बरसों से घर पर छम छम करती बहू लाने के ख्वाब देख रही है। कविता और मनोज दोनों ने शादी करनी तय कर ली है। मां ने अपनी रजामंदी पहले ही दिन जाहिर कर दी थी। दोनों ने कोर्ट में शादी करने का फैसला किया। ठीक भी तो है, हंगामा करके दुनिया को इकट्ठा करने से क्या फायदा। आज वो मुबारक दिन है जब दोनों कोर्ट से शादी की कार्रवाई पूरी करके बाहर निकले हैं। हाथों में हाथ दिए दोनों बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। मनोज का दिल तो खुशी से झूम उठा है। चलिए।

अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी, उनवान था एक झलक। तहरीर मोहतरमा रजनी शर्मा की थी और पेशकश थी सरफराज अहमद की। सदाकार थे फरीदा खान, मोहम्मद आजम शाह, बलजिंदर देव और सरफराज अहमद।

0: मीडियम वेव का तरीका 70 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल एप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद शहजाद से खबरें सुनिए। भारत और कनाडा ने इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जामे इक्तसादी शराकतदारी मुहिदे पर तेजी से अमल दरामद के तई अपने अज़्म को दोहराया है। अमरीका और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अमरीकी फौज की मौजूदगी में इजाफा करने के लिए एक मुहिदे पर इत्तफाक किया है। रूस ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की 21वीं फहरिस्त के जवाब में रूस में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अपनी फहरिस्त में तौसी की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक मस्जिद के नजदीक कल हुए धमाके में 21 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। और आज से जापान में 20वें एशियन गेम्स 2026 का आगाज होगा। अब खबरें तफसील से। तजारत और सनअत के वजीर जनाब पीयूष गोयल ने भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकतदारी मुहिदे CEPA पर तबादले ख्याल के लिए कनाडा के बैन अवी तजारत के वजीर महेंद्र सिद्धू के साथ मीटिंग की। कल नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान फरीकैन ने बातचीत में तेजी लाने और मुहिदे की जल्द अज जल्द तकमील की यकीन दहानी कराई। तवक्को है कि CEPA सामान, खिदमात, सरमायाकारी और इक्तसादी ताउन के दीगर शोबों में तिजारत के नए मौके पैदा करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने इस एतमाद का इजहार किया कि CEPA के जल्द तकमील से दोतरफा तिजारत भारत कनाडा इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा करने में नुमाया पेशरफ्त हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैन-अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस दोरोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेस इब्जा होंगे। मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज और सीनियर सरकारी अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासती अदलिया से मुतालिक एकेडमीज, कानूनी खिदमात की रियासती अथॉरिटीज, माहिरीन की रियासती अप्रेजल कमेटी, माहौलियात के असरात का जायजा लेने वाली रियासती अथॉरिटीज और दलदली जमीन से मुतालिक रियासती अथॉरिटीज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। इसमें 17 मुल्कों के मुमताज जजेस और अदलिया के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से अदलिया से मुतालिक नजरियात के इजहार, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदाराजाती तजुर्बात के लिए एक प्लेटफार्म होगा। शुरका अहम माहौलियाती आबोहवा की तब्दीली के मामलात पर बातचीत करेंगे। इनमें पॉलिसी साजी, अमल दरामद और पॉलिसी लागू करना शामिल है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात हुक्मरानी और इदाराजाती ताउन को मुस्तहकम बनाने के तौर तरीके भी तलाश किए जाएंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड में अमरीकी फौज की मौजूदगी में इजाफे के लिए अमरीका और डेनमार्क ने एक मुहिदे पर इत्तफाक किया है। इससे कुतुब शुमाली जजीरे को अपने कब्जे में लेने की अमरीकी सदर की मुसलसल दबाव की वजह से महीनों से जारी कशीदगी खत्म हो गई है। मुहिदे से ग्रीनलैंड डेनमार्क की खुद मुख्तारी के तहत आ जाएगा, जबकि अमरीका को ट्रंप के मुताबिक वसीतर सिक्योरिटी रोल की जिम्मेदारी भी मिल जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि मुहिदे से ग्रीनलैंड में सलामती और दीगर उमूर पर अमरीका का मुस्तकिल कंट्रोल हो जाएगा। डेनमार्क ने कहा कि मुहिदे पर अमरीका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के दरमियान अगले हफ्ते अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के दौरान दस्तखत होंगे। हालांकि इस मुहिदे को नाफिज होने से कबल डेनमार्क और ग्रीनलैंड में पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है। रूस ने यूरोपीय यूनियन EU के नुमाइंदों के लिए अपने दाखिले पर पाबंदी की फहरिस्त में इजाफा कर दिया है। ये इकदाम यूरोपीय यूनियन की 30 जुलाई को रूस मुखालिफ पाबंदियों की फहरिस्त के जवाब में किया गया है। रूस की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि मास्को ने यूरोपीय इदारों, यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक और ब्रसेल्स की रूस मुखालिफ पॉलिसी की हिमायत करने वाले बहुत से यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों की पाबंदी फहरिस्त में निहाय तौर पर तौसी कर दी गई है। यह इकदाम यूरोपीय यूनियन के गैर कानूनी फैसलों के जवाब में किया गया है और इन पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत ने कहा है कि اس فہرست میں وہ افراد شامل ہیں جو یوکرین کو فوجی امداد فراہم کرنے کے فیصلے کرنے، روس کی علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے، روس مخالف پابندیوں کے نفاذ، تیسرے ممالک کے ساتھ روس کے تعلقات کو نقصان پہنچانے اور روس کی سمندری آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنے میں ملوث ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے

देश और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था पत्थर के सनम फिल्म से। अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले को, फिल्म है एक फूल दो माली।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये नगमा था रखवाला फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है जूली।

0: जूली फिल्म का नगमा आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में सुना। हमारा ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है मौलाना मोहम्मद अली जौहर।
1: वो वतन परस्त जिसने एक गुलाम मुल्क में जीने के बजाय एक आजाद मुल्क में मर जाने को तरजीह दी, उसका नाम मोहम्मद अली जौहर था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शख्सियत एक नहीं बल्कि कई एतबार से एक तारीखी शख्सियत है। वतन परस्त, मुजाहिद आजादी, मुदब्बिर सियासतदान, शायर और सहाफी, गर्ज इंसानी सिफात का कोई उनसर ऐसा नहीं जो उनकी जिंदगी में हमें न मिलता हो। मौलाना मोहम्मद अली बेहद जहीन और बजला सैन होने के साथ साथ शोला बयान मुकर्रर भी थे और उनकी सलाहियतों का इतराफ दोस्त दुश्मन को यकसर था। मौलाना मोहम्मद अली की दास्तान हयात का जायजा लेने से पता चलता है कि उन्होंने अपने किरदार, गुफ्तार और आमाल से दबे तहर के दबे कुचले और बरतानवी साम्राज्य के सताए हुए परेशान हाल बाशिंदों के लिए मसीहाई की कोशिशें की और इसके अमल में न सिर्फ कैदोबानी की मुसीबतें भेजी बल्कि जिंदगी भी कुर्बान कर दी। मोहम्मद अली की पैदाइश 1878 में रियासत रामपुर के एक इल्मी खानवादे में हुई। अभी महज 2 साल ही के थे कि बाप का शफीक साया सर तोड़ गया। उनकी तालीम तरबियत की जिम्मेदारी माँ के शानों पर आ गई, लेकिन वो कोई मामूली खातून न थी कि बेवजी के गम में बच्चों की तालीम तरबियत से गाफिल हो जाए।

0: छोड़ कर सफर किया, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली और वतन वापसी पर आप रियासत रामपुर से वाबस्ता हो गए। मौलाना मोहम्मद अली की अमली अवामी जिंदगी का आगाज सहाफत से हुआ। उन्होंने 1911 में कलकत्ता से कॉमरेड जारी किया और जल्द ही हिंदुस्तानी सियासत पर छा गए। उनके मजामीन बेहद मकबूल हुए और कॉमरेड ने हिंदुस्तानी सहाफत में एक नुमाया और इंफरादी मकाम बना लिया। पहली आलमी जंग के जमाने में मुजाहिदीन आजादी और मगरबी एशिया के मुसलमानों को मगरबी साम्राज्य ने जो नुकसान पहुंचाए, उनके नतीजे में हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक का जन्म हुआ, जिसमें 1857 की नाकामी के बाद मायूस शिकस्त का दिन आजादी के तालिब हिंदुस्तानियों में एक नई रूह फूंक दी। जनूबी अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंसानियत, सियासत और मजहब की जो गैर मामूली खदमात अंजाम दी थी, उससे मौलाना बेहद मुतासर थे और बिना मुलाकात के ही गांधी जी के गर्विदा हो गए थे। मौलाना मोहम्मद अली और महात्मा गांधी की पहली मुलाकात 13 अप्रैल 1915 को हुई, लेकिन दोनों ही रहनुमा एक दूसरे के नजरियात से पहले से मुतासर थे और वो भी गांधी जी की तरह मजहब और सियासत के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करते थे। कर के मामलात के दौर में खद्दर का लिबास बनाया और फिर जिंदगी भर यही पहना। मौलाना एक सच्ची मुसलमान की हैसियत से हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के जबरदस्त हामी थे। उनकी तहरीरों और तकरीरों में जहां एक तरफ अंग्रेज दुश्मनी नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश भी वाज तौर पर मिलती है। गोल्ड लीज कॉन्फ्रेंस के मौके पर उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा था, हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना मसला दरअसल अंग्रेजों की जालिमाना पॉलिसी फूट डालो और हुकूमत करो का नतीजा है। दुनिया जानती है कि तहरीक खिलाफत पर के मवालात और कांग्रेस की जिस जोश खरोश और हिम्मत के साथ मोहम्मद अली ने क्यादत की, उसके सबब हिंदुस्तान की आजादी के मसले को आलमी हैसियत मिली। कांग्रेस जो अब तक तालीम याफ्ता, खुशहाल और आसूदा लोगों की जमात समझी जाती थी, अवामी तहरीक बन गई। 1930 के आते आते शान आजादी का ये परवाना कैदोबंद और कई बीमारियों के सबब जिस्मानी तौर पर शिकस्ता हो चुका था, लेकिन उसके हौसले जवान थे। इंतहा सख्त बीमारी की हालत में भी उन्होंने गोल्ड लीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन का सफर किया और जिन अल्फाज में बरतानवी साम्राज्य को खिताब किया, वह हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में आबेदर से तहरीर किए जाने के लायक है। उन्होंने कहा था, मैं एक गुलाम मुल्क को वापस नहीं जाऊंगा, मैं एक गैर मुल्क में बशर्ते कि वो आजाद हो मरने को तरजीह दूंगा। अगर आप हिंदुस्तान को आजादी नहीं देंगे तो आपको यहां मेरे लिए कब्र का इंतजाम करना होगा। खुदा ने हिंदुस्तान के इस अजीम सपूत के अल्फाज की लाज रख ली और मौलाना मोहम्मद अली का इंतकाल लंदन में ही हो गया और आखिरी आरामगाह के लिए उनको बैतुल मुकद्दस में जगह मिली।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तहरीर जनाब कैसर नसीम की थी और रावी थे SM शफीक। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

नाम फिल्म का नाम अभी आप सुन रहे थे के अलका याग्निक और साथियों का गाया हुआ। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में है। फिल्म का नाम है जिस्म।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: यह आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से आलमी खबरें सुनिए। भारत और कनाडा ने इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जामी इक्तसादी शराकतदारी मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद के तहत अपने अज़्म को दोहराया है। अमरीका और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अमरीकी फौज की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर इत्तफाक किया। रूस ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की 21वीं फेहरिस्त के जवाब में रूस में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक फेहरिस्त में तौसी की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक मस्जिद के नजदीक कल हुए धमाके में 21 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। और आज से जापान में 20वें एशियन गेम्स 2026 का आगाज होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के वजीर जनाब पीयूष गोयल ने भारत कनाडा जामी इक्तसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA पर तबादला ख्याल के लिए कनाडा के बैनुल अक्वामी तिजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू के साथ मीटिंग की। कल नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान फरीकैन ने बातचीत में तेजी लाने और मुआहदे की जल्द अज जल्द तकमील की यकीन दहानी की। तवक्को है कि CEPA सामान, खिदमात, सरमायाकारी और इक्तसादी ताउन के दीगर शोबों में तिजारत के नए मौके पैदा करेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने इस एतमाद का इजहार किया कि CEPA की जल्द तकमील से दोतरफा तिजारत और भारत कनाडा इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई पैदा करने में नया पेशरफ्त हासिल होगी। भारत में स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2026 में कारोबारी माहौल का ताजा तरीन सर्वे कराया था। इसमें 40 से ज्यादा आलमी मार्केट्स के कारोबारी माहौल में भारत का पहला मकाम रहा है। तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि भारत का कारोबारी माहौल इस्तेहकाम, तरक्की और कारोबार को आसान बनाने के लिए बेहतरीन पैमाने मुकर्रर कर रहा है। हालांकि आलमी सतह पर एक तरह का बहरान पाया जाता है। कारोबारी माहौल के 2026 के सर्वे में 21 मार्केट्स का गहराई से जायजा पेश किया गया है, जिससे बैरून मुल्क कारोबार के स्वीडिश कंपनियों के तनाजुर का एक वसी मंजरनामा फराहम होता है। सर्वे का मकसद बुनियादी स्वीडिश बरामदाती मार्केट्स में इक्तसादी कारकर्दगी, खाके और कामकाज के हालात के तकाबुल के लिए एक फ्रेमवर्क को फराहम करना है। इस जायजे में कंपनियों को दरपेश चैलेंजेस भी जाहिर किए गए हैं और उनमें स्वीडिश कंपनियों के लिए मौकों की निशानदेही भी की गई है, जो नई मार्केट्स में दाखिले या मौजूदा मार्केट्स में तोसी में गौर खोज कर रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात का मुस्तकबिल के मौजू पर एक बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेज इकट्ठा होंगे। मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरीज और सीनियर सरकारी अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासती अदलिया से मुतालिक एकेडमीज, कानूनी खिदमात की रियासती अथॉरिटीज, माहिरीन की रियासती अप्रेजल कमेटी, माहौलियात के असरात का जायजा लेने वाली रियासती अथॉरिटीज और दलदली जमीन से मुतालिक रियासती अथॉरिटीज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। इसमें 17 मुल्कों के मुमताज जजेज और अदलिया के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से अदलिया से मुतालिक नजरियात के इजहार, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदाराजाती तजर्बात के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। शरका अहम माहौलियाती और आबोहवा की तब्दीली के मामलात पर बातचीत करेंगे। इनमें पॉलिसी साजी, अमल दरामद और पॉलिसी को लागू करना शामिल है। कॉन्फ्रेंस में माहौलियात, हुक्मरानी और इदाराजाती ताउन को मुस्तहकम बनाने के तौर तरीके भी तलाश किए जाएंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड में अमरीकी फौज की मौजूदगी में इजाफे के लिए अमरीका और डेनमार्क ने एक मुआहदे पर इत्तफाक किया है। इससे कुतुब शुमाली जजीरे को अपने कब्जे में लेने की अमरीकी सदर के मुसलसल दबाव की वजह से महीनों से जारी कशीदगी खत्म हो गई है। मुआहदे से ग्रीनलैंड डेनमार्क की खुद मुख्तारी के तहत आ जाएगा, जबकि अमरीका को ट्रंप के मुताबिक वसी तर सिक्योरिटी रोल की जिम्मेदारी भी मिल जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि मुआहदे से ग्रीनलैंड में सलामती और दीगर उमूर पर अमरीका का मुस्तकिल कंट्रोल हो जाएगा। डेनमार्क ने कहा कि मुआहदे पर अमरीका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के दरमियान अगले हफ्ते अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के दौरान दस्तखत होंगे। हालांकि इस माहदे को नाफिज होने से कबल डेनमार्क और ग्रीनलैंड में पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस ने यूरोपीय यूनियन ईयू के नुमाइंदों के लिए अपनी दाखिले पर पाबंदी की फहरिस्त में इजाफा कर दिया है। यह इकदाम यूरोपीय यूनियन की 30 जुलाई को रूस मुखालिफ पाबंदियों की फहरिस्त के जवाब में किया गया है। रूस की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि मास्को ने यूरोपीय अदारों, यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक और ब्रसल्स की रूस मुखालिफ पॉलिसी की हिमायत करने वाले बहुत से यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों की पाबंदी फहरिस्त में नुमाया तौर पर तौसी कर दी है। यह इकदाम यूरोपीय यूनियन के गैर

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। भारत और कनाडा ने इक्तसादी ताल्लुकात में मजीद गहराई लाने के लिए जामे इक्तसादी शराकतदारी मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद के तहत अपने अज़्म को दोहराया है। अमरीका और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अमरीकी फौज की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर इत्तफाक किया है। रूस ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की 21वीं फहरिस्त के जवाब में रूस में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक फहरिस्त में तौसी की है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक मस्जिद के नजदीक कल हुए धमाके में 21 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। और आज से जापान में 20वें एशियन गेम्स 2026 का आगाज होगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हुआ है 1:14:40, यानी वक्त हो गया है पहली मजलिस के इख्तिताम होने का। तो फिलहाल इस मजलिस से हमें दीजिए इजाजत। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।

दोस्तों, ओपी नैयर की खासियत ये थी कि उनके संगीत में भारतीय धुनों के साथ साथ पश्चिमी वाद्य संगीत और लय का भी खूबसूरत इस्तेमाल दिखाई देता था। उनके संगीत की यही पहचान इस फिल्म में भी सुनाई देती है। तो अब बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी शुरू होती है एक ऐसे अपराध से जो पूरी फिल्म के रहस्य की नींव रखता है। फिल्म में एक हत्या होती है और परिस्थितियां इस तरह सामने आती हैं कि शक की सुई एक महिला की ओर घूम जाती है। मामला अदालत तक पहुंचता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया वही वास्तव में हत्यारा है, या फिर इस अपराध के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो अभी सामने नहीं आया। यही सवाल दर्शकों को फिल्म के साथ जोड़े रखता है। फिल्म के प्रमुख कलाकारों में एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है, गुरुदत्त। गुरुदत्त सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय सिनेमा के अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्मकारों में भी उनका नाम लिया जाता है। उनकी फिल्मों में कहानी कहने का अंदाज, कैमरा, प्रकाश और भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने आप में विशिष्ट थी। 12 o'clock में भी उनका अभिनय कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीदा रहमान की बात करें तो वहीदा रहमान का परिचय और अब बात उस अभिनेत्री की करेंगे जिनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी अभिनय क्षमता ने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी हिंदी सिनेमा की चर्चित जोड़ियों में रही है। दोनों ने कई यादगार फिल्मों में साथ साथ काम किया और उनके अभिनय में भावनाओं की गहराई दर्शकों को हमेशा से अपनी तरफ खींचती रही। 12 o'clock में भी दोनों की मौजूदगी फिल्म के आकर्षण को बढ़ाती है। और फिल्म में संगीत दिया था, जैसा कि मैंने पहले बताया, ओपी नैयर ने। ओपी नैयर का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसा संगीतकार उभरता है जिनकी धुनों में एक अलग तरह की रवानगी रहती है। उनके गीतों में ताल, गति और ऑर्केस्ट्रन की विशेष भूमिका होती है। फिल्म 12 o'clock में गीत कहानी के भावनात्मक पक्ष को भी सामने लाते हैं। इसके गीत इस तरह से लिखे हुए और ढले हुए हैं कि खुद ब खुद फिल्म की कहानी आपके सामने रखते हैं। तो आइए इसी बात पर सुन लेते हैं इस फिल्म का दूसरा गीत।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंफ्रेस चैनल और अपना और अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुनिधि। दोस्तों 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। इस दौर में शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन, मदन मोहन, रोशन, ओपी नैयर और कई अन्य संगीतकार अपनी अलग अलग संगीत शैलियों से हिंदी सिनेमा को मजबूत कर रहे थे। अब बात हमारे दिमाग में ये आती है कि इस फिल्म का नाम 12 o'clock ही क्यों चुना गया। दोस्तों फिल्म का नाम ही अपने आप में एक उत्सुकता पैदा कर देता है, 12 बजे का समय, लेकिन घड़ी में 12 बजना अपने आप में कोई असाधारण घटना नहीं है। फिर इस फिल्म का नाम इस फिल्म की कहानी से क्या संबंध है, यही वह सवाल है जो फिल्म के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो हम बात करते रहेंगे इस फिल्म की 12 o'clock की, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिप में, अरे वाह, अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रात का समय, सन्नाटा, अपराध और एक ऐसा मामला जिसमें सच और भ्रम के बीच अंतर करना आसान नहीं, यही वातावरण फिल्म को एक खास रहस्यपूर्ण रंग देता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, घटनाएं जटिल होती जाती हैं। एक तरफ है अपराध का मामला और दूसरी तरफ है उसे सुलझाने की कोशिश। हर सुराग एक नया सवाल खड़ा करता है। जिस बात को सच समझा जाता है उसके पीछे एक और कहानी निकल आती है और दर्शक लगातार सोचते रहते हैं कि आखिर असली सच है क्या। यही रहस्य 12 o'clock की कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए हम इस फिल्म की बात करते रहेंगे, लेकिन माहौल को थोड़ा रोमांटिक भी बनाते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

क्लॉक से। दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं ipradiodelhi@gmail.com पर भी भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और आप और कौन सी फिल्में इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे 12 o'clock का ये गीत, और दोस्तों यही तो हिंदी फिल्मों की खूबसूरती है। एक ही फिल्म में जहां रहस्य और अपराध का तनाव हो सकता है, वहीं उसी कहानी में प्रेम भावनाएं और संगीत भी अपनी जगह बना लेते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं इस फिल्म का बहुत ही एक सुंदर सा गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में।

दोस्तों कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों से ही अभिनय करते हैं और दर्शक उनके साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि बस उन्हें वही जोड़ी हर पर्दे पर चाहिए, हर फिल्म में चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी की। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी को हिंदी सिनेमा में विशेष स्थान मिला। इन दोनों की फिल्मों में भावनात्मक गहराई दिखाई देती है। गुरुदत्त की फिल्मों की दृश्य भाषा और वहीदा रहमान की सहज अभिनय शैली का मेल दर्शकों को हमेशा से प्रभावित करता रहा है। 12 o'clock में भी इस जोड़ी के साथ जुड़ी महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। इस फिल्म में और भी अन्य कलाकार हैं, लेकिन आइए अब हम सुनते हैं आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म का एक और गीत।

0: रतियां बिताना मुश्किल हो गया, रतियां बिताना मुश्किल।
1: दोस्तों अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ती है, जांच आगे बढ़ती है, एक एक करके नए तथ्य सामने आते हैं, लेकिन हर नए तथ्य के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। जिस व्यक्ति पर शक किया जा रहा है उसके पक्ष में भी कुछ बातें सामने आने लगती हैं और अपराध

की वास्तविकता को समझना और भी कठिन हो जाता है। यहीं से फिल्म दर्शकों को अपने अंतिम रहस्य की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की फिल्म 12 o'clock की। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर जाने के लिए, लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ चलते हैं इस फिल्म के एक और बेहद खूबसूरत गीत के साथ, जो कि मोहम्मद रफी की आवाज में है। आइए सुन लेते हैं।

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं हबीब रहमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादाना तिजारती मुआहदे देश के नौजवानों के लिए नए इम्कान पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वें रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकरारनामे तकसीम किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीका हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के नसीब से भी कम है। उन्होंने वादा किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी। भारत ने अद्वियात और फोरेंसिक सप्लाईज समेत नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है। अक़वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाह गुजीनों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। नौजवान ने भी पाकिस्तान के तिब्बी इदारों से अफगान तलबा को निकालने से मुतालिक हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया है। मशहूर गुलकार, कम्पोजर और सकाफती शख्सियत जुबीन गर्ग को

0: की पहली बरसी पर आसाम में याद किया जा रहा है और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में नए मुकर्रर किए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आजादाना तिजारती मुआहिदों से मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के मुआहदे मुल्क के सनअतकारों के लिए नई शराकतदारियों और बाजारों की राह हमवार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार के नए इम्कान तश्कील देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के टैलेंट और उनकी सलाहियतों ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है।
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है।
0: इस मौके पर अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए रोजगार की तश्कील और तकर्रुरी के जायजे से जाहिर है कि सरकारी तकर्रुरियों में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है, साथ ही इस अमल में ज्यादा शफाफियत आई है। उन्होंने कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए एनडीए हुकूमत के 10 साल के दौरान तकरीबन 10,96,000 तकर्रुर किए गए हैं, जबकि यूपीए हुकूमत के दौरान 7,22,000 तकर्रुर हुए थे। 20वां रोजगार मेला मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक़िद किया गया है। नामुकर्रर उम्मीदवार खजाना, रेलवेज, उमूर दाखिला, सेहत व खानदानी बहबूद की वजारतों समेत हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में ओहदे संभालेंगे। 20वें रोजगार मेले में तकरीबन 12,75,000 नौजवानों ने तकर्रुनामे हासिल किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फी कस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निसफ से भी कम है। आज नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक बैन अवी कॉन्फ्रेंस का इफ्तार करते हुए जनाब मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा है कि कार्बन अखराज के लिए अक्सर तरक्की पजीर ममालिक को गैर मुनसफाना तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है। जनाब मोदी ने वाजह किया है कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने पेरिस में मुनाकदा COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने माहौलियात से मुताल्लिक हर शोबे में गैर मामूली पेशरफ्त की है।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद, हयातियाती ईंधन के आलमी इत्तेहाद, शेरों की नस्ल से मुतालिक बैनुल अक़वामी इत्तेहाद और मिशन लाइफ जैसी पहल के जरिए माहौलियाती तहफ्फुज़ के नए पैमाने कायम कर रहा है और बाकी दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा है कि भारत की असल तवज्जो काबिल तजदीद तवानाई पर है जो माहौलियाती तहफ्फुज़ में अहम रोल अदा करती है। तकरीब से खिताब करते हुए भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोरोनावायरस को बचाने का नजरिया मुल्क में माहौलियाती ट्रिब्यूनल्स, इंजबाती मैकेनिज्म और तामीली फ्रेमवर्क के उभरने से पहले मौजूद है। माहौलियाती तहफ्फुज़ से मुतालिक ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जरिए मुनाकिद हो रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान माहौलियाती माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालतों के जजेस इकट्ठा हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दीनी तरक्की की वजारत अगले महीने ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत तकरीबन 34,000 देही नौजवानों को तरबियत फराहम करेगी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु समेत 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तरबियत

0: की बैचेस के आगाज की तैयारियों का जायजा लिया गया। वजारत ने कहा है कि आइंदा साल 31 दिसंबर तक 3,57,000 से ज्यादा देही नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफर जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंथक अज्म से इबारत है, जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जहां तरक्की और समाज को बाइख्तियार बनाने के जरिए यह आजम लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान के खसूसी सीरीज के तहत अग्निपथ स्कीम का जायजा पेश किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: हुकूमत ने नौजवानों को मुल्क की खिदमत का मौका फराहम करने के लिए साल 2022 में अग्निपथ स्कीम का आगाज किया। स्कीम के तहत नौजवानों को, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, मुसल्ला अफवाज में शामिल किया जाता है। अग्निवीर 4 साल तक खिदमत अंजाम देते हैं। इस दौरान उन्हें फौजी तरबियत से लैस किया जाता है और नज्म जब्त और मुख्तलिफ महारतों से रूशनास कराया जाता है। उत्तराखंड की मजबूत फौजी रिवायत रही है, जहां नौजवान मुसल्ला अफवाज में अहम रोल अदा कर रहे हैं। रियासत के नौजवान बड़ी तादाद में अग्निपथ स्कीम के तहत फौज में भर्ती हो रहे हैं। इस साल फरवरी और मार्च के महीने में चंपावत के बनबासा में अग्निवीर भर्तियों में उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। फौज में 4 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद हर बैच के 25% अग्निवीरों को तयशुदा तरीकेकार के जरिए मुसल्ला अफवाज में बाजाबता तौर पर शामिल कर लिया जाता है। देहरादून से संतोष थापलियाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: भारत ने नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है, जिनमें अद्वियात, फोरेंसिक सप्लाईज, खेमे, सफाई सुथराई के किट्स, सोने के लिए बिस्तर और दीगर जरूरी साजो सामान शामिल हैं। अकवाम मुत्तहदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाहगुजीनों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। अकवाम मुत्तहदा ने पाकिस्तानी हुक्काम से अपील की है कि वह मुल्क बदर करने से पहले इस बात का पता लगाएं कि क्या मुल्क बदर किए जाने वाले अफराद को जुल्म जबर, तशद्दुद या दीगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे खतरात का सामना है। आज मायानाज गुलोकार, मौसीकार और सकाफती अहमियत के हामिल जुबीन गर्ग की पहली बरसी के मौके पर उनको याद किया जा रहा है। लाखों लोग जुबीन गर्ग की मौसीकी के दिलदादा हैं। आज रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात और प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। 20वीं एशियन गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब आज जापान के आइची नागोया के पालोमा मिजोहो स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे मुनाकिद होगी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादाना तजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वें रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन इखराज में भारत का फीसद हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निस्फ से भी कम है। उन्होंने वाजह किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2M के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 24,000 से ही नौजवानों को तरबियत देगी। और एशियाई खेल 2026 का 20वां एडिशन आज दोपहर जापान में शुरू होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, this is Akashwani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights, India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deendayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees. Also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer, composer and cultural figure Zubin Garg on his first death anniversary, and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon.

0: three-year musical career, Zubeen Garg recorded over 40,000 songs across nearly 40 languages and dialects, reflecting his remarkable versatility and wide appeal. On to sports. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 will start at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. India time. Double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tejinder Pal Singh Toor will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Asian Games will run from today to 4th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. The Indian contingent will feature 5 individual Olympic medalists, despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Mirabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lavlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling. The India Meteorological Department or IMD has predicted heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahi, Madhya Maharashtra, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Marathwada, sub-Himalayan West Bengal, East Rajasthan, Jharkhand, Goa, Odisha and parts of northeastern India tomorrow. Heavy to very heavy rainfall is also likely to prevail over Andaman and Nicobar Islands today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youth. Distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Highlights, India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over the directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer-composer Zubeen Garg on his death anniversary at 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में हैं। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में 2 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित

0: विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
1: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए निष्क्रिय कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला यह वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
3: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। चार वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और

0: प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
4: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल 8 से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा सेगमेंट एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो कलाकार हैं वो एक जाने माने भारतीय हिंदी फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, अभिनेता और निर्देशक थे। हालांकि वे किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन उनकी एक और पहचान थी कि वे आमिर खान के पिता थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताहिर हुसैन के बारे में। तो श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं की फिल्मों को जो उन्होंने एक निर्माता के रूप में फिल्म को प्रोड्यूस किया, आइए उस फिल्म के गीतों को हम सुनते हैं और करेंगे उनसे, उनके जीवन से कुछ रोचक बातें। फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म कारवां से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल सुरों में।

श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं आज के कलाकार में ताहिर हुसैन के बारे में। उनका जन्म 19 सितंबर 1938 को शाहबाद में मोहम्मद जाफर हुसैन खान, एक स्कूल शिक्षक जो पश्तून मूल के एक जमींदार परिवार से संबंधित रखते थे और आमना के घर हुआ था, जिन्होंने अपनी अरब जड़ों को भारत के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद की, जो कि भतीजी थी और वे 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। ताहिर हुसैन निकहत खान, फरहत खान, आमिर खान और फैजल खान के पिता थे। नासिर हुसैन एक हिट फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, ताहिर हुसैन के बड़े भाई और संरक्षक थे।

आमिर ने अपनी चाचा नासिर हुसैन द्वारा निर्मित और अपने चचेरे भाई मंसूर खान द्वारा निर्देशित कयामत से कयामत तक में अभिनय किया। तासिर हुसैन ने 1990 में अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म तुम मेरे हो में अपने बेटे आमिर को पहली बार निर्देशित किया।

श्रोताओ, ताहिर हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत अभिनय से की और बाद में वे फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतरे। उन्होंने हम है राही प्यार के, कारवा और पैदल यात्रा जैसी कई चर्चित फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने वर्ष 1990 में आई फिल्म तुम मेरे हो का निर्देशन किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें उनके बेटे आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं। जो हमारे पास पहला संदेश है वो है नितेश देवांगन का, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन, जो हमें लेकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो है स्वर्ण सिंह का, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। अमर रामेश कुमार खत्री हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद आमिन, मुजफ्फर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा। और अगला जो संदेश है वो हरजिंदर शिंदा का है, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव नथाना पंजाब से। इनके साथ है जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। धर्मेंद्र छिपा हमें लिखकर भेज रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, और इनके साथ है कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। जो अगला संदेश है वो है वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, ताज मोहम्मद हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से। जो अगला संदेश है छत्तीसगढ़ पलारी से है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, और वो हमें लिखकर भेज रहे हैं कि वे हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्दर्शन कौर जी का अगला संदेश आया है मेरठ से, इनके साथ है कविता गौर, और जो अगला संदेश है तुलसी मस्कीन, और इनके साथ है वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, पंचकुला चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। और अगला संदेश जो है वो है राधेश्याम देवांगन का, छत्तीसगढ़ भवरपुर से, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू देवांगन, संजय ढींगिया हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है नमन ढींगिया, पा ढींगिया, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से।

श्रोताओं, हमारे पास जो अगला संदेश आया है वो आया है स्वर्ण सिंह का, और इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। ये हमें लिखकर भेज रहे गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। अगला संदेश जो है वो है रोजी डिकैस्ट्रो का, इनके साथ है जोन डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से। जो अगला संदेश है धर्मेंद्र छीपा का है, भोपालगढ़ राजस्थान से, और इनके साथ है कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। अगला संदेश है बाबू शिवा का, और इनके साथ हैं प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, और ये हमें लेकर भेजे पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से। सुदर्शन मुखी हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। और जो अगला संदेश है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, जो अगला संदेश है वो गुरमीत सिंह का है और इनके साथ हैं मीता, जो हमें लेकर भेज रही है साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमें संदेश भेज रहे हैं, उदय भानपाल हमें लिखकर भेज रहे हैं और इनके साथ है जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनका अन्य परिवार। जो अगला संदेश है वो है भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक का और ये इन्होंने लिख के इन्होंने भेजा है हमें जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। राजकुमार डूरी हमें संदेश भेज रहे हैं और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव फरांसी जिला हिसार से। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और इसी के साथ ही हमारा आज का ये एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तब तक लिए मुझे यानी आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

समिंग अदरवर्स, ये आकाशवाणी है। सपेर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिंग का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री

डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशो नाले प्रोग्रामों पर। दिन में 3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे चंद फिल्मी नगमे मेरी पसंद के। सपेर 3:30 सुबह लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे हिमाचली लोकगीत। शाम 4:00 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। समय यह था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सपेर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, जबीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादाना तिजारती माहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वें रोजगार मेले के दौरान नौजवानों में 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निसफ से भी कम है। उन्होंने वाजे किया कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 समिट के दौरान किए गए वादों को वक्त से पहले पूरा किया है। मरकजी हुकूमत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DUEM के तहत ज्यादातर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 34,000 देही नौजवानों को तरबियत देगी। भारत ने अद्वियात और फॉरेंसिक सप्लाईज समेत नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है। अकवामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाह गुजीनों को जबरी तौर पर मुल्क बदर करने से मुतालिक खबरदार किया है। माहिरीन ने भी पाकिस्तान के तिब्बी इदारों से अफगान तलबा को निकालने से मुतालिक हुक्म पर तशवीश का इजहार किया है। और मशहूर गुलकार, कंपोजर और सकाफती शख्सियत जुबीन गर्ग को उनकी पहली बरसी पर आसाम में याद किया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे में नए तकरर किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आजादाना तिजारती माहदों से मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के माहदे मुल्क के सनअतकारों के लिए नई शराकतदारियों और बाजारों की राह हमवार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार के नए इम्कान पैदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के नौजवानों की जहानत और उनकी सलाहियतों ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। इस मौके पर अवामी शिकायत और पेंशन के वज़ीर मुमलकत

बीटी फिल्म का ये दुगाना था मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ सोनी कौमी की मौसीकी में, और प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अप्रैल फूल फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ।

वही लोक गीतों के प्रोग्राम में आप सुन रहे थे हिमाचली लोक गीत, फनकार थे देवराम और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्रीडेज पर हमारी नशियात जारी है। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसीकी का आगाज कर रहे हैं हकीकत फिल्म के नगमे से, आवाजें मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और भूपेंद्र की।

धड़कन फिल्म का नगमा अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना, और इसे सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आखिरी खत फिल्म का नगमा, कैफी आजमी का लिखा हुआ, मौसीकी खयाम की।

फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म है अनोखी रात, मौसीकी रोशन की।

फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश शंकर हुसैन फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ। नगमा निगार कमाल अमरोही, मौसीकी खयाम की।

नीता फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, मौसीकी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। और अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में चिराग फिल्म की गजल। मौसीकी तरतीब दी है मदन मोहन ने।

0: दबा दिया है कि इस तरह की पाबंदी कुछ दीगर मीडिया इदारों पर भी लगाई जा सकती है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि ये इदारे उनके इंतजामिया के बारे में ख्यालात पर मबनी तहरीरें और झूठी बातें लिखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के अहदेदारों और उसकी मईशत के अहम सतूनों के खिलाफ सख्त बंदिशों से मुतालिक एक कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के लिए रूस को सजा देना और उस पर दबाव डालना है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादाना तिजारती मुआहदे मुल्क के नौजवानों के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 20वें रोजगार मेले के दौरान नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कार्बन अखराज में भारत का फीकस हिस्सा दुनिया के औसत हिस्से के निसफ से भी कम है। भारत ने नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1,071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फेडरेज पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए की नशरियात के साथ उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र ए तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस तिन दे पंजाबी सेवा। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी ए। सभा दी शुरुआत दे विच आओ सब तों पहला सुनदे हां सराय के प्रोग्राम चोक माहिती।

0: आकाशवाणी दी विदेश प्रसारण सेवा दा सिराई की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते करेंदा और जैसा हाजिर है हमारी राष्ट्रीय धरोहर गुलाबी शहर जयपुर एक वार्ता विच वार्ताकार हैं योगिता छाबड़ा तेहिंदे अलावा असा सुन सुन सिराई की गीत संगीत और सुनते हैं पहले वार्ता गुलाबी शहर जयपुर।
1: नमस्कार राम राम सत श्री अकाल ते आदाब। पिंक सिटी जयपुर शहर भारत दे सब तो वड्डे राज्य राजस्थान दी राजधानी है। राजस्थान दा सब तो वड्डा शहर है। जयपुर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी भी आख दिन। जयपुर को सब तो पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी आख्या है। पिंक सिटी जयपुर बहुत खूबसूरत शहर है। एक अपनी राजसी इमारता ते महला वास्ते बहुत मशहूर है। आओ हुन असा गाल करें दो जयपुर को पिंक सिटी दा नाम किवे मिलिया। अगर तुसा कदे जयपुर गए वे ता तुसा डिठा हो से इत्थां दे बाजार इमारता दुकाना सब गुलाबी रंग दे हैं। हिंदा कारण ए है कि एक बार इंग्लैंड दी महारानी एलिजाबेथ ते युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स 1876 विच जयपुर आवन वाले हन। हुन वेले दे महाराजा सवई राम सिंह जी ने उन्हां दा स्वागत करण कीते पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग नाल रंग दिता है। पूरे शहर दे सड़कां साफ सुथरे करके फुल पत्तियां भी लगाए हन क्योंकि गुलाबी रंग मेहमाना दे स्वागत को दसेंदे। हुन वेले जै भी जयपुर शहर को डिठा ओ भी को गुलाबी नगर आखण लगे। आज भी ए शहर पिंक सिटी जयपुर दे नाम तो मशहूर है। जयपुर शहर को सवई राजा जयसिंह ने वसाया है। हुना दे नाम तो ही हे शहर दा नाम जयपुर पिया है। जयपुर शहर दी ज्यादातर इमारता ते किले राजा जयसिंह दे वेले दे ही बने हुए हैं। सवई राजा जयसिंह ने ही शहर दी स्थापना 1727 विच कीती है। उन्होंने जयपुर

राजे तो 1600 नड़िन्वे तो घेन के 1744 तक राज किता है। प्रजा को अपना परिवार समझण वाले सवे राजा जयसिंह ने ये सोने सोने शहर को इवे बसाया कि इतना दे रावण वालिया को कई शहर दी कई कमी ना थी वे ना पीवन दे पानी दी ना बाग बगीचिया दी ना घूमन दी ना कम कार दी ना कारखाने दी मी दे पानी को भी समेटन ते निकासी दा पूरा काम बहु तरीके नाल करवाया। राजा जयसिंह ने चिरक तक जयपुर ते राज किता। ही शहर दे हाथ दे बने समान गावन बजावन पढ़ाई ते कम कार को हुना ने बहु बधाया है। यूनेस्को ने जुलाई 2019 विच जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी दा दर्जा दिता है। जयपुर पिंक सिटी दी है खासियत ए भी है कि भारत दा सब तो पहला नक्शे नाल बनाया होया शहर है। सवई राजा जय सिंह गणित ते विज्ञान विच बहु रुचि रखेंदे हन। उन्होंने ही शहर दा नक्शा बंगाल दे एक विद्वान विद्याधर चक्रवर्ती दी सलाह घेन के बनवाया है। विद्याधर जी ने खगोल विज्ञान दे किताबा पढ़ के ही शहर को वसावन दी बनावन दी योजना बनवाई है। हुन वेले जड़े इमारता बनाए गए हन हज भी उन्हों को देखण किते देश विदेश तो सैलानी आमदन जिवें कि हवा महल सिटी पैलेस जंतर मंतर आमेर दा किला नारगढ़ दा किला इन्हां सोने सोने इमारतां को देखण करके जयपुर शहर पिंक सिटी आज भी सैलानियां को बहु भंदे। 19वीं शताब्दी विच ही शहर दा विकास बहु तेजी नाल थिया है। महाराजा जयसिंह दे वेले इत्थां दा मुख्य उद्योग संगमरमर ते धातु निर्माण दा है। जयपुर को सुंदरता दे हिसाब नाल भारत दा पेरिस भी आख्या वेंदे। ही शहर दे वास्तु दे बारे विच आख्या वेंदे कि वी शहर को भावे सूत नाल नाप गिनो नापण विच एक वार वरी फर्क कहना निकल से। जयपुर शहर वर्गी धरोहर होना साडे भारत देश किते हे गर्व दी गल है। भारत सरकार को एजी धरोहर दा हुना दी साज सजावट ते रख रखाव दा पूरा ख्याल रखना चाहिए। सवई राजा जयसिंह ने ही शहर को वसावन तो पहले हिंदी सुरक्षा दा भी पूरा सोचया है। मराठिया दे हमले दी चिंता तो सख्त मजबूत दरवाजा नाल किलेबंदी कीती है। बाद विच एक ब्याह दरवाजा बनवाया जिको न्यू गेट आखदे। जयपुर नगर दे चारों पासे परकोटा बनवाया है। पश्चिमी पहाड़ी दे नाहरगढ़ दा किला बनवाया है। पुराने किले जयगढ़ विच हथियार बनावण दा कारखाना बनवाया है जेको देख देख के आज भी विज्ञानी हैरान थेवे ने। जयपुर शहर त्रिये पासे तो अरावली दी पहाड़ियां नाल घिरया होए। जयपुर एक गर्म शहर है। इथा घूमण दा सब तो चंगा वेला अक्टूबर तो मार्च तक है। मार्च तो जुलाई तक इथा बहु गर्मी होंदी है पर हुण वेले इथा दे सारे होटल बहु सस्ते होंदे। जुलाई तो सितंबर तक इथा बारिश थींदी है। जयपुर वंदन किते तुसा बस ट्रेन या हवाई जहाज त्रिये तरीके नाल वन सकदो। इथा दे हवाई अड्डे दा नाम है संगमेर एयरपोर्ट ते रेलवे स्टेशन दा नाम है जयपुर जंक्शन। दिल्ली तो जयपुर दी दूरी 280 किलोमीटर है। जयपुर पिंक सिटी घूमण किते अंदर ही अंदर ई रिक्शे ते ऑटो भी मिल वेंदे जेड़े की ज्यादा महंगे भी कहने पौंदे। जयपुर विच खरीदारी करण दा भी अपना ही मजा है। इथा दे बापू बाजार विच तुसा हर तरह दी खरीदारी कर सकदो। इथा जयपुरी रजाइयां जयपुरी सूट जयपुरी जुतियां जयपुरी साड़ियां जयपुरी चादरा बहु मशहूर हैं। लाख दी चूड़ियां भी त्रिमता को बहु पसंद आंदे। इथा दा हाथ दा बनया होया समान हर तरीके दा मिलदे। जयपुरी पगड़ी भी राजस्थानिया दी शान है। इथा बहु सोनी सोनी जयपुरी पगड़ी मिलदी है। जोहरी बाजार विच गोटा पट्टी दा बहु समान मिलदे। जयपुर पिंक सिटी

0: हाँ बापू।
1: पुत गड्डू आ गई है। पुत अपने घर की हालत तो तेन पता ही है। आरती ने लैरो पार वाले दो किले लिखवा के दिता 5 लाख तीन टके ब्याज थे। सुने करम की तो नहीं पर पुत ब्याज तक खोहों भी खाली कर देंगे।
0: बापू तू सत रख, तेरा यह मुंडा तेरी पिट नहीं लगन दिता।
2: बड़ा चाह सी पुत,

0: सर्दियां पवा रहा इन पुछ लो कुछ है खानू ते दो मिनट रुक जाओ यार जंडियाले आले मुंडे कितने पिछे जा गए
1: जो पीछे रह गया उसे भूल जाओ यू आर लाइव कैन यू कीप वॉकिंग
0: चार घंटे लगातार तुरंत भी असें किसे टिकाने न लगे झाड़ियों के एक कतरे झुंड पहुंच के और रुके तो बोले
1: हे मैन दिन चरण वाला नाउ यू विल स्टे हियर मैं रात 8 बजे आऊंगी और हाँ बी वेरी केयरफुल एंड डोंट मूव अराउंड
0: आसमान साफ सी छेती सूरज चढ़ाया निकी निकी धूप ने हड्डा राहत पहुंचानी शुरू कर दी याद है ना जब तक अपने नहर वाले खेत के काने वाले खंडन के चढ़ते पासे सियाल के निकी धूप च सवेरे सवेरे निवड़े अपने बच्चिया समेत कुंडा चो बाहर आके बैठ जाया करते सी ठीक उस तरह अस झाड़िया के ओटे बैठे सा सब हादसे तेरा देश थी तेरी धरती सी सानू कुछ भी पता नहीं सी कुछ भी पता नहीं सी
2: मरते असली गए होंगे।

12 बजे रात जाके जब वो कुड़ी वापस आई तो कुछ आरस जी महसूस की थी। आज सब ज्यादा नहीं सितोरिया गया, यही कोई 3-4 घंटे। सामने मुझे सड़क तो पहना तो सड़क रोक देता, तो आप अगले बने अगो उन्हें हरी लाइट का सिग्नल भेजा, उन्हें सामने अगले होने इशारा किया। सामने एक ट्रक वाला खड़ा सी, ट्रक वाले ने सामने ट्रक कुछ बैठने का इशारा किया, उन्होंने ट्रक वाले नाल कुछ लेन देन किया, तो पिछों आई एक मर्सिडीज कार बैठ के चली गई।

ना सुने लगा मैं बस पॉइंट से तुम्हें ड्रॉप करूंगा।

फिर पता नहीं कितों मैं अचानक पिंड वाले नामे चटकाई थी याद आई कहीं कहीं अपनी हवेली मुझे लग्या करते सी उन्हें साइकिल पीछे एक टोकरा बनिया होंदा सी उस टोकरे विच उसके बकरी मोरी होंदी सी पर बकरी तो दो तीन मिनट बाद खुटकड़ी जी मार के बै बै दी आवाज कर दिंदी सी मैनू लगा कि मैं भी बकरी हुआ तो मेरे पिंडे ते काले काले बाल उग गए होण ते ए बक्सा नामे चटकाई दे साइकिल दे पिछे बनिया होया टोकरा

0: चल भाई उतर बैठा हूँ। ओ सड़कों पार गुरुद्वारा देख रहे हैं ना, उतर जाके किसे तो हेल्प मांग, साडा काम बस इतो तक ही सी। सवेर का समा सी जिसको मैं अंदाजा लाया कि मैं घट्टो घट 5 घंटे उस बस्ते च गया होगा। तौबा तौबा 5 घंटे। गुरुद्वारे पहुंच के एक पंजाबी बंदे को ताए ने फोन करवाया। 1 घंटे बाद ही ताया मेनु लैन आ गया। मेनू घर छड़ के वो काम ते चला गया। शामी जो घर वापस आया किदा दिला
1: आया
0: तेरा ठीक है?
1: हम तो फर्क आया
0: अद्धे दिन की छुट्टी लगे हाँ। सच कल तेरे डैडी ने फोन करता बदलावर मेरे को ठीक ठाक पहुंच गया। कहीं कर लग रहे हो ने मेनू 4-5 दिन अपने घर रखिया। मेनु खूब खुआया पियाया मेरे ताप का इलाज भी किया। पर ताई का सुभाव कुछ दुखा जहा सी। एक दिन ताया मेनू एक दफ्तर छड आया।

जेल तो रहा हो तो एक हफ्ता बाद मैं अपना नाम बदल के खुलिया बदल के उसे दफ्तरी लाइन च जा खड़ा होया। महीनों तो बाद मैनू 19,000 इंडियन रुपया के बराबर महीने की सहायता मिलनी शुरू हुई। मैंने सोचा चलो किसी टिकाने पर लगे पर कित्थे। दो महीने बाद जो दोबारा उस दफ्तर च पेश होया तगड़िया 5 दिन का कंट्री आउट का नोटिस मेरे हाथों थमा दिता। वकील किया 4 महीने लिए केस उड़ गया। आज फिर मैं उसे दफ्तर च पेश होया अपने दोस्तों के कहते अपन उंगलियों के पोटे तले से साड़ता रहा फिंगर प्रिंट बदल जा लगता थी पोटे चंगी तरह सड़ ना सके। इस बार फड़िया गया उन्होंने मेनू 28 दिन जेल भेज दिता। इतने 28 लगना कहते कि जेल है ए बारे मैं नहीं जानता। बस पंजाबी इतने

orada ona dilanır. Hazır. Bittim.

से सुन रहे थे पंजाबी नाटक जहाज वाली कोठी, निजी लेखक सन बलदेव ढींसा। हम बात दें अगले पड़ाते पेश करते प्रोग्राम पंजाबी गीत सिलसिले के तहत कमल गरेवाल की आवाज से विच एक खूबसूरत गीत।

I'm gonna go get some more.

शिव बटालवी दे बोल ने जिंदगी विच एदां दे लोक भी मिलदे ने, जिंदगी विच एदां दे लोक भी मिलदे ने जो वादे तां नहीं करदे पर निभा बहुत कुछ चाहुंदे ने। अक्सर उही रिश्ते लाजवाब हुंदे ने, अक्सर उही रिश्ते लाजवाब हुंदे ने जो एहसासां नाल नहीं बल्कि एहसासां नाल नहीं बल्कि एहसासां नाल बनदे ने। हरप्रजन मान की आवाज दे विच अगला गीत प्रोग्राम दे अखीरली गीत।

Yeah.

Let's go.

जी दोस्तो, अक्सर ओही रिश्ते लाजवाब हुंदे ने जो एहसाना नाल नहीं बल्कि एहसासा नाल बनदे ने। ते तुहाडा वी साडा रिश्ता इसे तरह ही एहसासा नाल बनिया होया है। शाला इसे तरह ही रिश्ता ए बनिया रहे, मैं यही दुआ करती हां रब दे अगे।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रायोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
2: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
0: हर जोखिम का दावा, घट्टो घट प्रीमियम ते वधेरे भुगतान का वादा। नजदीकी कृषि दफ्तर, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकारिक बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र विच अपनी इच्छा नाल रजिस्ट्रेशन करवा सकते। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तुहाडियां फसलां दा संपूर्ण सुरक्षा कवच।
5: नमस्कार, सत श्री अकाल अते जय हिंद। आकाशवाणी दे उपर मैं जसप्रीत कौर हाजिर हां प्रोग्राम किसान वाणी लेके। इस प्रोग्राम दे विच असी गल करदे हां किसानां दी, उन्हां नूं नवीआं तकनीकां दे बारे तां दसदे ही हां, नाल नाल उन्हां नूं बहुत सारीआं समस्यावां दे हल वी दसदे हां, जिवें कि खेती संदेश उन्हां नूं पढ़ के सुणाउंदे हां, नवीआं आईआं तकनीकां तों जाणू करवाउंदे हां, इही नहीं खेती खबरां वी उन्हां नूं पढ़ के सुणाउंदे हां। ते लओ करदे हां प्रोग्राम दी शुरुआत खेती संदेश दे नाल। सो किसान वीरो अते भैणो, अज दा पहला खेती संदेश है झोने विच फोक कटाउण लई पोटाशियम नाइट्रेट दा पत्तियां उत्ते छिड़का वध झाड़ लई प्रभावशाली तरीका। झोने दी फसल विच बल्लियां निकलण अते दाणे बनण दे समें खुराकी तत्तां दी लोड़ काफी वध जांदी है। इस अहम पड़ा दौरान बल्ली दे विकास, दाणियां दे बनण अते दाणे भरण लई नाइट्रोजन अते पोटाशियम तत्तां दी उचित मात्रा बहुत महत्वपूर्ण हुंदी है। इस समय पोटाशियम नाइट्रेट दा पत्तियां उते छिड़का इन्हां जरूरी खुराकी तत्तां दी पूर्ती लई एक प्रभावशाली अते किफायती तरीका है। पोटाशियम नाइट्रेट एक पानी विच पूरी तरह घुलनशील खाद है, जिस विच 13% नाइट्रोजन अते 45% पोटाशियम हुंदा है। नाइट्रेट रूप वाला नाइट्रोजन पौद्यां नूं तुरंत उपलब्ध हो जांदा है अते दाणे भरन दे समय पत्तियां दी सरगर्मी अते सेहतमंद विकास विच सहायता करदा है। पोटाशियम नूं अक्सर गुणवत्ता वाला खुराकी तत् कहा जाता है। झोने के पौद्या विच कई महत्वपूर्ण शरीरक क्रियावां नूं नियंत्रित करता है। पोटाशियम की उचित मात्रा फसल नूं वातावरणक तनाव जिवें कि वध तापमान अते थोड़े समय लई पानी की घाट सहण विच भी मदद करती है। इसके छिड़का का ढुकवा समा तुहानू दसते हां। झोने विच फोक कटाउण लई पोटाशियम नाइट्रेट के छिड़का का सब तो ढुकवा समा उदों हुंदा है जदों झोना गोभ विच होवे। इस अवस्था विच बल्ली झंडा पत्ते दी म्यान दे अंदर विकसित हो चुकी हुंदी है अते बाहर निकलण लई तैयार हुंदी है। इह फसल दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ा है, जिस दा सिद्धा संबंध भरे हुए दाणियां दी गिणती अते झाड़ नाल हुंदा है। इस समय खुराकी तत्तां दी घाट कारण दाणियां दा विकास अते भराई प्रभावित हो सकदी है, फोक विच वाधा हो सकदा है, दाणे हल्के रह सकदे हन अते अंत विच फसल दा झाड़ घट सकदा है। इसलिए इस महत्वपूर्ण अवस्था उत्ते पत्तियां राही पोटाशियम नाइट्रेट दी पूर्ती करन नाल फसल नूं लोड़ींदे तत् तेजी नाल उपलब्ध करवाए जा सकदे सन। पोटाशियम नाइट्रेट दा 1.5% कोल बना के पत्तियां उत्ते छिड़का करन दी सिफारिश कीती जांदी है। इसलिए किसान 3 किलो पोटाशियम नाइट्रेट नूं 200 लीटर पानी विच घोल के एक एकड़ झोने दी सफल उते एक सार छिड़का करदा है। छिड़का तो पहला ये यकीनी बनाया जावे कि खाद पानी विच पूरी तरह घुल गई होवे, तां जो स्प्रे नोजल बंद ना होवे अते खुराकी तत्तां दी एक सार वंड हो सके। छिड़का इस तरह कीता जावे कि फसल दे पत्तियां, खास करके उपरले पत्तियां उते घोल दी चंगी कवरेज होवे। सो दोस्तो, इस खेती संदेश तो बाद

0: किसान वीरो, उम्मीद है कि तुहानू ए गीत जरूर पसंद आया होवेगा। ते आओ हुण तुहानू जानकारी दिंदे हां पशुआं विच हेहा समकाली करन दे बारे, जो कि है डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी वल्लों।
1: सारे श्रोतियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह बतौर मुख विज्ञानी गुरु अंगद देव वैटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी विच सेवावां निभा रहा हां। मेरी महारत पशु प्रजनन दे विच है। इसे नाल संबंधित विशा हेहा समकालीकरण दे उते अज आपां गल्लबात करांगे। आपां देखांगे कि हेहा समकालीकरण की हुंदा, इहदे की लाभ ने, कदों करना चाहीदा ते इस दे की फायदे आपां नूं मिलदे हन। जिस तरह असीं जाणदे आं कि जिहड़ा पशु प्रजनन प्रबंध है इह इक लाहेवंद डेयरी फार्म दे लई बहुत जरूरी आ। बिना चंगे पशु प्रजनन प्रबंध दे असीं डेयरी किते नूं लाहेवंद नहीं बना सकते। इसे तरह पशु प्रजनन चंगा करन दे लई हेहा समकालीकरण एक वधिया साधन है। हेहा समकालीकरण दे विच चार मुख गल्लां हुंदियां ने। पहली, हेहे दी पहचान करना। जेकर असीं समें सिर हेहे दी पहचान करांगे तां ही असीं उहनूं नवें दुद्ध जिहनूं मझ जां गां नूं हरी करना गर्भ धारण कराना कहिंदे आ ना करवा सकदे ने। सही टाइम ते गर्भ धारण करवाना आ, गर्भ दी जांच करनी हैगी आ। जदों पशु गभण हो गया उहदी सेहत दी सांभ संभाल अते दुबारा उहनूं गर्भ धारण करन लई तैयार करना, इह सारियां गल्लां पशु प्रजनन दे अंदर आउंदियां ने। जिस तरह असीं देखिया वी जेकर साडा पशु प्रजनन वधिया होवेगा तां ही असीं दो सूयां दे विचकारला अंतर घट कर सकते हैं। हर साल तकरीबन एक बच्चा लै सकते हैं। जेकर पशु प्रजनन वधिया तां सारा साल साडा दुध उत्पादन अच्छा रहेगा, पूरे बग दा डेयरी फार्म दा उत्पादन अच्छा रहेगा, जिस दे नाल फार्मर नूं किसान नूं फायदा होवेगा। प्रजनन प्रबंध आ इहदे विच हेहा समकालीकरण दा बहुत महत्व है। आपां गल करदे आ हेहा ते हेहा चक्कर की आ। पहला सानू समकालीकरण तो पहला हेहा ते हेहा चक्कर नूं समझना बहुत जरूरी आ। हेहा जिस नूं आम तौर ते गां मझ दा गर्म होना, हीट दे विच आना, बोलना आख्या जांदा, इस वी कह दिंदे हैगे ने। आम बोलचाल भाषा दे विच हीट दे विच आना ज्यादा प्रचलित आ जां हेहा ज्यादा प्रचलित आ। हेहे दे दौरान पशु नर पशु दे

0: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯਾਨੀ PSU ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਟਾਫ ਕਲੋਨੀ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਸ। ਚਾਹਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: रेलवे ने सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई और पश्चिम रेलवे के उधना इकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक न्यायाधिकारियों की न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश दबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद जीत लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नगोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया। इससे पहले टेक बॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसूजा कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसूजा को

0: 2-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका घर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी बहन भाइयों का
4: नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम किसान वाणी में आपके लिए जानकारी लेकर के आते हैं और वहीं कोई ना कोई ऐसा विषय होता है जिससे हमारे कृषि जीवन में, हमारे युवा जीवन में ऐसी राहें खुलती रहें जो हमें रोजगार के संसाधन अपने आसपास उपलब्ध कराती रहें।
3: आपने रोजगार की बात तो बहुत सही कही है अमित, क्योंकि हर कोई युवा यही चाहता है कि उसके हाथ में रोजगार हो। यदि उसके हाथ में रोजगार होगा तो स्वाभिमान भी उसके अंदर होगा और जब हमारे युवाओं में आत्मविश्वास होगा तो हमारे भारत का नव निर्माण होगा। और जब योजना की बात करते हैं तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। ये भारत सरकार की एक योजना है और मत्स्य क्षेत्र के विकास की प्रमुख योजना इसे हम कह सकते हैं। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाना, मछुआरों और मछली किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
4: बिल्कुल आपने सही कहा कमलेश, क्योंकि भाई रोजगार की जब बात आती है तो ऐसे में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक स्तंभ सिद्ध होती है हमारे युवाओं के लिए। और जो हमारे लाभार्थी हैं, यदि हम महिलाओं की बात करें, आरक्षित वर्ग की बात करें, तो इसमें अनुदान भी दिया जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज और मछली परिवहन जैसी सुविधाओं का विकास भी हमारे युवा साथी कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, और इसके साथ साथ मछली उत्पादन से आप जुड़े हुए हैं तो उत्पादन को बढ़ाना और जो आपका नुकसान हुआ है उसको कम करना, मूल्यवर्धन को करना और जो आपकी बाजार व्यवस्था है उसको भी मजबूत बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आता है।
4: इस योजना से जो भी हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और बैंकों में इसके अनुदान की व्यवस्था की गई है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जागरूक बनके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
3: और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआरों का सामाजिक विकास चाहती है और उनका आर्थिक कल्याण चाहती है।
4: बिल्कुल यही उद्देश्य है इस योजना का मित्रों। और कार्यक्रम किसान वाणी में जब हम कोशिश करते हैं कि विशेषज्ञों, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की सलाह आप तक पहुंचे, आप उसके अनुसार अपने कृषि कार्य को करें तो निश्चित ही नव भारत का निर्माण होता है।
3: फूल जो है वो हमारे जीवन में केवल रंग ही नहीं भरते, केवल खुशबू ही नहीं भरते, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं।
4: बिल्कुल आपने सही कहा, जो हमारे किसान भाई बहन फूलों की खेती कर रहे हैं या ऐसे हमारे साथी जो फूलों की खेती करना चाहते हैं, कोशिश है कि कहीं से कोई आधार मिले, कोई जानकारी मिले, तो आज किसान वाणी कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा विषय है फूलों की खेती में नवाचार और विविधीकरण के आयाम। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं डॉक्टर ऋतु।

0: चीजों के लिए नहीं, फूल हमारे किसी भी त्योहार में, शादी में, विवाह में, पर्व में, साथ ही साथ कोई आपकी राजनीतिक रैली है, कोई आपका धार्मिक आयोजन है, इसके अलावा आपके होटल में, रेस्टोरेंट में, मॉल में, विभिन्न विभिन्न जगह पर फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए किसानों की आय का ये एक बहुत बड़ा साधन है, तो इसलिए फूलों की खेती करना बहुत आवश्यक है,
1: क्योंकि पूरे साल ही जो है फूलों की मांग रहती है और हर कोई चाहता है कि हर मौसम में वो फूल उनको उपलब्ध हो जाए। तो जब हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो फूलों की खेती में जो नवाचार है उससे हम क्या समझे?
0: देखिए, जहां तक हम फूलों की खेती की बात करते हैं तो फूलों की खेती में तो हम बहुत तरह के फूल उगा सकते हैं, चाहे वो कट फ्लावर हो, चाहे वो लूज फ्लावर हो, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो। पर जब हम बात करते हैं नवाचार की, नवाचार का मतलब है कुछ भी नई तकनीक का हमें फूलों को उगाने के लिए इस्तेमाल करना। तो हम उसमें जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हम बात करें टपक सिंचाई की, चाहे हम माइक्रो इरीगेशन बोले उसको, या फिर हम सेंसर का इस्तेमाल बोले, चाहे हम मल्चिंग की बात करें, तो उन सब चीजों को ओवरकम करने के हम क्या करें, तो इन सब चीजों के लिए हम बहुत सारी जो नई नई तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो हम संरक्षित खेती कर सकते हैं, चाहे तो अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पौधे उगा सके, तो वो पॉटेड प्लांट उगाते हैं, या फिर वो नर्सरी की बात कर सकते हैं कि नर्सरी आप किस तरह से उगाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, नए नए हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करके, एरोपोनिक्स का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल ग्रोइंग मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे नवाचार के आयाम है। इनफैक्ट इसके अलावा फूलों को कैसे काटना है और फूलों को किस समय हमें कैसे उनको श्रेणीकरण करना है, उनको कैसे मार्केट में भेजना है, उन सब चीजों के लिए बहुत सारी जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: जी, अभी आपने बात की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की, तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: जैसे हम बात कर रहे थे नवाचार की, तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज मतलब कि हम कुछ भी नई टेक्निक लेकर आते हैं। जैसे हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करें, ग्रोइंग मीडिया जो है सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया की बात करें जिसमें मिट्टी नहीं होती, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी बालकनी में पौधे उगाने हैं, छत पे पौधे उगाने, तो छत हमारी ऐसी है या बालकनी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा भार मिट्टी का बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके लिए हम सॉइललेस मीडिया जिसमें कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, रॉक वूल, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो लेका बॉल्स आती हैं, जो लेका बॉल्स हैं वो बहुत ही हल्की बॉल्स होती हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं पौधों को उगाने के लिए छत के ऊपर। या आपने देखा होगा अगर आप एयरपोर्ट जाएं या कहीं बड़े बड़े मॉल्स में जाएं तो बड़े बड़े पौधे लगे होते हैं, उसके साथ में छोटी छोटी भूरे रंग की बॉल्स होती हैं।
1: जी,
0: तो वो क्या करती है, वो पानी एब्जॉर्ब करती है, मतलब मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती है, आपका पानी का वाष्पीकरण कम होता है। उनमें मिट्टी नहीं है तो कोई कीट और व्याधि होने का कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि फफूंद वगैरह का या कोई रोग उनको नहीं लगता। साथ ही साथ पौधा उसमें स्वस्थ रहता है, और समय समय पर हम अगर उसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालते रहें, पोषक तत्व है जो कि आप सिंगल न्यूट्रिएंट के जैसे भी डाल सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाकर भी उसको डाल सकते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। साथ ही साथ नवाचार की बात करें या इनोवेशन की बात करें, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, फूलों को जब कटाई करते हैं तो जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, जहां पर भी हम संरक्षित खेती करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस हैं, वहां पर रोबोट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है फूलों को काटने के लिए। मतलब कि कली की जो अवस्था है खुलने की, या उसका कली का जो रंग है वो दिख रहा है, तो वो सब चीजें रोबोट से देखकर या एआई का इस्तेमाल करके उसे काटी जा सकती है। साथ ही साथ अगर आप बात करें कि फसल देखनी है आपको, कहीं फसल में कोई व्याधि तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, किसी कीट का प्रकोप तो नहीं हो गया, तो बहुत सारी जो फिनोमिक्स टेक्निक्स होती है, मतलब फोटो ले लेकर देखा जाता है कि कहां पर जो हमारा पौधा है वो क्षतिग्रस्त है, तो उस तरह की चीजों को भी इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के
1: शामिल किया जाता
0: है। जी जी जी।
1: और जब हम बात करते हैं विविधीकरण के आयाम, तो इससे जो हमारे श्रोता हैं वो क्या समझे?
0: जी देखिए, फूलों की खेती सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाने तक सीमित नहीं है। जैसे कि हम बात करें गेंदे की, सबसे ज्यादा जो एक आम आदमी समझता है वो गेंदे का फूल या गुलाब का फूल, या तो हम उसको माला के लिए इस्तेमाल करते हैं या खुले फूल इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, और या फिर जो गुलाब है उसको कट फ्लावर के लिए भी देते हैं कि किसी को गिफ्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फूल हैं जो पूरा वर्ष भर उगाए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें विविधीकरण में आवश्यकता है ये जानने की कि हमारी मार्केट क्या है, मार्केट में किस समय पे किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सभी लोग गेंदे की खेती या गुलाब की खेती एक समय करने लगे तो उससे किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, मार्केट में एकदम ग्लट आ जाएगा और ग्लट आने से रेट जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए कट फ्लावर की अलग अलग क्रॉप्स जैसे जूही, चमेली, गुलाब, गुलदाउदी, बबूना और गेलाडिया, चाइना एस्टर, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एरिया में हम रहते हैं उस तरह की क्रॉप्स उगाएं। साथ ही साथ कट फ्लावर के क्रॉप्स जैसे गुलाब है, गुलाब के बाद कार्नेशन है, ग्लैडियोलस,

0: है, ट्यूबरोज है, ऑर्किड्स हैं, जरबरा है, तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं एक तो हम उसको उगाएं। ये तो होगी फ्लावर की खेती की बात। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नर्सरी प्रबंधन, नर्सरी उत्पादन
1: जी।
0: लोगों को पौधे तैयार ना करने पड़े और वो पौध उनको मिल जाए ताकि वो रेडीमेड उसको लगा सके, चाहे वो लैंडस्केपिंग पर्पज के लिए लगाएं, चाहे वो अपने इस्तेमाल के लिए लगाएं। उसके अलावा अच्छी गुणवत्ता वाला प्लांटिंग मटेरियल, पौध सामग्री बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अच्छे बीज मिलना, अच्छे कंद मिलना ये और अच्छे बल्ब मिलना ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो उस तरह की पौध सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। उसके अलावा संवर्धन कर सकते हैं
1: जी।
0: जो हमारे पास मार्केट में ग्लट आ गया है, हमारे जो सामान मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो उसके बहुत सारे मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम है, इत्र है, साथ ही साथ अगरबत्ती है और गुलाब जल है, साबुन है, कॉस्मेटिक्स हैं, शैम्पू है, बहुत तरह के सौंदर्य प्रसाधन है और ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजें आप इससे बना सकते हैं। साथ ही साथ एक टर्फ ग्रास की बात करूंगी, लॉन ग्रास, वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, हम मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जो ये लॉन ग्रास होता है, आप देखेंगे हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो बड़े बड़े मॉल्स हो, चाहे वो आपके बड़े खेल के मैदान हो, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे जहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही है, नए फ्लैट्स, नई कॉलोनीज कट रही है, सब जगह टर्फ ग्रास का इस्तेमाल होता है। तो टर्फ ग्रास भी एक अच्छा आयाम है जिसके बारे में हमारे जो किसान भाई हैं या जो भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं फ्लोरिकल्चर के साथ, वो ये कर सकते
1: जी। और आजकल तो डॉक्टर साहब हर कोई ये बोलता है कि हम डिजिटल हो गए हैं, तो जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल और स्मार्ट कृषि के अंतर्गत फूलों की खेती को हम रख कर देख सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे डिजिटल और स्मार्ट खेती हर एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल है। अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, तो सबसे ज्यादा डिजिटल और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का यूज हम कर सकते हैं, जैसे कि इरिगेशन में, कि इरिगेशन किस तरह का होना चाहिए। कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनमें हमें कभी तो स्प्रिंकलर इरिगेशन चाहिए होता है, तो कभी तो ड्रिप इरिगेशन चाहिए होता है, तो वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी से हम डिसाइड कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम कि इस इतने दिन तक हमें ये देना है, उसके बाद हमें ये टेक्नोलॉजी फॉलो करनी। उसके अलावा रोबोट जो है वो देखेगा पौधों को कि किसी में कोई बीमार पौधा तो नहीं है, कोई खराब पौधा तो नहीं है, किसी की क्वालिटी खराब तो नहीं है। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है, पहले तो ब्रॉडकास्टिंग करते थे, उसके बाद लिक्विड वो देते थे, तो वो भी अब टपक सिंचाई से माइक्रो इरिगेशन के साथ देना है, कितने घंटे के बाद देना है, कौन सी स्टेज पे देना है, नाइट्रोजन कब देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कब देना है, फास्फोरस कब देना है, पोटाश कब देना है, तो ये सब जो चीजें हैं वो स्वचालित तरीके से आपके स्मार्ट खेती के अंतर्गत आती है, तो इनका इस्तेमाल खूब आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल खेती सिर्फ खेती करने के लिए नहीं, आप अपनी फसल को, अपनी उपज को बेचने के लिए भी उसका इस्तेमाल करें
1: जी।
0: बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया जिनको हम सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट देके, अपनी रील्स बना के, अपने प्रोडक्ट की मशहूरी करके उन सब चीजों को आप बेच सकते हैं, कुछ समूह बना सकते हैं। तो इस तरह का जो डिजिटल एरा है, क्योंकि अब आने वाला एरा तो डिजिटल एरा ही है, तो उसका इस्तेमाल हम क्यों ना करें।
1: ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे श्रोताओं को बताई कि जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो हमारी खेती उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। और अब बात करते हैं कोल्ड चेन की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए कोल्ड चेन बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लोरिकल्चर का, क्योंकि जो फूल हैं वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं और हमें कटाई से लेकर जब तक वो अल्टीमेटली रिटेलर के, कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाते, मतलब कटाई से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए हमें कोल्ड चेन का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो हमारा फ्लावर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, फ्लावर की लॉन्जिविटी अच्छी रहेगी, ज्यादा दिन तक आपका फूल चलेगा, साथ ही साथ उपभोक्ता को अच्छा फूल मिलेगा तो वो भी खुश हो जाएगा, आपको अच्छा प्राइस देगा। तो कोल्ड चेन मतलब आपने फूल काटा और काटने के बाद इमीडिएटली उसको आपने ठंडे पानी की बाल्टी में रखा, उसके बाद उसको आप पैकिंग हाउस में लेगा जहां पर एक प्रॉपर कोल्ड चेन या कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है, वहां पर उसकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग सब अंडर लो टेम्परेचर कंडीशन की जा रही है। उसके बाद जब पैकेजिंग हो गया, तो पैकेजिंग करके उसको हम फिर कोल्ड स्टोरेज में फ्लावर को रखेंगे जब तक कि वो हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर देते
1: जी।
0: तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगेन हमें रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब वो होलसेलर के पास पहुंचता है, चाहे वो रिटेलर के पास पहुंचता है, वहां जाकर भी वो ठंडे स्थान पर ही उसको अगर स्टोर करेंगे, तभी फूलों का प्राइस भी अच्छा मिलेगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और हमारी जो एक मंशा है कि कोल्ड चेन से क्वालिटी अच्छी बढ़ जाए, तो वो भी किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, जब आपने अभी कोल्ड चेन की आप और हम बात कर रहे थे, सुनकर लग रहा है कि ये तो काफी महंगा होगा, और एक जो किसान है वो इतने महंगी चीजों को या इतना जो कोल्ड स्टोरेज बनाएगा वो कैसे बनाएगा, तो क्या ये मिलकर बनाना होगा या इसका भी कुछ ऐसा प्रबंध है कि किराए के हिसाब से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं?
0: जी देखिए, कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो एक अकेले किसान के लिए करना ये संभव नहीं है। अगर हम छोटे सीमांत किसान की बात करें तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर एक समूह बनाकर, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इसको किया जा सकता है। और कोल्ड स्टोरेज एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो अनुदान भी देती हैं, 60-70% के करीब अनुदान भी मिलता है। तो आप NHB हो या कोई एपीडा हो, या बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे अगर किसान हमारा बात करें तो उनको अनुदान भी मिल सकता है, तो वो ये सब फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं।
1: जी, अगर मान लीजिए कि हमारे कार्यक्रम सुनकर कोई किसान भाई खेती करना चाहता है, फूलों की खेती करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या सोचना होगा, कैसे अपनी एक प्लानिंग करनी होगी?
0: जी देखिए, सबसे पहले किसान को ये देखना है कि उसके आसपास की मार्केट क्या है, मार्केट का सर्वे करना है, मार्केट में फूलों की जरूरत है क्या, है क्या नहीं। उसके बाद उसको अपना क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप ग्रो करनी है, उसको अपना सॉइल टेस्टिंग कराना है, वाटर टेस्टिंग कराना है, मिट्टी और पानी की जांच के बाद उसको ये देखना है कि यहाँ के लिए कौन सी सूटेबल क्रॉप्स हैं, किसी एक विशेषज्ञ की सलाह लेकर वो उगाए। और उसके बाद मैं तो ये कहना चाहूंगी कि खेती करने से पहले एक प्रशिक्षण ले ले, चाहे किसी कृषि विज्ञान केंद्र से ले ले या फिर किसी कृषि विश्वविद्यालय है वहां से ले सकते हैं, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहां पर भी आकर, वो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस तरह के प्रबंध किए जा सकते हैं।
1: जी, अब उसको बाजार तो मिल गया है, उसके बाद में क्रॉप जो है वो कहाँ से मिलेगी, या बीजों की उपलब्धता जो है वो कहाँ से वो लेकर आएगा, और उसके बाद में उनको जैसे कोल्ड चेन वाली बात की गई है तो उसके लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे, इसके बारे में भी आप हमें बताएं।
0: जी देखिए, बात है जहां तक कि क्रॉप कौन सी उगानी है, वो तो उस एरिया की जलवायु और पानी के ऊपर और मिट्टी के ऊपर निर्भर करेगा। आपने लूज फ्लावर उगाना है या कट फ्लावर उगाना है, पहले तो ये हमें डिसाइड करना है। तो लूज फ्लावर उगाना है तो उसके लिए हम गेंदा उगा सकते हैं, गेनार्डिया उगा सकते हैं, हम रजनीगंधा उगा सकते हैं, हम गुलाब उगा सकते हैं, तो इस तरह की फसलों का हम चयन कर सकते हैं, या फिर बबूना उगा सकते हैं, गुलदाउदी उगा सकते हैं। तो ये सब फसलें हैं जो कि बहुत अच्छे फूल देती हैं। तो इनका जो बीज है, इनके बीज की उपलब्धता जो पास का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग, एक तो वहां से हमें बीज मिल सकते हैं, या किसी सत्यापित नर्सरी से बीज लिया जा सकता है, या कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, या फिर जो भी केंद्रीय संस्थान है आसपास में जो कि फूलों पे काम करते हैं वहां से बीज लिया जा सकता है। जैसे हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो इस वक्त अगर हम गेंदे की बात करें तो हमारे पास 5-6 जो किस्में हैं गेंदे की वो ली जा सकती हैं, और उसकी अलग अलग समय पर खेती होती है। तो इन सब चीजों का मेरा मानना है कि किसान अगर किसी विशेषज्ञ के पास जाएगा तो वहां से वो पूरी जानकारी भी मिलेगी, कैसे करना है सब उसको मिल जाएगा। उसके बाद बात की आपने कोल्ड स्टोरेज की, देखिए कोल्ड स्टोरेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है अगर हमारी मार्केट दूर हो, नजदीक मार्केट है जैसे दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास है, और हम गाजीपुर तक भेज रहे हैं और लूज फ्लावर हैं, तो इतना बहुत ज्यादा हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी अगर कहीं पर आपको फसल जो है स्टोर करनी है, आपकी आज डिमांड नहीं है, मान लीजिए कोई त्योहार है, दो दिन के बाद आपको अच्छा प्राइस मिलने वाला है मार्केट में, तो आपको कोल्ड स्टोर की और कोल्ड चेन की आवश्यकता है, और उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे कि आप चाहे तो सरकारी संस्थान से अनुदान लें, चाहे तो आप अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, इस तरह के प्रयास करके किसान जो है लाभ उठा सकता है।
1: तो चलते चलते जो हम बार बार AI की बात करते हैं जी, तो AI का क्या महत्व है?
0: जी देखिए, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम बात करें, मनुष्य अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो कभी कभी हमसे चूक जाते हैं देखने के लिए, बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हर प्रोग्राम एक फिक्स होता है, कोई चीज देखना है इतने डिग्री पे ही देखना है, इतने एंगल पे देखना है, यही कलर होना चाहिए, यही RGB स्कीम होनी चाहिए, इतने ही सेकेंड में वो टेस्ट पास होना चाहिए। तो वो सब चीजें जो है आपको मदद करती हैं आपका काम आसान करने के लिए। जो चीजें आप आंख से कई बार चूक जाते हैं तो वो आप AI के माध्यम से देख सकते हैं। AI आपको ये भी बता देगा कि आपको पौधे में क्या डिजीज लगी है, AI से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप कौन सी बीमारी हुई आपके पौधे को, उसका क्या निदान है, और आपको अगर बीमारी ही पता चल जाए तो उसके लिए आपको ये बता देगा कि आपको ये पौधा रखना है नहीं रखना है, कितना फसल के लिए हानिकारक है या नहीं है। साथ में रोबोटिक्स का इस्तेमाल जो वो भी AI से ही चलते हैं, स्वचालित जिसे हम कहते हैं, उसके बाद AI का इस्तेमाल आप अपनी क्रॉप को मार्केट में बेचने के लिए भी कर सकते हैं, आप नए नए क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, तो उस सब चीजों के लिए भी AI का इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते।
1: डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये बातचीत फूलों की खेती में नवाचार और विविधीकरण के आयाम, और इस पर विस्तृत जानकारी दे रही थी डॉक्टर ऋतु जैन, जो प्रधान वैज्ञानिक है पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में।
2: बिल्कुल कमलेश जी, ये तो बात रही कार्यक्रम में बातचीत, जिससे हमारे कहीं न कहीं साथी जागरूक होंगे और कोशिश करेंगे कि फूलों की खेती में जब हम वैज्ञानिक सोच लेकर के आते हैं तो उत्पादन अच्छा होता है, लागत मूल्य कम लगता है। वहीं कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं को सुनवाएंगे एक रागिनी कलाकार रविंद्र खालोर।
3: ए रकित जाऊ रहा दिखे अंधेरा।

0: मित्रों, ये आप रागनी सुन रहे थे रविन्द्र खालोर की आवाज में।
1: हमारी जो कृषि है वो मौसम पर ही आधारित है। जब हम किसान भाइयों को मौसम का पूर्वा अनुमान बता देते हैं तो उससे उनको फायदा ही होता है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से साफ और धूप वाला मौसम रहेगा। तापमान की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अगर हम वर्षा की बात करें तो बारिश की संभावना ना के बराबर है।
0: मित्रों, जब मौसम का पूर्वानुमान कार्यक्रम में आप तक पहुंच जाता है तो वही बात आती है हमारे किसान भाइयों के लिए। वैज्ञानिकों की कृषि सलाह के द्वारा की गई खेतीबाड़ी से निश्चित ही हम अधिकतम लाभ लेते हैं और हमारा उत्पादन अच्छा होता है, लागत कम हो जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुख्य फसलों के लिए विशेष कृषि सलाह जारी की है। यदि सितंबर के बचे हुए दिनों की हम बात करें तो इस समय धान की फसल के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है कि जो अगेती धान की वैरायटी है वो पकने की कगार पर है, और कृषि मंत्रालय ने सलाह दी है कि कटाई में बिल्कुल भी किसान भाई जल्दबाजी ना करें, अनाज को अच्छी तरह पकने दें ताकि मंडियों में अधिक नमी के कारण फसल रिजेक्ट ना हो।
1: जिन किसान भाइयों ने इस समय सोयाबीन की खेती की हुई है उनके लिए सलाह दी जाती है अगेती किस्में जो पक रही हैं और पछेती किस्में फलियां भरने की महत्वपूर्ण अवस्था में हैं, और जब 90% फलियां पीली पड़ जाएं तो अगेती किस्मों की कटाई तुरंत कर लें ताकि अचानक बारिश होने पर दाने खराब ना हो।
0: बिल्कुल, और वहीं जब बात कीट नियंत्रण की है तो वही तंबाकू की इल्ली और गर्डल बीटल के प्रकोप पर भी नजर रखें। सब्जियां और रबी की तैयारी वे किसान भाई ध्यान दें, वर्तमान मौसम अगेती मटर की बुवाई के लिए बेहद अनुकूल है। जड़ सड़न रोग से बचाव के लिए बुवाई से पहले बीजों को कैप्टन या थीरम जैसी फफूंद नाशक दवाओं से उपचारित अवश्य करें। तो मित्रों, ये थी कृषि वैज्ञानिकों की सलाह हमारे किसान भाई बहनों के लिए।
1: और हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहन है, जब हम किसान वाणी कार्यक्रम लेकर आते हैं तो देखो कितने सारे आयाम हम अपने कार्यक्रम में जोड़ते हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता हैं वो क्या सोचते हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में, ये तो तभी पता चलेगा जो हमें फीडबैक मिलेगा। तो जब फीडबैक की बात करते हैं तो क्यों ना श्रोताओं को अपना ईमेल आईडी भी बता दें। तो हमारे ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आप अपने जो भी विचार हैं या और इस कार्यक्रम में आप क्या चाहते हैं वो सुझाव आप हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं।
0: मित्रों, आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने एक खूबसूरत गजल सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 7:45 होने को हैं। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी। श्री मोदी ने कहा, सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति की मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में लगभग 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित वन घोषित करने की मंजूरी दी। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों ने नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
3: नमस्कार, मेरा नाम मानी काले है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस नियुक्ति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने देश और विभाग की उन्नति में योगदान देने का प्रयास करूँगा। मेरा नाम मीनू है और मैं हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट के पद पर हुआ है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर मिला।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी रिज के करीब 1000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के बाद अधिसूचित रिज क्षेत्र बढ़कर करीब 13000 एकड़ हो जाएगा। दिल्ली की पारिस्थितिकी सुरक्षा, हरित आवरण और वायु गुणवत्ता को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है। रिज राजधानी की प्राकृतिक विरासत होने के साथ साथ उसका हरित सुरक्षा कवच है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केवल भूमि को कानूनी संरक्षण देना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि रिज के पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें देशी प्रजातियों को बढ़ावा देने, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्जीवन और आक्रामक प्रजातियों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की।

0: योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएमश्रेय स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। इस दौरान दिल्ली के कला संस्कृति भाषा विभाग के अंतर्गत अभिलेखागार की ओर से इन विरासत क्लबों के छात्रों के लिए कई व्यावहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। योजना का उद्देश्य दिल्ली के छात्रों को राजधानी की समृद्ध सांस्कृति स्थापत्य और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू आज पीएस मौर्य एनक्लेव में थाना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिकों से सीधे बातचीत करने, शिकायतें सुनने और तय समय में उनका समाधान करने का एक मंच है। श्री संधू ने कहा कि भरोसा कायम करने और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए मार्केट समिति के साथ सक्रिय साझेदारी बहुत जरूरी है। उपराज्यपाल शकुरपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अभियान में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के साथ विकसित फाउंडेशन के युवा स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी की। उपराज्यपाल ने स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को अपने आसपास की स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर श्रमदान के माध्यम से पार्क की सफाई करना और उसमें सकारात्मक बदलाव देखना बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे।
1: इन शिविरों में मतदाता अपना नाम और विवरण जांचने के साथ जरूरी फॉर्म जमा करने की जानकारी भी ले सकेंगे। पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं होने पर फॉर्म 6, किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। ये फॉर्म संबंधित निर्वाचन कार्यालय BLO या ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। नोटिस चरण और दावों या आपत्तियों का निपटान 29 अक्टूबर तक चलेगा। SIR के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशेष शुक्ला।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। यश दबास अध्यक्ष, रिया छाबड़ी सचिव और लक्ष्यराज सिंह संयुक्त सचिव बने हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। अध्यक्ष यश दबास ने कहा कि PG और हॉस्टल की ऑडिट उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: हमारे लिए सबसे जो पहला विशेष मुद्दा रहेगा वो रहने वाला है कि हर एक PG और हॉस्टल का एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, क्योंकि आप सभी ने देखा जो सत्य निकेतन की दुर्घटना हुई थी। हम नहीं चाहते आने वाले भविष्य में ऐसी दुर्घटना किसी के भी साथ हो।
0: सचिव रिया छाबड़ी ने कहा कि परिषद को जीत युवाओं की बदौलत मिली है।
3: अपनी सीट से बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत थैंकफुल फील हो रहा है अपने संगठन को, अपने जिन स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया उनको, अपनी टीम मेंबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को। जेंजी प्रोडक्ट में जेंजी हमारे साथ है, तभी हम 3 सीटों से जीते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में इस जीत पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि यह जीत राष्ट्र प्रथम की नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। गृह मंत्री ने कहा कि यह जीत परिषद की विद्यार्थियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता में युवाओं के अटूट भरोसे को दर्शाती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीनों विजेताओं को बधाई दी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह जीत ABVP पर युवाओं के भरोसे को दर्शाती है।
4: दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत 3 सीटों पर ABVP ने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की है। दिखाता है कि आज का युवा भ्रमित नहीं है, इसलिए आज का युवा ABVP को समर्थन दे रहा है।
0: दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल कक्षा और किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के बीच जाकर उसकी वास्तविक चुनौतियों को समझना और उनके समाधान विकसित करना चाहिए। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली स्टार्टअप नीति के अंतर्गत दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप और 4,00,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाब में नशे के खिलाफ नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने नशे

0: के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पंजाब के युवाओं और परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना सभी का दायित्व है।
1: पर युवा भाई जो इस नशे की गिरफ्त में है उनको कैसे छुड़ाया जाए। आज गांव गांव शहर शहर में ये नशे का दानव अपना रूप बढ़ाता जा रहा है। अब इसे समाप्त होना होगा और ये नशा मुक्त पंजाब यात्रा उसी की शुरुआत है।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। श्री कटारिया ने कहा कि ये पहल चंडीगढ़ की विकास यात्रा में एक प्रमुख उपलब्धि है। इससे श्रम का सम्मान, सहकारी स्वामित्व, तकनीकी आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जोनल कार्यालय ने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एक कंपनी के 42 करोड़ रुपए से अधिक के इक्विटी शेयरों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल मजबूत संबंधों के आधार पर साझेदारी को नया रूप दे सकते हैं। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक संगोष्ठी में डॉक्टर वागले ने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत की त्वरित सहायता की सराहना की।
2: आई थिंक क्लोज टू 8 कार्गो प्लेन्स हैव अराइव्ड। लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
3: इंडियन गवर्नमेंट इज लुकिंग एट द इश्यू ऑफ असिस्टेंस वेरी पॉजिटिव।
0: दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी में व्यापक स्वच्छता और सफाई गतिविधियां जारी रखी। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों, जीजे क्लस्टरों, प्रमुख मार्गों, सेंट्रल वर्ज और अन्य सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुनील कुमार बरनवाल ने कहा है कि एआई आधारित टूल्स के माध्यम से विभिन्न बीमारियों की स्क्रीनिंग आसान हो गई है। राजधानी में 2 दिन के डॉक्टर एआई ग्लोबल सम्मेलन में डॉ बरनवाल ने कहा कि बीमारी की समय पर पहचान होने से शीघ्र उपचार संभव होगा जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा। इंडियन डेंटल एसोसिएशन का 2 दिन का आईडीए दिल्ली स्टेट कॉन्फ्रेंस आज से पश्चिम बिहार में शुरू हुआ। सम्मेलन के दौरान देश भर से आए विशेषज्ञ डेंटल क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना सहित कई स्थानों पर आज राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में लगभग 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित वन घोषित करने को मंजूरी दी। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: सामीन की खिदमत में सरफराज आलम का सलामो आदाब। हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुशायरा लेकर। सामीन, मुशायरे हमारी तहजीब का अहम हिस्सा हैं। इसने माजी में भी जबानो अदब के फरोग में नुमाया किरदार अदा किया है और असर हाजिर में भी इल्म अदब और तहजीब व सकाफत को परवान चढ़ाने में इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। مشاعرے اردو زبان و تہذیب کی ایک ایسی خوبصورت روایت ہیں جس کی مثال دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب اور ثقافت میں بمشکل ہی ملے گی۔ مشاعرے کی ایسی ہی ایک خوبصورت محفل لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے مشاعرے میں جن شعرا کو آپ سنیں گے ان میں شامل ہیں جناب شرف نان پاروی، جناب امیر امروہوی اور جناب جاوید عباسی۔ نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب فرمان چودھری۔
5: سامعین، ایک بار پھر ہم اردو مجلس کے ایک خاص پروگرام محفل مشاعرہ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اپنے آج کے اس خاص مشاعرے میں ڈاکٹر فرمان چودھری کے ساتھ جن شعرا کو اپنا کلام پیش کرنا ہے ان کے نام نامی اس طرح ہیں۔ جناب شرف نان پاروی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جناب ڈاکٹر امیر امروہوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور جناب جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنہیں اپنا کلام پیش کرنا ہے۔ اس باوقار محفل مشاعرہ کا آغاز میں اپنے کلام سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں اجازت چاہتا ہوں سبھی سامعین سے اور شرکا سے۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیے۔
6: جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ۔
5: تیرے دل میں ٹھکانا چاہتا ہوں۔
6: کیا کہنے، کیا کہنے۔

0: अच्छा शेर है, डॉक्टर साहब अच्छा शेर है, वाह वाह
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लो फिर तुमको जिताना चाहता हूँ, और मुझे ये हिज्र है मंजूर यूं भी,
0: हाय हाय हाय हाय हाय,
1: मुझे ये हिज्र है मंजूर
0: यूं भी
1: मैं तुमको याद आना चाहता
0: मैं तुमको आजमाना
1: चाहता हूँ, तुमको याद
0: सब क्या कहने जुमान अल्लाह जुमान, वाह वाह बहुत अच्छा
1: और शेर समाप्त फरमाइए।
0: मैं तुमको याद आना चाहता हूँ,
1: तुम्हारे जिस्म की सरगम को अपनी,
0: तुम्हारे जिस्म की सरगम को अपनी,
1: तुम्हारे

0: अच्छी गजल है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब क्या कहने, वाह वाह वाह वाह।
1: लबों से गुनगुनाना तुम्हारे जिस्म की।

0: वहाँ एक घर
1: बनाना।
2: बहुत अच्छे
3: बहुत
0: शुक्रिया। जहाँ पहुँचे न कोई
1: गम का साया,
0: गम

0: वाह वाह
1: वहाँ एक घर बनाना चाहता हूँ।
2: हाजरीन और सामाईन, इस समा खराशी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस महफिल मुशायरे को आगे बढ़ाता हूँ और मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब जावेद अब्बासी साहब से कि बराहे करम अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम जावेद अब्बासी साहब।
3: याद उस बे वफा की आई है।
2: वाह वाह।

0: वाह
1: अब के गुलशन में दिल कशी ही नहीं,
0: अब के गुलशन में दिल कशी ही नहीं,
1: अब के गुलशन में दिल कशी ही नहीं।

0: वाह वाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम जावेद अब्बासी साहब, अपना खूबसूरत कलाम हमें सुना रहे थे। सामईन, उर्दू मजलिस का ये महफिल मुशायरा, अब हम इसको आगे ले जाते हैं और इस शेर के साथ मैं दावत दूंगा डॉक्टर अमीर अमरोही साहब को कि हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। तो सामईन हजरात समाध कीजिए मोहतरम डॉक्टर अमीर अमरोही साहब को।
1: तुझे अगरचे गुरूरे सितम ज्यादा है, हमें भी अपने खुदा पर भरम
2: ज्यादा
1: है। हमें भी अपने खुदा पर भरम ज्यादा है।
2: वाह वाह वाह।
1: और एक और मतलब देखें, खताए कम हैं हमारी रकम ज्यादा है। खताए कम हैं हमारी रकम ज्यादा है। कुछ हम पे तेरी नवाजिश कलम ज्यादा है। कुछ हम पे तेरी नवाजिश कलम ज्यादा है। और शेर मुलायजा फरमाएं, हमें ये डर है कि रुसवाइयां नसीब ना हो। हमें ये डर है कि रुसवाइयां नसीब ना हो। कुछ हम पे आपकी नजरे करम ज्यादा है।
2: बहुत अच्छा।
1: हमें ये डर है कि रुसवाई, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये डर है कि रुसवाइयां नसीब ना हो। कुछ हम पर आपकी नजरे करम ज्यादा है। कुछ हम पर आपकी नजरे करम ज्यादा है। और ये भी शेर देखें, जो बुत कदों के परस्तार हैं समझते हैं। शेर साहब देखिए,
2: जी जी आता आता हूँ।
1: जो बुत कदों के परस्तार हैं समझते हैं, सनम कदों से मुकद्दस हरम ज्यादा है। सनम कदों से जो बुत कदों के परस्तार हैं समझते हैं, सनम कदों से मुकद्दस हरम ज्यादा है। और ये भी शेर देखें कि हमारे पास तुम्हें क्या मिलेगा हम सुखनो। हमारे पास तुम्हें क्या मिलेगा हम सुखनो। हमारे पास खुशी कम है गम ज्यादा है। हमारे पास खुशी कम है गम ज्यादा है। और शेर मुलायजा फरमाएं, अब ऐसी शक्ल में क्यों कर तुम्हारे पास आए। अब ऐसी शक्ल में क्यों कर तुम्हारे पास आए। हमारी जान पे बारे अलम ज्यादा है। हमारी जान पे बारे अलम ज्यादा है। और फरमान साहब शेर देखें, ये हो गई हैं तेरी आर जार के सदके।
2: जी जी, ये हो गई हैं तेरी,
1: ये हो गई हैं तेरी आर जार के सदके। जो रोशनी मेरी आंखों में कम ज्यादा है।
2: अरे डॉक्टर साहब क्या कहें,
1: ये हो गई हैं तेरी आर जार के सदके। जो रोशनी मेरी आंखों में कम ज्यादा है।
2: वाह वाह।
1: और शेर देखें कि उठाए फिरता हूँ दुनिया का बोझ कांधों पर।
2: उठाए फिरता हूँ दुनिया का बोझ,
1: उठाए फिरता हूँ दुनिया का बोझ कांधों पर। कमर में इसलिए कुछ मेरी खम ज्यादा है। कमर में इसलिए कुछ मेरी खम ज्यादा है। और शेर देखें, यकी है जिंदगी मंजिल को पाने वाली है। यकीन है जिंदगी मंजिल को पाने वाली है। बस अब सफर मेरा दो ही कदम
2: ज्यादा है।
1: बस अब सफर मेरा दो ही कदम ज्यादा है। और इस गजल का आखिरी शेर समाज फरमा दें, जो मेरे बस

0: में ही होता तो मैं ही सुल जाता। जो मेरे बस में ही होता तो मैं ही सुल जाता, तुम्हारी जुल्फों में जानम ये खम ज्यादा। जो मेरे बस में ही होता तो मैं ही सुल जाता, तुम्हारी जुल्फों में जानम ये खम ज्यादा है। और मक्ते का शेर समाज फरमाए, अमीर कूच करो अपने गांव की जानी,
1: अमीर कूच करो अपने गांव
0: की, अमीर कूच करो अपने गांव की जानिब, हर एक शख्स यहाँ मोहतरम ज्यादा
1: है।
0: हर एक शख्स यहाँ मोहतरम ज्यादा है। अमीर कूच करो अपने गांव की जानिब, हर एक शख्स यहाँ मोहतरम ज्यादा है। गजल के चंद अशआर और समाज फरमाने, मतलब समाज फरमाने, हाल दिल हम जो उन्हें अपना सुनाकर निकले, हाल दिल हम जो उन्हें अपना सुनाकर निकले, देर तक हम भी कहां सदमे से बाहर निकले, देर तक हम भी कहां सदमे से बाहर निकले। और शेर देखें, उठ ना जाए कहीं गुर्बत का भरम चेहरे से,
1: उठ न जाए कहीं गुर्बत का भरम चेहरे से।
0: और साथ देखे शेर,
1: उठ
0: न जाए कहीं गुर्बत का भरम चेहरे से, बस यही सोच के हम घर से न बाहर निकले, बस यही सोच के हम घर से न बाहर निकले। और शेर देखे, हम तो समझे थे यहाँ हू के सिवा कुछ भी नहीं, हम तो समझे थे यहाँ हू के सिवा कुछ भी नहीं, दिल के वीराने में आबाद कई घर निकले,
1: आए, आए, आए, आए।
0: दिल के वीराने में आबाद कई घर निकले, दिल के वीराने में आबाद कई घर निकले। और शेर मुलायजा फरमाए, अब्बासी साहब, तेरी चाहत के लिए जब भी तलाशा खुद को,
1: तेरी चाहत के लिए,
0: तेरी चाहत के लिए जब भी तलाशा खुद को, वसवसे कितने मेरे दिल के ही अंदर निकले।
1: अरे क्या कहने,
0: वसवसे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
1: क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह।
0: तेरी चाहत के लिए जब भी तलाशा खुद को, वसवसे कितने मेरे दिल के ही अंदर निकले। और ये भी शेर देखें, तब समझ लेना मेरे यार ने गेसू खोले, तब समझ लेना मेरे यार ने गेसू खोले, जब हवा कूचे जाना से मुअत्तर, तब समझ लेना मेरे यार ने गेसू खोले, जब हवा कूचे जाना से मुअत्तर निकले, जब हवा कूचे जाना से मुअत्तर निकले। और ये भी शेर देखें, चांद देखूं ते तेरा रूह मुनव्वर देखूं,
1: वाह वाह,
2: चांद देखूं
0: तो तेरा रूह मुनव्वर देखूं, चांद निकले तो तेरा रूह मुनव्वर निकले, चांद देखूं तो तेरा रूह मुनव्वर देखूं, और चांद निकले तो तेरा रूह मुनव्वर निकले। और शेर देखें, हम जहां पहुंचे वहाँ फतह मुकद्दर पहुँची,
1: बेशक बेशक, हम जहाँ
0: पहुँचे वहाँ फतह मुकद्दर पहुँची, हम जिधर निकले फकत तेरे करम पर निकले, हम जिधर निकले फकत तेरे करम पर निकले।
1: क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह,
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी देख ले, फिर हुआ यूं के मेरी शौक मिजाजी बदली, फिर हुआ यूं के मेरी शौक मिजाजी बदली, जब मेरे बच्चे मेरे कद के बराबर निकले, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हुआ यूं के मेरी शौक मिजाजी बदली, जब मेरे बच्चे मेरे कद के बराबर निकले, और फिर लहू रंग हुई जाती है खाके गुलशन, फिर लहू रंग हुई जाती है खाके गुलशन, फिर तेरे नौहा गरा देख सड़क पर निकले, फिर तेरे नौहा गरा देख सड़क पर निकले। और शेर देखें, वक्त पर जो भी मिला उस पे कनात की है, वक्त पर जो भी मिला उस पर कनात की है, पैर अपने कभी चादर से न बाहर निकले, पैर अपने कभी चादर से न बाहर निकले। और आखिरी शेर इस غزل کا
1: آتا آتا آتا
0: دل کو تڑپاتی ہے رہ رہ کے جدائی تیری.

एक तितली का दिल दुखाया था, एक तितली का दिल दुखाया था, अब तरसते हैं हम बहारों को, अब तरसते हैं हम बहारों को। खासकर ये शेर डाक साहब, जब तवाजुन में फर्क आता है, जब तवाजुन में फर्क आता है, जब तवाजुन में फर्क आता है, गिरना पड़ता है शहसवारों को, गिरना पड़ता है शहसवारों को। हम गजल में पिरोते रहते हैं तेरी पलकों के टूटे तारों को। बहुत बहुत शुक्रिया गजल की शेरों सुनिए। वहां से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की है,

جناب قیس جہاں تم نے التحا کیے، جناب قیس جہاں

खिलाने का सिलसिला रखना, लबों से फूल खिलाने का।

0: तेरी
1: तस्वीर आईना की है,
0: वहां से हमने मोहब्बत की इब्तदा की है। जनाबे कैसी जहां तुमने इंतहा की है। आखिरी शेर जरूरतों का पसीना जो आया माथे पर,
1: जरूरत।

0: परों से मुझे हवा की है, कबूतरों ने परों से मुझे हवा की है। मक्ता इंशाल्लाह आपकी जहमत तमाम। शरफ ये बात तुम्हें
1: वाह
0: किस तरह बताऊं मैं, शरफ ये बात तुम्हें किस तरह बताऊं मैं,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत कार्यक्रम की।

खूबसूरत सी एक मैं कहूँ गीत है और एक बयान है, वो है फिल्म डेढ़ इश्किया से, और इसे अपनी सुरीली आवाज में बयान किया रेखा भारद्वाज ने। अगला जो गीत है वो अचानक बस किसी दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया और सोचा कि क्यों ना ये गीत मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो ये गीत आप जरूर सुनिए, इस गीत को आवाज दी है हरिहरन साहब ने।

0: चीजों के गुमशुदा हो जाने की रपट आप लिखवा सकते हैं, लेकिन कुछ गुमशुदगियां ऐसी होती हैं जिनकी खबर आपको भी नहीं होती। और अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म है जींस, उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगा।
1: लड़की थी या अजूबा?
2: अजूबा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। ठीक 9 बजे इवनिंग न्यूज आप सुन सकते हैं और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। 9:30 पर समय होगा कार्यक्रम चित्र भारती का। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
2: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नगर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
3: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। चार लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के सात स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी

0: केबिन, शाहबाद और वाडी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाए, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम प्रगति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है यह हमने करके देखा है।
4: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबीनगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
6: तो हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
7: I think close to 8 cargo planes have arrived.
8: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
7: The Indian government is looking at the issue of assistance very positively.
1: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाई, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000

लवर्स, ये आकाशवाणी है। अब उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात BGMFC का 71 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्रीडिश पर सुन रहे हैं।

से कुछ देर बाद विटामिन पेश है हमारे यहाँ से आज रात 1 बजे तक नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ देर बाद 9:20 पर आप सुनेंगे मबनी प्रोग्राम एक फनकार, 9:55 पर 9:45 पर खबरें नशर की जाएंगी, 9:55 पर आप सुनेंगे हेल्थ टिप्स, रात 10 बजे मार्केट मंत्र प्रोग्राम पेश किया जाएगा। प्रोग्राम होगा तामिर इरशाद, ये प्रोग्राम 11:30 तक जारी रहेगा। दौरान प्रोग्राम रात 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बरसगीर से, 11:45 पर बज़्म मौसिकी प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर का द्रुपद में गाया राग मालकोंस। शब के 12 बजे आलमी खबरें पेश की जाएंगी।

0: बारह बजे आलमी खबरें पेश की जाएंगी। क्लास की मौसी का प्रोग्राम होगा 12 बजे का 10 मिनट पर रोनो मजुमदार का फ्लूट बजाय राग रागेश्वरी सुनेंगे। सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शाम 12 बजे 30 मिनट पर नष्ट किया जाएगा। 12 बजे का 50 मिनट पर खबरें नष्ट की जाएंगी। रात 1 बजे उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात का अख्तिताम होगा। ये था हमारे यहाँ से आज रात 1 बजे तक नष्ट होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। ये आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लिए समय न पेश है हौसलों पर मबनी प्रोग्राम एक फनकार।
1: ढोलक की थाप दूर दराज के मोहल्लों तक सुनाई दी। जब उसे खबर मिली तो वो भी पहुंचा। खिड़कियों दरवाजों से छांक छांक कर उसकी नजर पकड़ने की कोशिश करता रहा। ढोलक की थाप दूर दराज के महलों तक सुनाई दी। जब उसे खबर मिली तो वो भी पहुंचा। खिड़कियों दरवाजों से छांक छांक कर उसकी नजर पकड़ने की कोशिश करता रहा। मेहंदी सजी दुल्हन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। एक सहेली दुल्हन के लिए चाय की प्याली लेकर आई। उसने तो मांगी नहीं थी। सहेली की आंख ने झपक कर कहा, पी लो, कप में पैगाम भी है। कप की तह में उसने अंगूठी रखकर भेज दी थी। अंगूठी हो

से पीली और उंगली में पहन ली। सहेली की मेहंदी लगी हथेली पर उसने लिखकर भेज दिया, उसी सनसेट पर मिलना जो पुल पर मिला था। लेकिन संदेशा पहुंचा नहीं, वो जा चुका था। पल भर में सब बदल गया और कुछ भी नहीं बदला, जो बदला था वो तो गुजर गया।

0: जबकि वोटर फहरिस्त में किसी तरह की इसलाह करने या ताजा जानकारी शामिल करने के लिए फॉर्म 8 दाखिल किए जा सकते हैं। कौमी राजधानी में जारी मौजूदा SIR के अमल के बारे में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने यह वजाहत की कि चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर ERO अलग अलग केस की बुनियाद पर समाप्त के दौरान नोटिस में बयान की गई दीगर दस्तावेजात पर भी गौर कर सकते हैं। आज नागालैंड में नागा यूनाइटेड विलेज चुनाव दिमा में दो रोजा शुमाल मशरकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 अख्ताम पजीर हुआ, जिसमें पूरे शुमाल मशरक से पॉलिसी साज माहरीन तालीम और मुंतजमीन यकजा हुए और उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज पर तबादला ख्याल किया। इस कॉन्क्लेव का इनेकाद तालीम की वजारत के साथ इश्तराक में नागालैंड हुकूमत ने किया था और इसका मौजू था कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 का निफाज, शुमाल मशरकी रियासतों के लिए नजरिया, चैलेंज और इम्कानात। आज इसकी अख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए त्रिपुरा की आला तालीम पंचायतों और इंतजामी उमूर के वजीर किशोर बर्मन ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसर निफाज पर जोर दिया ताकि शुमाल मशरक में तालीम को ज्यादा हुनरबंदी पर मबनी और मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाया जा सके। नेपाल के वजीर खजाना डॉ स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत ताल्लुकात के जरिए अपनी शराकतदारी को तकवीत बख्शने के इम्कान हैं। आज नई दिल्ली में तरक्की पजीर ममालिक के लिए तहकीक और इतलाती निजाम की जानिब से मुनक्किदा उभरते आलमी निजाम में भारत नेपाल ताल्लुकात का नए सिरे से तसव्वुर के मौजू पर एक बैन अल-अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए डॉ वाग्ले ने कनेक्टिविटी और इक्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने और दोनों ममालिक के दरमियान खातिरख्वाह इम्कानात को बरोकार लाने की अहमियत पर जोर दिया। आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बातचीत में नेपाल के वजीर खजाना ने कुदरती आफात से पहले की फौरी सरमायाकारी की जरूरत पर भी जोर दिया। आज जापान के मिज़ुहो पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम में 20वें एशियन गेम्स की शाह नारुहितो की जानिब से आगाज किए जाने के बाद शुरुआत हो गई है। दो घंटे की तकरीब में जापान के शाही कुनबे, खेलों से मुतालिक ओहदेदारान और ओलंपिक की एशियाई काउंसिल के सदर शेख जुआन बिन अहमद अस्सानी ने शिरकत की। 501 मेंबरान पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत दो मरतबा की ओलंपिक मेडल याफ्ता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने की। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को अपनी नए ख्वाहिशात पेश की हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वजीर आजम ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकरीरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है और 20वें एशियाई गेम्स बाज़ाब्ता तौर पर जापान में शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के शरियात। निशानीना पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स। प्रोग्राम के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से।
2: मैं डॉक्टर शिरीन नाज हूँ। मैं NKS हॉस्पिटल गुलाबी बाग में पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, जिसका मतलब होता है चेस्ट स्पेशलिस्ट। मैंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल जो मेरे जहन में आता है कि आम आदमी की हैसियत से फेफड़ों का काम क्या होता है?
2: फेफड़ों का काम होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना।
3: जैसे सांस लेना और सांस
2: छोड़ना दोनों ही बहुत जरूरी चीजें
3: हैं। जब तक सांस है तभी तक जिंदगी है,
2: तभी तक जिंदगी है।
3: अच्छा, इसमें फेफड़ों में बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं?
2: फेफड़ों की जो कॉमन बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा कॉमन है आस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस जिसे TB कहते हैं शॉर्ट में, निमोनिया, इंटरस्टीशियल लंग डिसीजेस और लंग की फाइब्रोसिस जो कि कोविड के बाद बहुत सारे पेशेंट्स के लंग्स में देखने को मिल रही है।
3: अब अगर इन बीमारियों को अलग अलग अलग बयान करें, जैसे आस्थमा आपने कहा, ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है?
2: आस्थमा के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स को या फैमिली में कोई भी आस्थमा की हिस्ट्री है तो आप ज्यादा प्रोन हैं उसके लिए। उसके अलावा इंडोर या आउटडोर एयर पॉल्यूशन जो कि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और

0: डस्ट है, एलर्जेंस है, मोल्ड्स हैं, फंगस हैं। जैसे हम कारपेट बिछाते हैं उन पे बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जो हम शायद उतना क्लीन नहीं कर पाते हैं, वो हमें दिखते नहीं है बट दे आर रियली इंजूरियस टू आवर लंग्स।
1: अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है डॉक्टर साहब, कहते हैं कि सांस की नली की एलर्जी हो गई।
0: हाँ वो यही है, अस्थमा में मोस्ट कॉमन कॉज एलर्जी ही है। जो अक्सर पेशेंट आते हैं कि एलर्जी हो गई, एलर्जी हो गई, सांस फूल रहा है, खांसी आ रही है, चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, सारे अस्थमा के ही फीचर्स हैं।
1: इसके अलावा टीबी एक बहुत बड़ी, किसी जमाने में तो बहुत बड़ा इशू था टीबी, लेकिन धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे हैं।
0: टीबी तो एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये एक ऐसा संक्रमण है जिससे हमारे लंग इन्फेक्ट हो जाते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स होता है, उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। और इसमें इसके जो लक्षण होते हैं, फीवर आना और खांसी आना, लंबी खांसी या खांसी में खून आना, वजन कम होना, भूख कम लगना, इन सबको हमें कभी इग्नोर नहीं करना है। ये सारे फीचर्स अगर हैं जिसमें सबसे पहले खांसी और बुखार होगा, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वजन कम होगा, भूख कम होगी। जब भी लंबी खांसी और बुखार हो हमेशा एक्सरे करवाना चाहिए और बलगम की जांच। फिर अगर उसमें कंफर्म हो जाती है तो टीबी की दवा शुरू होती है। सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, डॉट्स प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग टीबी की दवाइयां देते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। इसके मेन कारण क्या होते हैं, आजकल घर ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, तो वो भले ही घर छोटा हो बट इट शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड। और दूसरा कारण कुपोषण है, इतनी पॉपुलेशन है, सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो प्रोन है ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के लिए। उनकी इम्यूनिटी किसी वजह से वीक है और वो किसी ट्यूबरक्लोसिस के मरीज के कॉन्टैक्ट में आ गए तो उन्हें हो जाएगा। इसलिए हमें अपने पोषण का, या हम मास्क में, जैसे हम कोविड में मास्क लगा रहे थे, वी आर यूजिंग मास्क, तो हम इससे भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं।
1: अच्छा, अगर किसी का सांस फूलता है तो ये कैसे पता चलेगी हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, इसका कुछ
0: इसका है सिम्टम्स? क्योंकि आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, सांस दोनों तरीके से फूलता है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो चाहे लंग की हो। तो उस सूरत में अगर हमें देखना पड़ेगा क्या रीजन है, किस वजह से सांस फूल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आस्थमा या सीओपीडी का पेशेंट आता है तो हम स्पायरोमेट्री कराते हैं, जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उसकी चेस्ट में वीज मिलती है, जो साउंड सा आपने सुना होगा, वीजिंग सी होती है, तो वो चेस्ट वाले कॉजेज होते हैं अगर पीएफटी में कोई प्रॉब्लम आती है। और जिनके हार्ट की वजह से होगी वो कहेंगे कि हमें लेटने में सांस फूल रहा है, और जो लंग वाले कहेंगे हमें चलने में ज्यादा सांस फूल रहा है। तो अगर कोई पेशेंट कहे कि मुझे लेटते टाइम ज्यादा सांस फूलता है तो हमें उसका इको, ईसीजी, ये सारे टेस्ट करके हार्ट डिसीजेज रूल आउट करनी बहुत
1: जरूरी। अच्छी बात है आपने बताई, बहुत अच्छी बात बताई और बहुत इन्फॉर्मेटिव बात है। अच्छा, और आपने एक और दो बीमारियां और बताई, उनकी वजूहत बताई कैसे होती है।
0: एक बीमारी है सीओपीडी, जिसका फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसका मोस्ट कॉमन कॉज है स्मोकिंग, बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं। एक एक्टिव स्मोकर्स होते हैं और एक पैसिव। फॉर एग्जांपल, कोई पी रहा है और आप बैठे हुए हैं तो आपको उस स्मोक को अवॉइड करना है, अदरवाइज
1: वो
0: भी उतना ही नुकसान है, क्योंकि आप भी वही इनहेल कर रहे हो।
1: तो इसके अलावा अगर हमारे लिसनर जो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो ये चाहते हैं कि अपने फेफड़ों के साथ सेहत के साथ रहे, एक्सपर्ट और क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप?
0: अपना एक अच्छा रूटीन बनाए, अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है और फ्रेश एयर बहुत जरूरी है हमारे लंग्स के लिए, लंग्स को जिंदा रखने के लिए फ्रेश एयर लेनी है। एक्सरसाइज हमारे रूटीन में होना चाहिए और मॉर्निंग एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर लंग्स।
1: दोस्तों, ये थी आज हमारे साथ डॉक्टर शेरी नाज और आप गुफ्तगू कर रही थी फेफड़ों की आम बीमारी और उनके इलाज के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आप सुन रहे थे कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से, हेल्थ टिप्स प्रोग्राम के तहत। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के अंशरियात लीजामिन पेश है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with business and market. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
0: वेलकम शरद.
2: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद राजेश, सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे, मगर आइए उससे पहले सुने सुर्खियां.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन फॉर सिक्स्थ कंसेक्यूटिव वीक. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ. And US stock market indices wrap up week on mixed note.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खोल रहे हैं. और अमेरिका के शेयर बाजार इस सप्ताह मिश्रित रुझान के साथ बंद हुए.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं कि सप्ताह के अंदर अंदर किस तरीके से हमारे शेयर सूचकांकों ने व्यवहार किया, मार्केट का हाल कैसा था. तो प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई. भू राजनीतिक तनाव, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के माहौल को लेकर चिंताओं ने निवेशकों को सतर्क रखा. इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 487 अंक यानी लगभग 0.7% गिरकर 74,295 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 52 अंक यानी 0.2% लुढ़ककर 23,346 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान लगभग 0.2% की गिरावट आई. क्षेत्रीय स्तर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रेल्टी और आईटी क्षेत्र में गिरावट रही. वहीं एफएमसीजी, हेल्थ केयर और मेटल में बढ़त दर्ज की गई. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 33 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.88 रूपये पर बंद हुआ. और इसी बीच वेस्ट बंगाल से हमारे साथ बबलू जुड़ रहे हैं. बबलू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: भारत में
1: बबलू जी, आपकी तरफ से थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, आप प्लीज अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में आकर के हमसे बात करिए.
3: मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: जी.
3: हमारा मेरा सवाल ये है मैडम, भारत में रियल्टी सेक्टर जो भी बहुत डाउन चल रहा है, उसका क्या फ्यूचर है आगे में? क्या रियल्टी सेक्टर आगे और अच्छा करेगी या फिर वो बुरा हाल हो जाएगा रियल्टी सेक्टर का इंडिया में?
2: बबलू, देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर का आप पूछ रहे हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर पूरे देश में बबलू यूनिफॉर्मली बिहेव नहीं करता है. हम पूरे देश को कहें कि वो एक साथ, आप जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हैं, हो सकता है आप जहां रहते हो उस क्षेत्र में एक सैचुरेशन पॉइंट आया हो जिसकी वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि जो लैंड है, अभी भी प्राची और राजेश को भी बताना चाहूंगा, जो लैंड है जहां पर खासकर टाउन प्लानिंग हो रही है
1: जी,
2: जहां पर शहर एक्सपैंड करता है, वहां पर अभी भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए वो साबित हो रहा है. कहीं कहीं जो अपार्टमेंट्स हैं जहां पर सप्लाई ज्यादा है बबलू जी, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक स्टैग्नेंसी आ गई है. तो ये इसको हम यूनिवर्सली पूरे, क्योंकि आकाशवाणी तो पूरे देश में जाता है, तो मुझे लगता है मैं कुछ ऐसी बात बोलूं जो कि पूरे देश के लिए लागू हो तो वो बेहतर रहेगा। तो इसको हम यूनिवर्सली पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं कह सकते। ऐसे ही मैं उदाहरण के तौर पर आपको बबलू बताऊं कि जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है, जो बहुत महंगे वाले घर होते हैं, उनमें कहीं रिसेशन नहीं है। बाकी ये आपको मैं इसका सिद्धांत बता देता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर कोविड के बाद से काफी बूम किया और उसके बाद इसमें एक प्लेटो फेस आता है, ये इसकी साइकिल है, धीरे ऊपर जाता है, फिर इसमें प्लेटो फेस आता है, फिर उसके बाद थोड़ी करेक्शन होती है। तो इसको हम साइक्लिकल बोलते हैं, ये मतलब एक एक एक पूरा का पूरा साइकिल है, पहले ऊपर जाएगा फिर फ्लैट होगा। तो कुछ हो सकता है कुछ समय के लिए आपके जिस इलाके में आप हैं वहां पर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप निवेश की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो वैसे तो निवेश अपने आपके जो सलाहकार है उनसे करना चाहिए, पर आप किसी दूसरी स्टेट में जहां पर शहर चल रहा है वहां पर आप देख सकते हैं, शहर चलता है, आपको शायद जानकारी होगी, शहर भी चलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग जाते हैं, अरे यहां तो मॉल बन गया, यहां तो मार्केट बन गई, तो पहले था नहीं। तो मुझे लगता है उसको उस दृष्टि से आप इसको देखें और किसी दूसरे अन्य जगह पर आप ट्राई करें, मे भी आपका नजरिया बदलेगा। बाकी ओवरऑल आपके इलाके में आपकी बात सुनकर लग रहा है ऐसे ही कि पर कुछ समय लगता है फिर इसको रिकवर करने।
0: जॉइनिंग अस फ्रॉम न्यू दिल्ली इज अमित झा। अ वार्म वेलकम अमित। हेलो अमित, कैन यू हियर अस? आई थिंक वी हैव लॉस्ट टच विद हिम। व्हाट?
4: हेलो
0: यश। या अमित
4: सर, आवाज आ रही है आपको?
0: बिल्कुल आ रही है, आप सवाल पूछे अपना।
4: हाँ, सवाल सर। सर नमस्कार सर।
2: हाँ नमस्कार अमित
4: सर। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लीजिए एनएससी या बीएससी का, नेक्स्ट में रोल ओवर हो रहा है, रोल ओवर सर आप जानते हो डेरिवेटिव का, तो रोल ओवर अगर ज्यादा हो रहा है तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? और दूसरा सर, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो ये ओपन इंटरेस्ट क्या संकेत बताते हैं सर? धन्यवाद सर।
2: ओके, चलिए पहले आपने रोल ओवर का पूछा अमित, ये डेरिवेटिव्स में होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसको जब जो एक्सपायरी डेट होती है उससे हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ज्यादातर अमित देखा गया है, अगर मैं अपने तजुर्बे से बात करूं तो रोल ओवर जब होता है, जब जिस तरफ आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट डेट पर आपको उसके अनुकूल आपको नहीं लग रही है मार्केट, तो फिर आप उसको रोल ओवर करना चाहते हैं, वरना क्या होता है आपको फिर लॉस बुक करके बाहर आना पड़ता है। तो रोल ओवर यही बताता है, या फिर एक और केस में रोल ओवर होता है जहां पर जो ट्रेडर्स होते हैं बहुत बुलिश या बहुत बेरिश होते हैं, उनको लगता है कि अभी तो पूरा मुनाफा नहीं आया, अगले एक्सपायरी डेट पे और ज्यादा मुनाफा आएगा, ये भी कारण होता है रोल ओवर का। दूसरा आपने ओपन इंटरेस्ट पूछा, ओआईएस को बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट बताता है कि किसी पर्टिकुलर कॉल पर, किसी पर्टिकुलर लेवल पर इस वक्त कितने ट्रेडर्स का ध्यान है, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एक पर्टिकुलर लेवल पर बिल्डअप हो रहे हैं। क्योंकि आप ओआई पूछ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं अमित कि आप जानते हैं इसके बारे में कि कैसे जो ऑप्शन चेन होती है, अगर मैं ऑप्शन चेन के उदाहरण से लूं तो चेन में एक लेवल पर अगर ज्यादा ट्रेडर्स का वॉल्यूम बन रहा है उसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें यह बताता है कि क्या इस लेवल पर बहुत सारे लोगों का इस समय ध्यान है, तो उसको फिर आप एक पैमाना मानकर आप अगला ट्रेड कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल बात पूछी अमित ने, मुझे मेरे लिए थोड़ा सा रेवलेशन है कि अमित जो है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं, बहुत रेगुलर कॉलर है, पर थोड़ा अमित संभल के करा करिए, ये बहुत टेढ़ी खीर होती है और कभी कभी अक्सर धोखा भी दे जाती है, तो लॉट ऑफ पीपल बर्न देयर फिंगर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं अमित कि आप इसको ख्याल रख के करेंगे, ध्यान से करेंगे, और ये भी उम्मीद रखता हूं ओआई और रोल ओवर आपको दोनों समझ आ गया होगा।
1: नई दिल्ली से हमारे साथ सतपाल जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: हेलो
1: जी सतपाल जी, अपना सवाल पूछिए।
5: हाँ कॉलेज जी और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
5: मैं कॉलेज जी की वीडियो भी देखता हूँ, गोल्ड वाली वीडियो के लिए देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ
2: जी।
5: और मेरा क्वेश्चन ये सर, अभी जो लड़ाई चल रही है यूएस और ईरान की, इसके बीच में अभी गोल्ड का क्या सिचुएशन रहेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अब कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा आने वाले दो साल में, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप? थैंक यू।
2: चलिए आपका पहला सवाल, यूएस ईरान की लड़ाई चल रही है तो गोल्ड का, गोल्ड में तो वैसे ही सतपाल जी बहुत हलचल चल रही है आजकल, ऊपर नीचे, पर अभी यूएस के फेड ने रेट्स बढ़ाए तो गोल्ड ने उसको अच्छा डाइजेस्ट किया, उसको पचाया, और गोल्ड अभी जो हमारी फ्राइडे को रात की जो सिचुएशन है उसमें कॉमेक्स में न्यूयॉर्क में काफी बाय के कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक तो सतपाल जी गोल्ड की अच्छी है, काफी शाइन का पहले ही बहुत चमकता है गोल्ड तो, और मुझे लगता है चमकने वाला है, और आपने लॉन्ग टर्म नजरिया रख के चले, पर एक डिस्क्लेमर जो शुरू में राजेश ने पढ़ा था उसका ध्यान रख के। और दूसरा आपने पूछा कौन सा सेक्टर मिड कैप या लार्ज कैप में चलेगा, मार्केट्स के लिए यू नो मैं आई एम श्योर हम डिस्कस करते हैं इसको बाद में।

0: जियो पोलिटिकल सिचुएशन है सतपाल जी बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है मार्केट में भी। बाकी आप डिफेंस और एनर्जी सेक्टर इस दो के आप नजर रख सकते, क्योंकि आपने सेक्टर पूछा है तो मैं बता रहा हूं। बाकी मार्केट में बहुत फूक फूक के पग धरना जिसको कहते हैं वो इस समय सिचुएशन है जी।
1: नई दिल्ली से हमारे साथ संजीव जुड़ रहे हैं। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार कोहली साहब, नमस्कार टीम मार्केट मंत्रा।
0: नमस्कार संजीव, बताइए।
2: हाँ कोहली साहब, आपके आने का बहुत इंतजार रहता है हमें।
0: माय प्लेजर सर, मुझे आपसे बात करने का इंतजार रहता है, बताइए।
2: थैंक यू कोहली साहब, एक सवाल है। 2007 में हमने एक पेमेंट लिंक्ड फ्लैग में इन्वेस्टमेंट किया था
0: जी,
2: ज्वाइंटली
0: जी।
2: अच्छा, वो प्रोजेक्ट तो थोड़ा डिले हो गया, मगर उसका ओवर द ईयर कुछ 4-5 साल पहले हमें उन्होंने सो कॉल्ड पोजेशन दे दिया।
0: अच्छा,
2: पोजेशन देने के बाद उसकी जिस्सी भी हो गई
0: जी
2: उस एरिया में कंसर्न
0: जी।
2: अब उसको अगर हमने बेचना है तो उसका व्हाट यू कॉल फ्रॉम डेट ऑफ पोजेशन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से वो कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देना जाएगा, कैसे होता कैलकुलेशन?
0: देखिए संजीव जी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं कि पहले कुछ लोग रजिस्ट्री मानते थे, कुछ पोजेशन मानते थे, पर जनरली जहां बिल्डर की अलॉटमेंट होती है तो ज्यादातर जो केसेस हैं कोर्ट्स में और ट्राइब्यूनल में वो जिस डेट को आपको अलॉटमेंट होता है उस डेट से आपका मालकियत मान लेते हैं। तो आपको जब संजीव जी इस पे जब लेटर मिला होगा अलॉटमेंट का, तो आप उस डेट से मान के चलेंगे, तो आप मेरे ख्याल क्योंकि 2007 का है तो मुझे लगता है आप शायद इंडेक्सेशन यूज करना चाहते होंगे, देखना चाहते होंगे, पर आपको ये पता होगा कि इंडेक्सेशन यूज करते हैं तो 20% पड़ता है, और अगर आप बिना इंडेक्सेशन के करें तो 12.5% पड़ता है। तो मैं संजीव आपको यह भी सलाह दूंगा कि दोनों ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करके देखें, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, पर आप डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फ्लैट से आप इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, मुझे ना जाने ट्राइब्यूनल में किसी में रजिस्ट्री बोला है, किसी में पोजेशन बोला है, किसी में अलॉटमेंट बोला है, पर ज्यादातर कंसेंसस यही निकला कि इसको हम डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेते हैं जी।
3: Rama Prasad joins us from Bengaluru. A warm welcome, Mr. Prasad.
4: Hi, good evening, Market Mantra. This is Rama Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Priya ji.
1: Hello, sir.
4: Sharad ji, two questions.
0: Yes.
4: The first question is a lot of IPOs coming, from the leading companies.
0: Yeah.
4: One IPO is getting closed on the 21st. I don't want to name the company.
0: Yeah.
4: At least in this volatile market, is it worth investing in this kind of a scenario? Is it worth in these leading companies? My second question is, this is a continuation of the question which I've asked about 2-3 weeks back.
0: Yeah.
4: So for the profit booking, now I am holding 30% of the defense sector, 20 each in banking, IT and FMCG.
0: Okay.
4: The balance 10 are in automobile and other few in this thing.
0: Okay.
4: In this, everything is in the profit, in the very good margin, except for the IT sector.
0: Okay.
4: So, which companies to be sold and how much to be sold in terms of percentage? Thank you. These are my two questions.
0: Okay, although Mr. Prasad, you have not named the companies, but the questions are quite specific. But nevertheless, I'll try and answer. See, IPOs. I was reading a report on the recent IPOs which came, and it so came out that almost 4 or 5 of the IPOs are sort of listing at premium. Not all of them, you know. So therefore, I feel that you have to be very selective. So I can't generally, Mr. Prasad, say that what should, because some of the IPOs are quite attractive also, whereas some of them may not be good enough. Some of them are not getting listed at their price band; they are getting listed below the issue price. So you have to, I think in an IPO there needs to be a tick box, a checklist. You know, who's the promoter, what are the prospects, and so on. So, and then of course. The market sentiment at that time also governs the listing price. So, a general view about IPOs, Mr. Prasad, cannot be given, because I'll have to go into specific, which we don't name, as you rightly pointed out. Second is, you spoke about defense sector and your IT sector. So therefore, I would not recommend, Mr. Prasad, booking a loss in IT sector. However, I would recommend booking some profit in the other sectors, like you mentioned about defense, you mentioned about FMCG, banking. So I may not hesitate to say that, you can probably book profits. And I feel the situation in the market is such that if you take the

0: prophet's home, you are happy. You should be a happy man. You should be a lucky man, because a lot of people around the world at this point of time are facing this problem. They are not able to book prophet. So therefore, I would recommend, how much prophet to book? See, there are certain questions with Rajesh and Prachi would agree that it depends upon your overall portfolio, your requirements, your cash flow requirements, how long, what is your risk taking appetite, what's your age, what's your remaining portfolio like. So, you know, Mr. Prasad, I hope you understand that these are the things which we need to know to be able to decide that how much to exit, how much to keep, because it depends. If you don't need the money, maybe I'll say keep it for a very, very long time. But then the problem is, if I say for 10 years, then you might say, I mean, why 10 years? That's a very long period. Therefore, I will recommend in profits, wherever you are in profits, you book the profits. And wherever you are in loss, I think it is worth waiting, because as it is, you are in loss. Maybe you'll add a little more to the loss. But if you book the loss now, your loss is confirmed. So if the market rises, market is going to rise. It is right now under a depression, but then it will rise definitely in the times to come, hopefully.
1: बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए. टिंकू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आप अपना सवाल पूछिए.
0: पूछिए टिंकू जी.
2: हेलो.
0: हाँ जी, पूछिए, आवाज आ रही है आपकी.
2: सर, मैं ये पूछना चाहते हैं, मैं किसी कंपनी में ऐसी मैं काम करते हैं लेबर में, और मेरा सैलरी जो भी आता है मेरे कैश में मिल जाता है, ना कोई चेक है ना कुछ है, और किसी कंपनी को मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, भविष्य में ऐसा कोई दिक्कत आ गई फैमिली में, इसीलिए तो मैं आम आदमी से.
0: मुझे लगता है इनसे संपर्क टूट गया, पर इन्होंने अपनी बात ऑलमोस्ट कह दी. कैश में इनको सैलरी मिलती है, और शायद किसी में डेली कॉन्ट्रैक्ट टाइप शायद काम करते हैं, या सैलरी मिलती है. हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छा विचार है टिंकू जी का, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का. मुझे लगता है इसके लिए आपको, देखिए, अगर तो आप कंप्यूटर सेवी हैं तो आप ऑनलाइन जाके हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है, पर अगर आपको उसमें थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी अपने इलाके में जो आपके कोई एजेंट है उनसे आप संपर्क करें, और संपर्क करके वो आपकी मदद करते.
1: दिल्ली से हमारे साथ सतीश जुड़ रहे हैं. सतीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग सर. कोहली साहब,
0: गुड इवनिंग
3: सर. मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर, ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में कुछ कर नहीं रहे, डेढ़ डेढ़ साल तक शेयर अटके रहते हैं
0: जी,
3: और ये लास्ट डेट क्या है सर, पेपर शेयर फॉर्म की कन्वर्ट कराने की डीमैट में? थैंक यू सर.
0: लैब ग्रोन डायमंड्स, सतीश जी, अच्छा फ्यूचर है. मुझे निजी तौर पे एक दो इनॉग्रेशंस थी लैब ग्रोन डायमंड्स के शोरूम्स की, वहां जाने का मौका मिला, और मैंने देखा वाकई में वो देखने में ओरिजिनल डायमंड की तरह दिखाई देते हैं. बहुत अच्छा भविष्य है. जिन लोगों को डायमंड का शौक है और वो ओरिजिनल डायमंड नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ देख सकते हैं.
4: प्राइस वाइज दे आर नॉट वेरी चीप.
0: नहीं, फर्क तो है, उतने महंगे तो नहीं है, इतने महंगे कैरेटेज पे डिपेंड करता है. और दूसरा इनका एक और सवाल था सतीश जी का, कि हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का इनका काफी समय से सवाल रहता है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में आपकी शिकायत बहुत दिन से बनी हुई है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक दो बार वहां होकर आए. हम जहां इस समय बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड है, उनसे संपर्क करें. नॉर्मली इतनी देर लगती नहीं है, क्योंकि काफी वहां पर प्रणाली सुदृढ़ है इस समय, पर मुझे नहीं पता किस कारण से आपका मामला वहां अटका हुआ है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उनसे तुरंत संपर्क करें. और एक ई निवारण ऐप है, सीपी ग्राम्स करके ऐप है, उनपे भी आप डालें, वहां पर शिकायत किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ हो तो आप डाल सकते हैं. तो कोशिश करें सतीश जी, हम तो यही कह सकते हैं, कोशिश करें. अब ये तो स्पेसिफिक मामला हमें पता हो तो हम उसकी गहराई में, तह में जाके आपको सलाह दें, तो आप ट्राई करिए, उम्मीद करते हैं कि काम बनेगा.
1: अन्य खबरों में, श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव आयुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं. इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास यह भी सुनिश्चित करना है कि देश के युवाओं की शिक्षा और कौशल बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हों. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त

0: व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: मुंबई से हमारे साथ SJ पवार जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो
0: जी,
2: मैं सीनियर सिटीजन हूँ
3: जी।
2: हाँ, मेरा इंटरेस्ट इनकम 2 लाख है
3: जी,
2: और शेयर बेस्ट में 3 लाख कमा रहा हूँ
3: जी,
2: प्रॉफिट हुआ
3: जी।
2: तो मुझे टैक्स शेयर पे गिरने है या नहीं, क्योंकि 12 लाख का तो अभी ये हुआ ना लिमिट मैक्सिमम
3: जी,
2: उस बारे में जानकारी चाहिए।
4: देखिए पवार साहब, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में जो शेयर्स का गेन होता है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपका मैं अगर कैलकुलेट करके देखूं तो 4 लाख से ऊपर जा रहा है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो न्यू रेजीम में है। तो क्योंकि वो पवार साहब 4 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4 लाख से ऊपर में, और राजेश और प्राची को भी बताऊंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है, बेसिक एग्जेम्पशन में कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो कवर हो जाता है, पर क्योंकि कैपिटल गेन पर एक स्पेशल रेट पर टैक्स लगता है। तो इसलिए अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन से ऊपर जा रहे हैं तो भले ही आप 12 लाख से कम है तो आपको फिर उसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं पवार साहब आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि कैपिटल गेन पर जो टैक्स लगता है वो स्लैब के हिसाब से नहीं लगता है, वो अलग रेट पर लगता है। तो इसलिए आपको मेरे विचार से पवार साहब आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए जी।
0: अन्य खबरों में, नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इस प्रारूप के अंतर्गत 2000 रूपये तक के UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा। इस प्रारूप का व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन के लिए UPI पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा, चाहे कितनी भी रकम ट्रांसफर की जाए। 75,000 रूपये और उससे ज्यादा के लेन देन के लिए MDR की सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 300 रूपये होगी। 2,000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लागू किया जाएगा। महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि MDR क्या है, आप इसे विस्तार से हमारे श्रोताओं के लिए आप समझाइए।
4: मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं, और ये वेंडर के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। पहले भी था, क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज करते हैं उसमें 1.5%, 2%, 2.5%, कुछ बैंक तो 2.5% तक लेते हैं, तो उसमें वेंडर को एक चार्ज देना पड़ता है जो कि उसको वो सुविधा ये ग्राहक को देता है, और ग्राहक बहुत सारे नए ग्राहक उसको मिलते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो लेकर व्यक्ति आता था
0: जी,
4: तो उसके पास कैश नहीं होता था, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट के जरिए बैंक एक चार्ज लगाते हैं। अब कुछ इसी प्रकार का UPI पे अब ये नया आया है, क्योंकि 10 साल से UPI चल रहा था, और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसमें नई नई फीचर्स लाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको मॉडर्न बनाने के लिए एक बोझ पड़ रहा था। पूरा की पूरी जो प्रणाली थी वो प्रणाली स्वचालित होनी चाहिए, उसमें 18,700 करोड़ रुपए बीच में प्रणाली खर्च कर रही थी, 2,000 करोड़ के आसपास जो है वो सरकार के भी खर्च हो रहे थे, और मुझे लगता 10 साल हो चले थे, तो क्योंकि 10 साल हो चले हैं तो इसलिए उस पर अब ये MDR लगाया गया, और उम्मीद कर रहे हैं कि वेंडर्स इसको देंगे। प्रावधान तो यही है प्राची, कि इसको वेंडर्स देंगे अपने पास से, उनका देना बनता है, और नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा हुआ है
0: जी।
5: Major US indices displayed a mixed performance yesterday. The Nasdaq Composite Index rose 0.4% and the S&P 500 added 0.2%, led by gains in semiconductor stocks. Conversely, Dow Jones Industrial Average dipped 0.2%. Meanwhile, markets wrapped up a volatile week on a mixed note as investors navigated rising treasury yields, elevated oil prices, and Federal Reserve's rate hike. For the week, the Dow posted third straight weekly decline, sliding 1.7% to mark its worst performance since March. The S&P 500 fell marginally by 0.1%. In contrast, Nasdaq rose 0.7%.
0: दिल्ली से हमारे साथ RS दहिया जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
6: नमस्कार, कोहली जी को स्पेशल नमस्कार।
4: नमस्कार दहिया सर,
6: मेरा क्वेश्चन ये है, कोहली साहब से कि स्मॉल इन्वेस्टर्स आर गोइंग थ्रू वेरी बैड टाइम फॉर लास्ट 1.5 इयर्स.
4: जी,
6: व्हेन विल आर निफ्टी इंडेक्स एंड बीएससी सेंसेक्स विल रीच इट्स ऑल टाइम हाई लेवल और समवेयर क्लोजर टू दैट, मे बी प्लस 15% फ्रॉम हियर.
5: Wishing you.
4: All right. Well, if wishes were horses, we would have ridden them, as they say. Dhaiya Saab, it is true that for it's been almost 2.5 years. You rightly said that, you know, we've been the nicest. But I feel that people who are, you are a very mature investor, Mr. Dhaiya, and I feel these are the cycles which normally come in any investor's, you know, overall career, I would say. Overall span, should I say. So I think let's keep our fingers crossed, and we need to see that the geopolitical and geoeconomic situation around the world, Mr. Dhaiya, is not letting the market go up. The Indian parameters are fine, but then somehow the markets are looking at you know, the global picture, the global you know, crude oil, bond yields, crude dollar index, and so on and so forth. So let's hope for the best. I think once the war ends and Strait of Hormuz and Bab al-Mandeb, you know, these routes open, the crude oil prices cool down, and we will see the market. So I think patience is a virtue, I would say. So aapne itna dhairya rakha hai Dhaiya Saab, to thoda sa aur dhairya rakhe, baki aapke muh mein ghee shakkar 15% kab badhegi, hum to kehte hain ki jaldi badhe, aapki baat, aapke vachan satya ho.
5: US President Donald Trump has signed a law expanding sanctions against Russia and providing for tariffs of up to 100% on major buyers of Russian oil and gas, while extending US sanctions authority against Iran for 5 years. The White House said the measure authorizes and expands statutory sanctions, tariffs, and prohibitions on Russia. Global crude oil prices displayed mixed trend this week. During the week, Brent crude November futures dropped 0.7% to settle at $103.87 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures added 0.2% to end at $100.30 per barrel. Oil prices eased in the last few trading sessions as markets anticipated that the closure of Saudi Arabia's key pipeline will have a smaller impact on supplies than initially feared.
0: शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो समय की सीमा है भाई
4: जी,
0: तो आज हम इतना डिस्कस कर पाए जो कि बहुत ही अच्छी बात है.
5: थैंक यू शरद, बहुत
0: धन्यवाद आपका.
4: थैंक यू सो मच.
5: बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन फॉर 6th कंसेक्यूटिव वीक. प्राइम मिनिस्टर सेज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर ओपनिंग न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंट्रीज यूथ, एंड यूएस स्टॉक इंडिसेस रैप अप वीक ऑन मिक्स्ड नोट. दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. टिल टुमारो, गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
7: यू आर लिसनिंग टू अ रिपीट ब्रॉडकास्ट ऑफ टुडेज मार्केट मंत्रा प्रोग्राम, ओरिजिनली एयर्ड एट 6:30 PM.
8: 7 आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा, ये आकाशवाणी है. आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात. जैसा मेरा पेश है फरमाइश फिल्मी नफों पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद. तमाम सारे की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब.

शमीम, आप पतंग फिल्म का नगमा सुन रहे थे, लता मंगेशकर का गाया हुआ। बोलों को लंबन किया राजेंद्र कृष्ण ने और मौसीकी सजाया चित्र गुप्त ने। फरमाइश आप सब की जानिब से हमें मौसूल हुई। अकोट से विनायक बेंडे, मल्ला बेंडे, शुभम बेंडे और ये फरमाइश तेलंगाना निजामाबाद से मौसूल हुई। शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा जुनेजा और इनके घर के और भी अफराद हैं। बलराम गेट कासगंज से मुस्लिम सैफी बैग, जैबुन निशा बेगम, सद्दाम सोनी और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, राजेश। और ये फरमाइश हमें इरसाल की है कुमारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायन हसन, नाजिया इब्राहिम ने। आनंद जोशी, फाल्गुनी जोशी, ध्रुवी जोशी, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से फरमाइश इरसाल करते हैं और उनके साथ इनके एक और साथी भी हैं। फरमाइश इरसाल किए हमें कादरगंज रोड गंज डुडवारा से शादाब शमशाद, अंदलीब खानम, सारा फातिमा शेख ने। रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, फलतबसम शेख, बेबी अलिशबा शेख, अभिजीत गोहकर, राही सरिता गोहकर, अर्जुन गोहकर, मेहरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश करते हैं। जयराज परोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और जैस्मीन भट्ट इनके साथ हैं। नई दिल्ली उत्तम नगर से बुधराज कोलवा, खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी और भोपालगढ़, राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कबीर चीपा, पूजा परिहार, मनोज जेठवा, हर्ष जेठवा, बुराव के नगर श्रीरामपुर से फरमाइश उन्होंने इरसाल की है। ये फरमाइश में मौसूल हुई है रामगंज खंडवा से विजय मोहबिया, कविता मोहबिया और पेंटर बाबू की। पुरानी बाग पसलिया

मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी और जैद कुरैशी। गर्भवती सहेलियां शामिल हुई अमिता बानो, आशा भदौरी और सईदा बानो। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, राजू ताम्रकर और ढेर सारे दोस्त साथी अहबाब वालदेन। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, चत्रो जैन, बसंत सिंह चैन, राजकुमार कुलदीप अध्यालिका डबवाली से इरसाल करते हैं फरमाइश। गांव ही परसोगा तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सारा बानो शेख, करिश्मा शेख को हमने शामिल किया। देवरी भटापारा से के आर साहू, कन्हूलाल रजक और मुरली, साथ में और भी इनके कुछ साथी शामिल हुए हैं। हाजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान, मंजू अशरफ, जेल रोड शाम रेडियो क्लब दुरमपुर, दुरमपुर चकाई से लाल बाबू, शमा शाहीन, शगुफ्ता शाहीन। दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा को हमने शामिल किया है। आइए अब आपको मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का दो गाना सुनवा दें। आवाजें गीता दत्त और मोहम्मद रफी की, नवानिगार मजरूह सुल्तानपुरी, मौसीकार ओपी नैयर और फरमाइश आप जनाब की। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब इनके साथ हैं। ये फरमाइश रामन खिराड़े, सारी का खिराड़े और सोनाली साथ में खिराड़े अहले खाना। फरमाइश साल की इन्होंने अभाई खेड़ा वाशे महाराष्ट्र से। राकेश पेट्रो, सानिका पेट्रो कोलकाता से शामिल हुए हैं। मसविटल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से। टीजी मल्होत्रा, रीति मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। ये फरमाइश हमें मुमताज मोहल्ला, बचिया से इसराइल अंसारी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। पश्चिम तो गंडवाड़ा से मास्टर अली मिर्जा सिद्दीकी, मास्टर मनोहर हुसैन अंसारी भाई नई मिर्जा सिद्दीकी। और ये फरमाइश हमें इस साल की एक हफ्ते कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद कासिम, मोहम्मद हनीफ और पेंटर बाबू ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा भी शामिल हुए हैं। शास्त्री नगर बीच शहर से किशन सबकाल, आशा सबकाल और विशाल सबकाल। ये फरमाइश मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमल निशा, शबिस्ता और भी साथी दोस्त अहबाब दिगर अफराद। गांव वाराणसी से राजकुमार दुद्दी, पुष्पेंद्र कुमार दुद्दी, प्रमोद कुमार दुद्दी शामिल हुए हैं। यह फरमाइश हमें गुंजाला बीड महा से नारायण देव घुगे, सुनंदा घुगे, महेश घुगे। बेताब रेडियोस क्लब पटना, न्यू मार्केट बया पटना व्यास से वसीम अकरम सौरिया खातून और गुड़िया खातून। अनारकली बाजार जगराव से कमर पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा। और ये फरमाइश हमें किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी माधुरी, माधुरी किरण की मौसूल हुई। समीरा खान, कामरान खान, बेटी हुरैन अजीम, मोहल्ला पठान कुरावली से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। यवतमाल से अनिलुषा ब्रांडे, अनुश्री धरुण श्री ब्रांडे और मध्य प्रदेश भोपाल से चंपालाल दुबे, अनंत और दर्शिका दर्शित। तो ये शामिल आप सबकी पसंद पर ये दोबारा आप सबकी खिदमत में है।

पाटे मंदाके पाटे सुशील कुमार कैथल हरियाणा से जे वीरसी ठाकुर अनिल शर्मा और ये फरमाइश फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल मोगा अफसरी मोगा और अहमद ग्राम शहरपुर मटकली जिला बरेली से चारों अंसारी फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमद इदरीसी और उनके साथ ढेर सारे साथी जरूर जरूर से बाबू साहब वडोदरा आदि चर्वे चंद्र प्रभा वरोड़े और मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपन तायड़े पी एस नावकर वसंतराव भोज ने ये फरमाइश हमें इस साल की है। दादापुर और गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान सैमन नवाज और हसन नवाज ने ऐसा में अब ज्वेल थी फिल्म का नाम आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ नगमानिका मजरू सुल्तानपुरी मौसीकार सचिन देव बर्मन और फरमाइश आप सबकी कृष्णा कॉलोनी हाँसी से सुभाष योगी राज मंगलानी डब्बू और बब्बू मथुराम शर्मा ललित शर्मा इंद्राज शर्मा और भी साथी इनके मंडी हरजी राम मलोट से ये फरमाइश इस साल की है। फैज अहमद अफसाना और फातिमा ने गायत्री कॉलोनी खंडवा से और इसके अलावा फरमाइश इस साल करते हैं जाफरगंज जहानाबाद बिहार से इंतजार अंजुम आलम आरा तो ये सब आप सबकी पसंद पे आप सबकी खिदमत में है।

स्वामीन, पिया का घर किशोर कुमार कराया हुआ आपने इनामा सुना? और इस नगमे को कलमबंद किया आनंद बख्शी ने, मौसीकी तरतीब दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। नगमे की फरमाइश हमें इस तरह से मौसूल हुई। नई दिल्ली नांगलोई दिल्ली से जॉन सीना, बिया टेलर सुमन सरिता, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी सीता और गीता, चमनपुर पूरा उदयपुर से सबिया खानम फरीदाबान और रईसा खातून, पहाड़गंज बुलताई डांडा से इस नवे को सुनना चाह अनिल मोहन, उषा मोहन, मधु नायक ने। ग्राम कोलासर तालुका नांदुरा से प्रमोद बगाड़े, वर्ष बगाड़े, प्रतीक बगाड़े और उनके साथ इनकी एक और साथी हैं। और इस नगमे के अलावा हमें फरमाइश इस साल की है कलीम जख्मी नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी, रेलवे रोड गंज डुडवारा से ये फरमाइश हमें इरसाल करते हैं। ये संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुभ डाबेराव विदर्भ अकोट से और मनोज कुमार जेठवा, प्रकाश ठक्कर झारिया धनबाद झारखंड से फरमाइश इरसाल की है। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीप जोहरी, पूजा और पायल जोहरी और ये फरमाइश बरगद बेल हुबली कर्नाटका से सफी मुल्ला जी, दिलीश मुल्ला जी, रफीक मुल्ला जी, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, इनके साथ और भी कुछ घर के अफराद हैं। राम रतन टॉकी कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर शामिल हुए हैं और हमें ये फरमाइश इरसाल की है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से उदयभान ठाकरे, दीपक ठाकरे और नवीन ठाकरे ने। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और उनके साथ एक और साथी

I mean, अनाड़ी फिल्म करमा आपने लता मंगेशकर का गाया हुआ बोलो कलम बंद किया शैलेंद्र ने और मौसीकी तरतीब दी शंकर जयकिशन ने फरमाइश आप सबकी जानिब से हमें मौसूल हुई। राजावत कॉम्प्लेक्स ने इस वक्त एमपी शाहजहांपुर से मनमोहन राजावत राज मधु राजावत और राशि रक्षित को हमने शामिल किया है। ये फरमाइश हुई बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर शशिकला दामोदर सुमित कुमार दामोदर धनोरी तेलीवाला से नुशरा सलमानी बीबी आलिया आयान बाबू और इनके साथ एक और साथी है इनके आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पावन गौड़ तन्मय पूर्वी गौड़ सोयश आशीष गौड़ और ताजनगर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से गफ्फार बाबू रुखसाना बेगम शामिल हुई है। और ये फरमाइश मोहम्मद रुकुद्दीन मंथाल शब्बीर बनहट्टी आसिफ इकबाल कर्नाटका गुलबर्गा से बुल्डाना इस नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मास्टर

0: आर्य पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल को भी हमने शामिल कर लिया है, पुरान तलब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमाद अंसारी और सुल्तान अंसारी इस नगमे को सुनना चाहते थे। सलीम चौधरी, माहिनूर, सुल्ताना, खिलार शरीफ जिला खंडवा से शामिल हुई हैं और ये फरमाइश भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव बसंत भरक की हमें मौसूल हुई है। सिद्धार्थ गोंडा ने, अचरा गोंडा ने, रामन शिंडे जी, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से, और ये तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिशीला विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा शामिल हुए। शाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन और कामरान बुधवारा बाजार खंडवा से, ये फरमाइश उदयवान ठाकरे शामिल। अस्तपुरा जिला मऊ से मजहरअली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद, गुलाबपुर सागर मध्य प्रदेश से मीना राजेश रिंकी रोबू, और वाराणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, तेजस्वी चौहान, अनिकेत चौहान, महमूद मदनी, अयूब मुलाजी और अब्दुल्ला बागजी डब्बा बाजार सूरत, गुजरात से मधुबनी बिहार से एक जहाजी लक्ष्मण जगताप जी, अल्लाह बख्श जी शामिल हुए हैं। आकोट से अनुष्का शिले सुनीता को हमने शामिल किया और ये फरमाइश सुशांत प्रिया झा, निवेश कुमारी कुमार और लड्डू कुमारी टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर नई दिल्ली से हमें मौसूल हुई है। आइए अब आपको आनंद फिल्म का नगमा सुनाते हैं, मुकेश का गाया हुआ जिसे गुलजार ने कलमबंद किया है और मौसीकी तरतीब दी है सलील चौधरी ने। ये हमें फरमाइश मौसूल हुई गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर की। पालदाना का इंदौर मध्य प्रदेश से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और रफीक मंसूरी। कल्पना मदन झा, मानव और मयंक शामिल हुए हैं। सिलवासा दादरा और नगर दादा नगर हवेली से स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नांगली डेरी ने जबगर से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक शामिल हो गए हैं। ये फरमाइश हमें इरशाल की है। सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन और मुज्जू बाबा ने। अंजुमंजू संजू शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से, और ये फरमाइश इरशाल करते हैं। असालतपुर अहमदाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और इनके साथ इनके कुछ और साथी। साबरा शमाना और आसिया खंडवा की तीनों बहुएं भी शामिल हो गई हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो इनके एक और साथी। संजय डाबेराव, सुनीता डाबेराव, शकूर वली, रहीम वली और साहब बासित वली इमलीपुरा खंडवा से। ताजमहल अंसारी, गुलाम सबिर राही, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से शामिल होते हैं और ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली नारंग की। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा को हमने शामिल किया, इनके साथ है प्रियंका शर्मा। शबनम और इनके शोहर अक्रम और इनके दोनों बच्चे ठीकरी मध्य प्रदेश से शामिल होते हैं प्रोग्राम में हमारे, और ये फरमाइश अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, दिव्यानी और उनके साथ एक और साथी गणेश कामले। त्रिद्वय नगर सिटपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान। खैल बाजार पानी बसे नरेश मल्होत्रा, नीटू लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। बांद्रा नाला सुपारा मुंबई महाराष्ट्र से मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद नुमान शेख, मोहम्मद सुलेमान शेख। संभल से छोटे अंसारी और आलम अंसारी भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। पलसी महाराष्ट्र से विजय शेगोकार और ऋषिकेश शेगोकार को भी हमने शामिल कर लिया है और ये फरमाइश ताम्बरम चेन्नई से मौसूल हुई शाहिद अली फतफारूकी और बेटी हिफ्जा अली की। तो लीजिए जावेद, आप सबकी पसंद पर नगमा आप सबकी खिदमत में है।
1: मैंने

अच्छा प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनाते हैं अलबेला फिल्म करामा। लता मंगेशकर चितलकर यानी श्री रामचंद्र और साथियों का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण ने बोलो कलामत किया है और मौसीकी खुद श्री रामचंद्र ने सजाई है। फरमाइश जेल और जालंधर से रोशन जहां मन्नत जहां नुसरत जहां की मौसूल हुई। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा भी शामिल हुई हैं और ये फरमाइश हमें इस साल की है तस्नीम अहमद फारूकी ने मोहनपुर

गोपालगंज फर्रुखाबाद से, गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम शामिल हो गई है और ये फरमाइश किरणपुरी जीजी लाल नरेंद्र कुमार ने दी और वैंसूवर कनाडा से ये सब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और ये फरमाइश सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली नारंग ने भेजी है। तहीर इंद्र चौक दिल्ली से अजीम वकार, निशा अजीम और माहिरा अजीम को हमने शामिल किया। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और इनकी एक और साथी। बांद्रा आर्मा कोट मुंबई से बेगम सोनम शेख, मारिया शेख, मोहम्मद अरीब शेख और ये फरमाइश इंद्र बिहार दिल्ली से मौसम बेबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी की। रविदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे। वर्ल्टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर और रूपा रानी जी को हमने शामिल किया है और ये फरमाइश गांधीग्राम गुजरात से परवीन सोनी, करावती सोनी और प्रथम सोनी की मौसूल हुई। पटेलनगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया को हमने शामिल किया है। बंगाली पांजा नागपुर से भारती प्रकाश रंबाड़े, जानवी रंबाड़े, वैष्णवी हर्षल रंबाड़े और इसके अलावा ये फरमाइश हमीर साल की है। इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिर परवीन आतिश, डॉक्टर मुनासिफ रजा ने झारखंड से, अजमेर राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी को भी शामिल कर लिया। सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती, जूली गुजराती, लड्डू कुमारी और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी को शामिल किया हमने। ये फरमाइश हमें भेजी है सिटी सेंटर खंडवा से भाई मनोज सेन, पूनम सेन और दीपक सेन ने। और ये फरमाइश हमें इरसाल करते हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। यवतमाल से पंजाब राम टेको को भी हमने शामिल कर लिया है। मोहम्मद शराफत अंग्रेज, आसिफ अंग्रेज, सादिक अंग्रेज वसई ईस्ट मुंबई से शामिल हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मल नावकर, विशाल नावकर और करेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, हार्दिक भत्ता और इनके साथ इनके एक और साथी। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार बल्लू निषाद को भी हमने शामिल कर लिया है। नानूर महल मैसूर सीतामढ़ी बिहार से मुसर जहानाज, तलत जहानाज और फरत जहानाज शामिल हुए हैं। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सरोज चौरसिया और सुरेश चौरसिया। गांव परसोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख और सामीन। अब आपको आपकी पसंद के नगमे तक पहुंचाते हैं और चलते चलते एक फरमाइश और हमें मौसूल हुई है आशियाना अपार्टमेंट बाद्रा मुंबई से मोहम्मद मुजीब शेख, रैना नबिया शेख, बेबी अमीरा शेख की जानिब से। तो ये आप सबकी पसंद पर ये नगमा आप सबकी नजर।

मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता चंद बरसों में तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आजाद तजारत के समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिससे मुल्क के नौजवानों के लिए मौकों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के तजारती समझौते से नई साझेदारी की राहमवार होती है और मुल्क के कारोबारी अफराद को मार्केट भी दस्तियाब होती है, नीज नौजवानों के लिए करियर के नए इम्कान पैदा होते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत में सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा है कि दुनिया की सेमीकंडक्टर डिजाइन की अफराधी कुवत में सरहदें तकरीबन 20% हिस्सेदारी भारत की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियर्स को तरबियत देने के मौजूदा प्रोग्राम के साथ डिजाइन से मुतालिक सलाहियत पर खास जोर दिया है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के मौके पर नामनिगारों से बात करते हुए जनाब कृष्णन ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो मरकूज करते हुए हुनरमंदी के फरोग के सभी पहलुओं को तरजीह देगी। इंतखाबी कमीशन आज कौमी राजधानी दिल्ली में सभी पोलिंग मराकज के मकाम पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा। दिन भर की इस मुहिम का मकसद वोटर फहरिस्तों में नए नाम शामिल करने के साथ साथ तफसीलात में असलाहत करने, नीज वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल किए जाने या हटाने पर एतराजात दाखिल करने में लोगों की मदद करना है। मुतालिका दरख्वास्तें वसूल करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर BLO नामजद पोलिंग मराकज में मौजूद रहेंगे। नए वोटर का नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6, एतराजात दाखिल करने के लिए फॉर्म 7, जबकि वोटर फहरिस्त में किसी तरह की इसलाह करने या ताजा जानकारी शामिल करने के लिए फॉर्म 8 दाखिल किए जा सकते हैं। कौमी राजधानी में जारी मौजूदा SIR अमल के बारे में मीडिया से खिताब करते दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने वजाहत की कि चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर ERO अलग अलग केस की बुनियाद पर समाअत के दौरान नोटिस में बयान की गई दीगर दस्तावेजात भी गौर कर सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत ताल्लुकात के जरिए अपनी शराकतदारी को तकफीत बख्शने के इम्कान हैं। कल नई दिल्ली में तरक्की पसंद ममालिक तहकीक और इत्तलाती निजाम की जानिब से मुनक़िदा उभरते आलमी निजाम में भारत नेपाल ताल्लुकात के नए सिरे से तफसुर के मौजू पर एक बैन अलाक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर बागले ने कनेक्टिविटी और इक्तिसादी इश्तराक को मुस्तहकम करने दोनों ममालिक के दरमियान खाते खुए इम्कानात को बरवे कार लाने की अहमियत पर जोर दिया। आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बातचीत में नेपाल के वजीर खजाना ने कुदरती आफात से पहले फौरी सरमायाकारी की जरूरत पर भी जोर दिया, जिसमें पेशगी वार्निंग निजाम, मजबूत बुनियादी ढांचा शामिल है ताकि आबो हवा की तब्दीली से लाख खतरात को कम किया जा सके। भारत ने नेपाल को 11 टन राहती साजो सामान की खेप रवाना की, जिनमें अद्वियात, फॉरेंसिक सप्लाईज, खेमे, सफाई सुथराई के किट्स, सोने के लिए बिस्तर और दीगर जरूरी साजो सामान शामिल हैं। ये नेपाल को कुदरती आफात से उभरने में मदद के लिए भारत की जानिब से रवाना किया गया राहती साजो सामान पर मबनी भारतीय फजाइये का नवा हवाई जहाज है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर SJ ने कहा कि भारत नेपाल की बाजियाबी में अपनी मदद जारी रखेगा। नेपाल में गुज्तर महीने तबाहकुन सैलाब आया था, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी और इमलाक तबाह हो गई थी। नेपाल हुकूमत ने गुज्तर माह के तबाहकुन सैलाब के वजूहत का पता लगाने के 7 अरकान पर मुश्तमिल माहिरीन का एक पैनल तश्कील दिया है। इस तबाहकुन सैलाब में 1,400 अफराद हलाक हो गए और 6,000 से ज्यादा लापता है। माहिरीन का पैनल इस बात का जायजा लेगा कि 26 अगस्त को बोटिकोशी दरिया में अचानक तबाहकुन सैलाब की आखिर क्या वजह थी और आबोहवा की तब्दीली का इसमें क्या रोल था। अक़वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाहगुज़ीनों को जबरी तौर पर मुल्क बाहर करने से मुतालिक खबरदार किया है। अक़वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी हुकाम से अपील की कि मुल्क बाहर करने से पहले इस बात का पता लगाएं कि क्या मुल्क बाहर किए जाने वाले अफराद को जुल्म जबर, तशद्दुद या दीगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे खतरात का सामना है। इस दौरान माहिरीन ने भी पाकिस्तान के मेडिकल और डेंटल इदारों से अफगान तलबा को निकालने से मुतालिक हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया है। खबर के मुताबिक कम से कम 20 से 40 तालिबात समेत 100 अफगान तलबा इस हुक्मनामे से मुतासिर हो सकते हैं। माहिरीन ने कहा कि कदम अफगान तालिबान की जानिब से खवातीन के लिए आला तालीम और तिबी तरबियत पर लगाई गई पाबंदियों के दरमियान डॉक्टर और दांतों के डॉक्टर बनने के अफगान शहरियों की उम्मीदों को खत्म कर सकता है।
ماہرین کے

लता मंगेशकर हेमंत कुमार की आवाजों में तीसरी गली फिल्म का ये दोबारा समय आप सुन रहे थे। आइए अब पतिता फिल्म में तलत महमूद की आवाज में ये नक्मा सुनते हैं।

सारा जहां हमारा। समय फिल्म का गीतों का ना आवाजें थी लता मंगेशकर और माफ कीजिएगा आशा और मुकेश की आवाजों में आपने ये दुगाना सुना। ये सुनते हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में प्यार की राह फिल्म का दुगाना।

0: सर रावत ने की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान में एशियन गेम्स के आगाज के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अपनी ख्वाहिश चर्चा पेश की है। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का फीकस कार्बन अखराज आलमी औसत का आधे से भी कम है। वजीर आजम ने कहा कि भारत G20 का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने COP21 के वादों को वक्त से पहले ही पूरा किया है। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तकम बनाने पर जोर दिया है। भारत में अचानक सैलाब से मुतासर नेपाल के लिए मजीद 11 टन इमदादी सामान भेजा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को अफगान पनाहगुज़ीनों के जबरन मुल्क से निकाले जाने के खिलाफ तंबीह की है। और 20वीं एशियन गेम्स बाज़ाब्ता तौर पर जापान में शुरू हो गया। ओलंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाले मनु भाकर कबड्डी खिलाड़ी पवन सोरावत ने 501 खिलाड़ी पर मुश्तरक भारतीय दस्ते की क़यादत की। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। समय सबका 1 बजे चाहता है। उर्दू सर्विस की आज की 3री मजलिस की नशरियात अब अख्ताम पजीर होती है। कल सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, शब खैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
3: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
2: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ बागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री

0: My Bharat partner organizations and young people around a shared commitment to healthier choices and Nasha Mukt future. The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad ABVP secured 3 major posts in the Delhi University Students' Union DUSU election. ABVP's Yash Dabas won the post of President, while Riya Chavdi secured victory for Secretary and Lakshya Raj Singh for Joint Secretary. Meanwhile, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of Vice President. The Election Commission will hold special camps across all polling station locations in the national capital today. The day-long drive aims to assist citizens with fresh inclusions, objections or proposed inclusions, or deletions of name in electoral rolls and corrections to particulars in the electoral rolls. Booth-level officers will assist people with Form 6 for new registration, Form 7 for objections or deletions, and Form 8 for corrections or updates. The 20th Asian Game 2026, which was opened at Mizuho Park Athletic Stadium in Japan, will see several Indian athletes begin their medal hunt across multiple disciplines this morning. Tech ball player Quincy D'Souza will compete in the bronze medal match against Japan's Uina Sakamoto at 6:30 a.m. Indian time. Later, Indian shooters Alan Valaravan, Sonam Muskar and Vidarsha Vinil will aim for podium finishes in the women's 10-meter air rifle event at 6:15 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज 24x7 और वक्त हो चला है 1:10 और 15 सेकेंड. वक्त हो चला है कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम. जी हाँ, इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती और गोल्डन एरा की बात हो रही है, यानी गीत सुनहरे की बात. तो जब सुनहरे गीत की बात होती है तो खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है गोल्डन एरा, वो जमाना जिसे बिल्कुल अलग सा एरा कहा जाता है गीतों का, क्योंकि गीतों की शुरुआत होते होते गीत उसी जमाने में उस मुकाम पर पहुंच गए जहां गीत में कुछ अलग से करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा था, क्योंकि जो कलाकार थे, जो गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार, सभी एक से बढ़कर एक थे और सभी ने अपने योगदान से उस जमाने को इतना खूबसूरत गीतों भरा बनाया कि आज भी उन्हीं गीतों में हम खोए हैं.

और जब दौड़ की बात हो रही है तो फिर उस दौड़ में तलत महमूद की बात हो या फिर लता मंगेशकर, गीता दत्त, आप चाहे कोई भी नाम ले लें, चाहे मुकेश, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, तो फिर वो नाम कहाँ गया जिसके गीत को सुनने पर हर वो लय सामने आता था, जिस लय की भी आप बात कर ले, कोई भी लय अछूता नहीं रह सकता था, क्योंकि उनके गायकी में हर एक सुर को इतना तराश कर गाया गया कि वो गोल्डन एरा को और भी खूबसूरत बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मन्ना डे के बारे में।

क्यों कहा था ना कि वो सुर वो राग वो लय उस एरा में आप ढूंढेंगे और आपको मिल जाएगा। मन्ना डे के स्वर में आपने जब इस गीत को सुना तो कुछ अलग तो लगा ही ना, क्यों ना लगे, गोल्डन एरा की तो बात हो रही है। सुनहरे गीत, जी हाँ, गीत सुनहरे में उन गीतों को लिया गया है जो उस जमाने के तो हिट थे ही, आज भी हिट है। तभी तो वो गाना आप तक पहुंच रहा है क्योंकि हम भी उस गाने के दीवाने हैं।

जब गीत सुनते हैं तो ये लगता है कि ये दौड़ ही कुछ अलग था। हर एक समय पर, हर एक मूड पर, हर एक सिचुएशन पे गाने मिलना मुश्किल नहीं था। अब चाहे आप किसी भी गीत का नाम ले लें, हर एक गीत जुड़ा है हर एक सोच से, हर एक सिचुएशन से। और अगर आज के दौर में देखें तो आज भी उसी दौर को याद किया जाता है, उसके गीतों से याद किया जाता है। और जब पुराने गीत यानी गीत सुनहरे आपके समक्ष आता है तो आपको भी, आपके ज्ञान में भी एक और बढ़ोतरी होती है, वो तरोताजा हो जाता है। क्योंकि गीत जो उस जमाने के हैं, गोल्डन एरा के, वो आपके दिलो दिमाग पर छाने लग जाते हैं। फिलहाल आइए सुनते हैं उसी एरा का ये गीत।

ये वही दुनिया है जिसके गीत को हम सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जी हाँ, अभी आपने गीता दत्त की आवाज में इस गीत को सुना, वो वक्त ही कुछ अलग था। देखिए, जितने भी गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार की बात हो रही है, वो सब के सब गोल्डन थे फिल्म संगीत की दुनिया के, और उनके गायकी में जो भी गीत हमारे पास पहुंच रहे हैं, वो सारे के सारे उस जमाने के हिट गाने थे। यानी गोल्डन एरा गीत सुनने में उन्हीं हिट गानों को लेकर आने की कोशिश रही है। फिलहाल आइए सुनते हैं उसी एरा का एक और गीत।

गोल्डन एरा के अगर गीतों की बात करते हैं तो वो गीत उस जमाने के, आप देखिए कितनी सादगी है उसमें, इतनी खूबसूरत उसके शब्द इतने खूबसूरत हैं कि आज इस गीत ने हमें और भी कुछ सिखाया। देखिए गीतों की जो खूबसूरती है, उसकी जो सादगी है, उसकी जो इनोसेंसी है, यानी कि इतना प्यारा और लग रहा है बिल्कुल कि एक नादान व्यक्ति बहुत कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर जानना चाह रहा है। गीतों की सिचुएशन को देखिए, क्यों? क्योंकि हम उसे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इन गीतों के बोल सुलभ और खूबसूरत है। गीतों के बोल की बात आती है तो एक गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में।

मिस्टर और मिसेज बचपन की इस फिल्मी गीत में गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने अपने स्वर से इस गीत को सजाया। गीतों का सिलसिला चल रहा है, जी हाँ, गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती, और वक्त बढ़ता जा रहा है, सुइयां आगे जाती जा रही हैं, लेकिन मन होता है कि वक्त को यहीं पर रोक दें या वह स्वयं ठहर जाए, लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकी। और यही लागू होता है उस जमाने के गीतकार संगीतकार के रूप में। वो क्या है? वो ये है कि वो समय भी ही था कि लोग लिखते थे, उसे अपने स्वर से सजाते थे, लेकिन वो गीत कभी पुराने होते ही नहीं थे। जो कल थे वो आज भी हैं, और हम सब के धड़कनों में उन्हीं गीतों का एक जुनू सा छाया है, क्योंकि वो वक्त ही था गोल्डन एरा।

इतना खूबसूरत सा गीत था और गीतों में ऐसा समझ में आ रहा था सुलाया जा रहा है एक नन्हे मुन्ने को। गोल्डन इरा में जो गीतों की खूबसूरती थी वो फिल्मों के उस सिचुएशन पे होती थी जिस पर गीत लिखा जाना था और जिस पर गाना सुनना बनना था, और उन गीतों को ढाला कई ऐसे गीतकारों ने जिन्हें हम दिग्गज भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके शब्दों ने हमें गोल्डन इरा के गीत दिए। वो गीतकार, वो संगीतकार, वो गायक कलाकार, सभी ने हम लोगों को एक खूबसूरत विरासत में खूबसूरत और सुनहरे गीत दिए हैं। गोल्डन इरा के गीत आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे में। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का। मैं हूँ पूजा भारती।

गोल्डन एरा गीत आप सुन रहे हैं, गीत सुनहरे फिल्म संगीत कार्यक्रम मेरे यानी पूजा भारती के साथ। और देखिए ना, गीत सुनते सुनते उसके बारे में जानते जानते वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और वक्त बीतेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि गीत ही कुछ ऐसे हैं, हर एक बोल ने हमें बांध लिया था। वक्त खत्म होने से एक बात और भी है, फिर ऐसा वक्त आएगा और फिर ऐसे गीत सुनेंगे, क्योंकि आप हर रोज रात्रि 1:10 से सुनहरे गीत सुनते हैं, और इन गीतों के सफर में आप उन गीतों को याद करते हैं जो आपसे कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन उन यादों को तरोताजा करने का ये एक मकसद है, जिससे कि आप उन गीतों से जुड़े रहें और उन गीतों के जरिए अपने जीवन में अपने जीवन के उन पहलुओं को भी देख सकें। फिलहाल कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, और आखिरी नगमा आपके लिए। मुझे पूजा भारती को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, आकाशवाणी AIR लाइव न्यूज से आप जुड़े हैं। 2 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटी बनती है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। चुनाव आयोग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मतदाता सूची में नोटिस दिए जाने की खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद उनका नाम अद्यतन व मान्य कर लिया गया है। इसे 4 नवंबर को आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाली शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आयोग ने पारदर्शी भागीदारी वाली और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान में शुरू हुए 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगे।

मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: इधर आओ ना। उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गई, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती है तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

0: आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 3 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ नौकरी पाने के तौर पर न देखें, बल्कि देश की सेवा करने और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देने के मौके के तौर पर देखें। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। कल नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉ वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के सम्मेलन की पहली बैठक के समापन सत्र में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर आयोजित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सत्रों में समिष्ट आर्थिक दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए वित्त पोषण जैसे अहम विषयों पर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कल नई दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में कॉर्फबॉल प्रीमियर लीग 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि भारत में कॉर्फबॉल के प्रति बढ़ता उत्साह देखना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल युवाओं के लिए नए रास्ते

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRI न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, ये समय होता है कार्यक्रम गीत गजल का। वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत गजलें होती हैं और सुकून भरी गजलें होती हैं, और आप सुनिएगा और सोचिए और महसूस कीजिए उन गजलों को, तभी रोचकता बनती है और आनंद भी आता है। एक कोई भी गजल हो, गीत हो या कुछ और हो, लेकिन यदि आप दिल से, मन से यदि आप सुनेंगे तो वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत कार्यक्रम होने वाला है। जी हाँ, कार्यक्रम गीत गजल। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गजल से शुरुआत कर रहे हैं और ये गजल वाकई बहुत ही शानदार और बेहतरीन गजल है, और हम बताए देते हैं कि आखिरकार कौन सी गजल आने वाली है जिसका आप सभी साथियों को इंतजार रहता है। मैं नसीब हूं, बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत रचना है। एल्बम अदा, लता मंगेशकर की बहुत ही सुंदर, मधुर, खूबसूरत आवाज में शानदार रचना है। और ये अदा एल्बम जो है 1992 प्रदर्शित फिल्म रही है और बहुत ही खूबसूरत है। गीत अनजान के हैं और संगीत से सजाया है बासु चक्रवर्ती ने। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की पहली बहुत ही सुंदर गजल।

जी हाँ साथियों, मैं नसीब हूं किसी और का, मैं किसी के पास हूं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गजल लबी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत गजल की ओर। ये गजल भी अपने आप में बहुत ही अनमोल है, बहुत ही शानदार है। जी हाँ दोस्तों, गजल की बात ही कुछ और होती है। उसमें शेर व शायरी, प्यार मोहब्बत, दुख दर्द सब कुछ समाहित होता है ना। जी हाँ दोस्तों, तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गजल। जी हाँ, सख्त है इश्क की रह गुजर, एल्बम तस्वीर से ये शानदार रचना गायक अहमद और मोहम्मद हुसैन की आवाज में शानदार रचना है। ये रचना 1995 प्रदर्शित फिल्म रही है, एल्बम रही है और गजल वाकई बहुत ही शानदार है। गजल जो लिखी है वो है शमीम जयपुरी और संगीत से सजाया है अहमद और मोहम्मद हुसैन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गजल।

बहुत ही अनमोल, बेमिसाल, उत्कृष्ट, शानदार गजल अभी आपने सुनी। साथियों, एक और खूबसूरत गजल आ रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, दिल लगाने की बात। जी हाँ दोस्तों, जब दिल लगता है किसी के साथ तो सच में जिंदगी आसान हो जाती है, और वही अगर दिल किसी और के पास चला जाए तो सच में क्या कहें, बहुत ही खराब लगता है। जिंदगी नीरस हो जाती है, इंसान का जो सोच है वो बदल जाती है, है ना। दिल लगाने की बात, कुछ दिल ने कहा एल्बम, बहुत ही शानदार एल्बम है, और गायक है अनूप जलोटा। 2013 की ये एल्बम है, बहुत ही शानदार संगीत से सजाया है इस खूबसूरत रचना को अहमद और मोहम्मद हुसैन ने। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर खूबसूरत गजल।

जी हाँ श्रोताओ, वाकई बहुत ही सुंदर दिल लगाने की बात सोची है। बहुत ही अच्छी बात है और दिल लगाने की बात सोचना भी चाहिए, है ना। और जिसके जिससे आप नफरत करते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं, तो सच में उनकी जिंदगी का क्या होगा। लेकिन जो जज्बा है, जो सकारात्मक सोच है, दिल लगाने की बात सोची है, कम से कम दूरियां हो गई हैं, लेकिन दूरियों के पास लाने का ये जो जज्बा है बहुत ही खूबसूरत है ना। तभी तो कह रहे हैं कहीं मैं था। जी हाँ दोस्तों, कहीं मैं था एक एल्बम है बहुत ही खूबसूरत, महबूब, तलत अजीज की बहुत ही सुंदर आवाज में शानदार रचना है। महबूब एल्बम 1997 प्रदर्शित एल्बम रही है और संगीत तलत अजीज का ही है। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार गजल।

क्या बात है, कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत गजल अभी आपने सुनी। वाकई बहुत ही लाजवाब, अनमोल, खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, तलत अजीज की आवाज में शानदार गजल। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। कह रहे हैं कि आपसे गिला आपकी कसम, क्या बात है। यूनिक एल्बम, जी हाँ एल्बम का नाम है यूनिक। जगजीत सिंह की आवाज में बेहतरीन रचना। यूनिक एल्बम 1998 में आई थी और खूबसूरत गजल है। गीत यानी कि गजल जो लिखा है सबा सिकरी और संगीत से सजाया है खुद जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन खूबसूरत गजल।

बहुत ही सुंदर, बेहद लाजवाब, खूबसूरत गजल। बढ़ते हैं एक और सुंदर गजल की ओर। आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

जी हाँ दोस्त, वहां गई उनसे जब जब भी मुलाकातें हुई, वाह सारे सारी रात बस ऐसे ही निकल गई। वाकई बहुत ही शानदार बेहतरीन गजल अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, हरिहरन की आवाज में शानदार रचना। ये एल्बम वाकई बहुत ही सुंदर एल्बम थी, जश्न। जी हाँ, 1997 रिलीज एल्बम। गीत मुजतर सिद्दीकी और संगीत हरिहरन का था। और सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की अंतिम गजल।

जी दोस्तों, बहुत ही सुंदर दर्द भरी खूबसूरत गजल सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जगजीत सिंह की आवाज में प्यार का पहला खत एल्बम से शानदार रचना। गीत गजल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म, कर्नाटक म्यूजिक, सी उमा द्वारा वायलिन वादन। आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जी उमा द्वारा वायलिन वादन। वंदे मातरम।

दिल्ली आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि। तदनुसार 20 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 और 20 सेकंड हो गए हैं। इन मीटरों पर हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मंगल ध्वनि और वंदे मातरम। श्रोताओं, कुछ जो प्रोग्राम है हमारे, जी हां, अगले जो प्रोग्राम है आज 5 बजे न्यूज इन हिंदी यानी कि हिंदी में समाचार होंगे 5 बजे, और 5:05 समाचार होंगे इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश समाचार, इंग्लिश न्यूज। और भी जानकारियां हम बताना चाह रहे हैं, विवरण दे रहे हैं अगले जो प्रोग्राम आने वाले हैं। 5:10 पर कार्यक्रम समय होगा, 5:10 आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, योग उज्जाई प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति संगीत, देशगान जय जय जनहित, आकाशवाणी के वृंद अगान के कलाकार प्रस्तुत करेंगे। 5:30 पर कार्यक्रम होगा स्वर रंजनी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बिमल मुखर्जी द्वारा सितार वादन में राग भटियार। श्रोताओं, 6:00 हिंदी समाचार सुन सकेंगे, और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

सत्संगत हो तको तेरे हुक्म निशा तो करो साहेब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुर जो फरमावे सो कहूं। गुरु अमर दास कारण करना।

0: खंड पर चंड लोभ अपमान स्यों झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने
1: पर सागर बंदेओ इक तारे सो प्रसन्न सिरे आत पत सच्चो तखत जोग

सत सुरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत वर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जय कर तारे संजोग सत गुरु।

हो राज जोग गुर रामदास, तुम हो रस जाने हमें अब गुण पर एक गुण नाकी, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पुले, सुत धारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की।

माधव एहो जन्म तुम्हारे लिखे कहर विदास आस लग जीवा।

साम कहे से तंबर स्वामी सच में से साच रहे, सबको सस मावे रे कहे रहे पर पूरा ना देवे सूर। नाय ले प्रास जाय नानक ताओ मुखंतर पाहे, जुज में जोर चली चंद्राल कान कृष्ण।